तीन मुद्रा यानी कि पहली उंगली अंगूठे के नीचे और ऊपर से हम आंख बंद कर लेंगे। आंख बंद करके जब हम कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी जितनी शक्तियां हैं वो हमारे अंदर अर्जित हो रही हैं, कोई भी शक्ति बाहर आंखों के माध्यम से नहीं जा रही है। वह शक्ति वह परमात्मा से मिलने का एक संपूर्ण जो आहार हमें मिल रहा है वह अंदर ही है। इसी प्रकार हम अपने मन चित्त को एकाग्र करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए मनन की स्थिति में जाएंगे, कुछ इस तरह।

इस प्रकार अपने मन व चित्त की सारी वृत्तियों को शांत करते हुए एकाग्रचित होकर के हम उस आसन में बैठ जाएंगे और हम यूं प्रतीत करेंगे कि हम एक बहुत ही हरी भरी वादियों में हैं। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करते हुए पूरा ध्यान त्रिनेत्र पर यानी आंखों के मध्य लगाते हुए हमें सबसे जो भी चीज़ प्यारी लगती है, यानी अगर हमें कहीं घूमना अच्छा लग रहा है और ऐसी जगह पर जहां पर आप नहीं गए हैं, हम उन्हें एक चित्र के रूप में सामने ला करके उन वादियों में भ्रमण करते हुए अपने आप को खुशनुमा बनाते हुए और यह महसूस करेंगे कि यह पेड़ पौधों के साथ में जो ठंडी ठंडी हवाएं हो रही हैं वो हमारे शरीर को लग रही हैं। और इसी बीच मनी मन मनन करते हुए ओम का उच्चारण, ध्यान अपने प्रभु का लगाते हुए इस तरह हम ध्यान योग में खो जाएंगे कि आपको यह प्रतीत ही नहीं होगा कि हम मनन प्रक्रिया में इस समय चल रही हैं। मनन प्रक्रिया आपको योग के माध्यम से कराई जाती है, जो कि किसी भी योगा प्रशिक्षक के साथ में बैठ करके हम कर सकते हैं। सभी लोग अपना मनन ध्यान रख लगाते हुए इसी तरह हम फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे और अभी आंखें नहीं खोलेंगे। हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे और चेहरे पे लगाने के बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे। अपने चेहरे पे और आंखों में लगाने के बाद में धीरे धीरे हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएंगे। तो ये था मनन प्रक्रिया, जो कि ध्यान योग के माध्यम से हम आज सभी मिलकर के कर रहे हैं। आइए

0: हम इसके लिए होने वाले लाभ बता देते हैं, क्योंकि सावधानियां इस आसन की कोई नहीं है, सिर्फ इसके लाभ हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लाभ अत्यंत लाभ है। जो व्यक्ति जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जिन्होंने माइग्रेन, डिप्रेशन, इन सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे ग्रसित हैं, उन्हें यह मनन अध्ययन प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए। साथ ही साथ हमारा तो कहना ये है कि किसी योग प्रशिक्षक के साथ में बैठ करके इस मनन प्रक्रिया को अगर हम करेंगे तो इसका लाभ आपको दुगना मिलता है। लेकिन अगर आपके पास कोई योग प्रशिक्षक नहीं है तो आप इसी श्रृंखला में अपनाते हुए रोज सवेरे आप नित प्रतिदिन योग की योग पाठशाला से जुड़े और हमारे साथ प्रतिदिन बैठ करके योग आकर के कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस प्रक्रिया को जितनी बार हो सके हम दोहरा सकते हैं। इसको आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, मतलब जैसे बाकियों के प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं, खाना खाने के 5 घंटे पूर्व या इस समय, लेकिन मनन ध्यान की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो आप उसमें ये नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का, यानी कि मनन और ध्यान, जो आज हम सब लोगों ने मिलकर के किया। और इसी श्रृंखला में कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन के साथ। तो आइए हम ध्यान मनन के साथ में अब हम करने जा रहे हैं 10 से 15 मिनट का ध्यान। तो आइए हम ध्यान की ओर चलते हैं और इसके लिए हम कल फिर मिलेंगे। करें योग, रहें निरोग। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग की योग पाठशाला में मैं समता योगिनी 8 दिवसीय योग के शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि अभी के पहले की 3 दिन की शिविर आप सभी लोग मिलकर के करते होंगे। आज है शिविर का 4th दिन, यानी कि आज हम करने वाले हैं उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमने पहले भी किया है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि उज्जयी प्राणायाम उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम क्यों है। उत्कृष्ट का हम पहले सबसे पहले हम अर्थ जान लें। उत्कृष्ट, प्रशस्त, क्लासिक, श्रेष्ठ, शास्त्रीय, ललित, अच्छे से अच्छे, व्यवहार को समझना, सभी दृष्टिकोण से उत्तम, यानी जिसमें ढूंढने पर भी गलती नहीं मिल सके। जीवन एक उत्सव है जिसे उत्कृष्ट ढंग से ही मनाना चाहिए। शाश्वत, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि जिसका कोई अंत नहीं है, चिरजीव, ठीक वैसे ही उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम। प्राणायाम के आगे उत्कृष्ट लगाने का सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि उज्जयी प्राणायाम हम वैसे तो रोजमर्रा, यानी कि हम अपनी लाइफ में इसको अपनाते हैं और करते भी हैं, लेकिन उत्कृष्ट इसको क्यों कहा गया है हम बताते हैं। जीवन एक उत्सव है, आप सभी को पता है कि हर दिन हम कुछ न कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं और उसे अमल करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा श्रेष्ठ होता है, कुछ ऐसा प्रशस्त होता है जिसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, चाहे वो प्राणायाम की श्रृंखला में हो, चाहे वो हमारा निजी जीवन क्यों न हो। उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताने से पहले हमने आपको बताया कि उज्जयी प्राणायाम उत्कृष्ट प्राणायाम क्यों है। जैसा कि बताया, उत्कृष्ट प्राणायाम में एक वर्ड ऐसा आता है, क्लासिक। तो यह क्लासिक क्यों है हम आज आपको बताएंगे। उज्जयी प्राणायाम की स्थिति में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह श्वास के अभ्यास के दौरान होता है। प्रतिकृष्ट और उत्कृष्ट, यानी कि यह वह प्राणायाम है जो प्रशस्त क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाता है और उसे करता है। उज्जयी प्राणायाम करने की सबसे पहले हम विधि जान लेते हैं और कैसे उनकी प्रक्रियाएं हैं वह हम देखते हैं। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि कोई भी मुद्रा आप ले लें, चाहे आप वज्रासन में बैठ जाएं या आप कहीं पर भी पलथी मारने की स्थिति में बैठ जाएं। समान रूप से श्वास लें, यानी कि ना बहुत मध्यम गति से हो और ना ही बहुत तीव्र गति से हो। थोड़ी देर के बाद अपना ध्यान गले पर ले जाएं, यानी कि उज्जयी प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य गले से आवाज के ऊपर ही केंद्रित करना होता है। ऐसा अनुभव करें कि, और कल्पना करें कि आप जो श्वास है वो गले से ले रहे हैं और जो श्वास है वो गले से आ जा रही है। जब श्वास धीमा और गहरा हो जाए तो कंठ द्वार को संकुचित करें। संकुचित का अर्थ होता है आप अपने गले को सिकोड़ लें और या तो उसे ढीला कर दें। उजे प्राणायाम की विधि। प्राणायाम के अभ्यास से हम यह जानेंगे कि यह प्राणायाम यानी उजे प्राणायाम हमें कैसे करना है और किस दशा में करना है। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान मन को शांत रखना है, यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे मन मस्तिष्क के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल। ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जब हम एकांत बैठते हैं तो यह प्रक्रियाएं दुगनी रूप से अपना असर करती हैं। कहते हैं ना, मन जो है वो घोड़े की तीव्र गति के भांति भागता रहता है। मन को और दिमाग को शांत करने के लिए ही उजे प्राणायाम मुख्य रूप से बताया जाता है। हम अभ्यास के लिए शांत जगह सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और अब हम गहरी सांस लेते हुए फेफड़ों में जा रही हवा को महसूस करेंगे। प्राणायाम के दौरान सारा ध्यान श्वासों की प्रक्रिया पर होना चाहिए कि वह श्वास कैसे ली जा रही है और कैसे श्वास छोड़ी जा रही है। अपनी श्वासों में आने वाली ध्वनि को महसूस करें और कोशिश करें कि हमारा मन शांत है कि नहीं। उजेई प्राणायाम के यानी कि उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम के फायदे हम जान लेते हैं कि इनको करने से क्या क्या फायदे होते हैं। उत्कृष्ट प्राणायाम को करने से शांति प्रदान करने वाले प्राणायामों में वर्गीकृत किया गया है। इस अभ्यास का प्रयोग योग चिकित्सा में तंत्रिका तंत्र यानी कि जो हमारी तंत्रिकाएं, चाहे वो श्वास से संबंधित हो, नाक से संबंधित हो, कान से संबंधित हो या हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र हो, और मन को शांत करने के लिए किया जाता है। हम एक चीज और बता दें कि उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम मानसिक रोग के विशेषज्ञ जो ये सलाह देते हैं करने के लिए कि मानसिक रोग जो कि रोगी होते हैं उन्हें उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम जरूर से करना चाहिए। आत्मिक स्तर पर इसका बहुत ही गहरा और सुलभ प्रभाव पड़ता है। यह अनिद्रा से छुटकारा पाने में मदद करता है। यह लाभ पाने के लिए सोने से पहले श्वासन में इसका अभ्यास करें। और अनिद्रा से आयुर्वेदिक उपचार भी संभव हो सकता है। बिना श्वास रोके या बंद का इस्तेमाल किए बिना अगर यह प्राणायाम तो हृदय की गति को धीमा कर देता है और हाई बीपी से पीड़ित लोगों के लिए उपयोगी होता है। उजेई द्रवधरिता को कम करता है, यानी कि जो कि द्रवधरिता होती है जिससे रक्त हुड्डी, मज्जा, वसा, वीर्य, मांस आदि को ठीक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए यह सबसे संपूर्ण और पूर्ण होता है। आइए दोस्तों, अब हम उजेई प्राणायाम जिसे नहीं करना है किन रोगियों को वो बता देते हैं। हाई बीपी जिनको है, शुगर, ब्लड प्रेशर और जिन्हें मस्तिष्क में कुछ कहीं से दर्द रहता है या फिर ये रहता है कि हम कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, उन मस्तिष्क पीढ़ियों के रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना है। स्टार्टिंग के दौरान यानी कि आपको इसकी जो गति है वह हमें 1 से 1.5 मिनट करनी है, और जब हम स्वतः हम ये सीख जाएंगे कि हमें यह प्राणायाम करने से जो लाभ मिल रहे हैं वह 2 से 2.5-3 मिनट तक हम यह प्राणायाम को लेते जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि महिलाएं जो कि गर्भावस्था में हैं उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से सभी मिलकर करते हैं उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम। एकांत चित्त में आंखें बंद कर लेते हैं, श्वास को मध्यम गति से और मध्यम तीव्र गति से छोड़ते हुए श्वास को लेंगे। अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान जो है वो त्रिनेत्र की ओर ले जा करके एकांत चित्त में बैठ जाएंगे। ओम का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ हम यह महसूस करेंगे कि हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को इस समय अपने अंदर अर्जित कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपने चेहरे पे लगाते हुए पूर्णतः अपनी मुद्रा पर आएं और फिर से अपने आसन पर बैठ जाएं। तो ये था दोस्तों आज का उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम। आशा करती हूँ कि आपने साथ साथ में आज हमारे साथ में शिविर के चौथे दिन भी सभी लोगों ने मिलकर किया, और जरूर से हमारा जो कि शिविर चल रही है उसमें आए और फीडबैक भी जरूर से दें। तो ये था दोस्तों आज का उत्कृष्ट उजेई प्राणायाम। करें योग, रहे निरोग।
1: नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग की योग पाठशाला में 8 दिवसीय आत्म प्रीति में आप सभी का स्वागत है। कल क्योंकि पहला दिन था जो कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया था अद्भुत अनुलोम विलोम, तो अद्भुत अनुलोम विलोम के बारे में बताया था और आज शिविर का है दूसरा दिन। दूसरे दिन में आज हम आपको बताएंगे कुशल कपालभाति। कपालभाति कुशल क्यों है, हम सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। चतुर, होशियार, प्रवीण, व्यक्ति जो कुशल होता है, होशियार होता है और चतुर होता है। निपुण, पारंगत और कुशल कारीगरी। अब हम इसको योग के माध्यम से कैसे समझेंगे। कपालभाति, आप सभी को पता है कि कपालभाति नाक से श्वास, गले से संबंधित और पेट से संबंधित सभी क्रियाओं को यह ठीक करता है। तो हुआ ना कुशल, चतुर और पारंगत, यानी कि कुशल कारीगरी। आज हम जिस पे आपको योग कराने जा रहे हैं वो है कुशल कपालभाति। कपालभाति के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत सारी प्राणायाम माध्यम से समझाया है और आज भी हम कुशल कपालभाति को और विस्तार से जानेंगे। पर ऐसे कुशल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, चालाक, निपुण, विशेषज्ञ, प्रवीण, समझदार, मुबारक हो, शुभ, पवित्र और शिव का दूसरा नाम है कुशल, जो कि नाभि से लेते हुए हमें त्रिनेत्र तक ले जाता है। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि जब हम कपालभाति करते हैं तो नाभि से

रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

भगवान शनि की सर्व फलदायी स्तुति मनुष्य के जीवन में चमत्कार कर देती है। रवि पुत्र शनि देव जो नील वर्ण वाले हैं, जो छाया और मार्तंड भगवान सूर्य के पुत्र हैं, जो यम के अग्रज हैं, ऐसे भगवान शनि को जो बारंबार नमस्कार करता है, उस पर शनि की असीम कृपा हो जाती है।

नान्यास प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे कामादि दोष रहितं

रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परखियो तुम भाई सही दुखन मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी होई काज मोहि हर्ष विसेखी। एकै नाई सबन को माथा चलियो हर्ष हेतर रघुनाथा। सिंधु तीरे के भूदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ियो ताय ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन तने बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता चलियो सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बाणा एही मात चलियो हनुमाना। चलनिधि रघुपति दूत बिचारी तई मै ना कहो इस महारी।

सुरन मोई दीन आहारा सुनत बचन के भवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आवाऊ सीता के सुर प्रभु सुनावाऊ अव तव बदल पैटियो आई सत्य कहू मोरी जान दिवाई अब न्यू जतन दे ही नहीं जाना रसिन मोई कहू हनुमाना योजन भरते ही बदन पसारा कवित नुकीन दुगन विस्तारा सोलह योजन मुक्त ही ठय हो तुरत पवन सुत बत्तीस भय हो जय जय सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा सचो जन दे आनन कीना तिलक रूप भवन सुत लीना बदन पैट पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताई सिर नावा मोई सुरन जय लाग पटावा बुध बल मर्म तोर मैं पावा राम का सब करी हूँ तुम बल बुद्ध निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान निश्चर एक सिंधु मारही करी माया नव के खगही जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलोक तिन के परछाई भाई छा सक सोना उड़ाई ए बिन सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान तय की ना तासु कपट कभी तुरतई चीना आही मारे मारु सुत वीरा बारिद पार गयो मद धीरा कहाँ जाय दे कीवन शोभा गुंजत चंचरीक मद लोभा नाना तुर फल फूल सुहाए खगमरग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख आगे तापर धाई चढ़ो बह तागे मानक झुक बिकै अधिकाई प्रो प्रताप जो काले खाई गिर पर चढ़ लंका दे देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी अति उतंग जल निचो पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मन कर सुंदर आयत नाग नौ चौ हट हट सुबट बीती चार पूर्व विधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूथन कोग ने बहु रूप निश्चर जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने मन भाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहूं माल देह विशाल शैल समान अति बल घर जही नाना खरन बिरई बहुविध एक एक कर तर जही करि जतन भटकोटिन विकट तन नगर चौदह सिर छही कौ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छई हे लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु इक है कही रघुवीर सर तीरथ सरी ऋण त्याग गति पय हई सही पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार अतलग रूप धरो निसी नगर करो पैसार मसक समान रूप कपि धरी लंके चले सुमिर नर हरी राम लंकिनी एक निसचरी सुखे चल सिमोहि निंदरी जानी नहीं मरमो सट मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुटका एक महाकबिहानी रुदिर पवन धरनी धनमनी कुल संभार उठी सो लंका जोरी पान कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म वर दीना धरत विरंच कहा मोहि चीना विकल होस तय कपि के मारे तब जानस निश्चर संघारे आत मोर यति पुण्य बहुता देखो नयन कर दूता तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुलाई के अंग तूल रताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग रविश नगर की जय सब का जा दई राख कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनलस तुलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाई अतिलग रूप धरो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जय तय अग्रित जोधा गयउ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कई जात सुनाई सैन के देखा कपिते ही मंदिर मौन देख वै दे भवन एक मुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन जाई नव तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिराई लंका निश्चर निकर निवासा यहां तहां सज्जन करवासा मनम उतर्क करे कपिलादा ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसन हट करि हो पहचानी साधु ते होइ न कार जहानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उड़तै आए हरि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहू निज कथा बुझाई की तुम्हारे दासन मैं कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोई करण बड़ भागी अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम सुनो पवन सुत रहनी हमारी जिम दसनन मौ जीव विचारी ताक कबो मोई जानिए ना था करी है कृपा भानु कुल ना था आमस्तन कछ साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोई भाव रोस हनुमंता बिन और कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोई दर्श हट दीना सुनो।

असमयदम सखा सुनो मोह पर रघुवीर इनी कृपा सुमे गुण भरे बिलो चन्नीर दानत हूँ स्वामी विसारी फिर तकाई न हो दुखारी ऐ विद कहते राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही जय विद जनक सुधाता रही अब हनुमंत कहा सुनि भाता देखी चाहो दान की माता जगत विभीषण सकल सुनाई चले भवन सुध विदा कराई हर सोय रूप गये पुण्य तैवा बने अशोक सीता रह जयवा देख मन मन कीन प्रणामा बैठे बीत जात निस जामा ग्रस्तर शीश जटा एक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी।

कई अवसर रावण तय आवा संग नार बहु किए बनावा बहुविध कल सी ते समझावा सामदान भय भेद दिखावा कह रावण सुन समुख सयानी मंदो दरिया दी सवरानी अवे उन चरी करो पन मोरा एक बार भी लुक ममियोरा रण धरी उठ कहत वह दे सुमिर वधपति परम स्नेही सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा कब हो कि नल नी करे विकासा असमन समझ कहत जाने की खल सुध नहीं रघुवीर बाण की सट सोने हरियाने मोही अदम निलज लाज नहीं तो ही आप ही सुनिखर ज्योत समय राम ही बान समान परश वचन सुनिकाड़ी असी बोला अति किसियान सीता ते मम गति अपमाना कटियो तो सिर खटिन कृपाना आहित शब्द मानु मम वाणी समक होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज कर कर समद सकंदर सोभुज कंठ की तवी अस गोरा सुनसठ अस प्रमाण पन मोरा चंद्रहास हर मम परिताप रघुपति बिरे अनल संजातम शीतल निषद बैस वर धारा के सीता हर मम दुख बारा सुनत वचन पुनि मारन धावा मैतनिया कई नीति बुझावा कैसी सकल निश्चन बुलाई सीता ही बहुविध त्रासई जाई मास दिवस मो कहा न माना तो मैं मारिब काड़ के पाना भवन गयो दस कंदर यहाँ पिसाचन प्रंद सीता ही त्रास दिखा वही धरे रूप भव मंद त्रेता नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका सबने बोल सुनाय सी सपना सीता ही सेव करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान से ना सब मारी खरे आरूढ़ न गंदस सीसा मंडित सिर खंडित भुज वीसा हे विद सोद छिंद से जाई लंका मनो विभीषण पाई अगर फिरी रघुवीर दुहाई तब्रो सीता बोली ऐसा बना मैं कहूँ पुकारी हुई सत्य गए दिल चारी आसु वचन सुनते सब डरी।

अशोका सत्य नाम करो हर मम सुखा नूतन किसलय अनल समाना दे अग्नि जन करे निदाना परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कल्प संविता कब कर हृदय विचार तीन मुद्रिका डार तब जन्म सुख अंगार दीन हर्ष कुट कर गए हु तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यदि सुंदर चकित चिदव मुदरी पहचानी हर्ष विषा दे गए खुलानी जीत को सकय जय रघुराई माया ते अस नहीं रच जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण वर नहीं लागा सुनतई सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई श्रवणा मज्जे कथा सुहाई कैसो प्रकट होत किर भाई तब हनुमंत निकट चली गए हु फिर बैठी वन विस्मय भयो राम दूत मैं मात जानकी सत्य जपत करुणा निदान की है मुद्रिका मा तुम आनी दीन राम तुम को सही दानी नरवान रे संग को कैसे कही कथा भई संगत जैसे सबके वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास हर जन जान प्रीति यति गाड़ी सजल नयन पुल का बलिबाड़ी घोड़त बिरह चल दि हनुमाना मय उतात मोह को जल जाना अब को कुशल जाऊं बलिहारी अनुसहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कब के हेत धरी निठुराई सहजवान सेवक सुखदायक कबो किशोरत करत रघुनायक कबो नयन मम शीतल ताता हुई है निरक्षाम मधुगाता चन्नयाव नयन भरे बारी अहा नाथ हो निपट बिसारी देख परम बिरहा कुल सीता बोला कवि मधु भजन विनीता मात कुशल प्रभु अनुसमेता तव दुख दुखी सुख पान के जन जननी मानो जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कही कभी गद गद भयो भरे बिलोचन नीर कहो राम भी उतव सीता मोको सकल भय विपरीता अवतर किस लय मनो कृसानो काल निशासम निस्स शिवानु कबलय विपिन कंद बन सरसा बारे तपल तेल जनि बरसा जय हित रहे करते पीरा उरक श्वास संत्रवि सवीरा कहो तक चो दुखट होई का कहो ये जान न कोई अत प्रेम करो मम यर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रह तोय पाई जान प्रीति रस इतने उमाई प्रभु संदेश सुरत बैते ही मगन प्रेम तन सुर नैते कह कबे हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदा रघुपति प्रभुताई सुनिम बचन तजो कदराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरु चरे निसाचर जानु जौ रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रवि कुए जानकी तंबरुत कहु जात दान की अवै मात मैं जाऊ लवाई प्रभु आय स्ने राम दुहाई अचुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित है हई रघुवीरा शर्मार तोय लय जय है त्रिपुर नारदादि सुगई है सुत कवि सब तुम्हें समाना जात उधान अति बट बल मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रकट कीन निर्देहा करत भूधरा का शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तव हो पुन लग रूप बन सुत लय हो सुन माता सा का मृग नई बल बुद्धि विशाल रव प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल मन संतोष सुनत कवि बाणी भक्ति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निसुद हो करो बहुत रघुनायक जो करो कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना स्पर सीसा भोला वचन जोर कर कीसा अब कत कत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनो मात मोहि अस्य भूखा लागि देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करै विपिन रखवारी परम सुभद्र रजनीचर भारी दिन करवै माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माही देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ चलो ना सिर पैठो बागा फल खा स्तर तोरे लागा रहे तहां मो भट रखवारे कछु मारस कछु जाय पुकारे नाथ एक आवा कवि भारी तेय अशोक वाटिका उजारी हाय स्फलियर बिटव उबारे रक्षक मर्द मर्द मई डारे रावण पटे बट नाना तिनय देख कर जेव हनुमाना सब रजनी चर कवि संगारे गए पुकारत कछु अद मारे उन बटे उते अच्छ कुमारा चला संग ले सुबड़े अपारा आवत देख बिटप गई दर्जा थाय निपात महादुनि गर्जा कछु मारस कछु मर देसी कछु मिली असी धरी धूर कजुपन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर सुन सुत बदलं केसरी साना पटे से मेघनाथ बलवाना मारस जन सुत बांधे सिताही देखिए कपि कहा खरी आई चला इंद्रजित अदलित जोदा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भटे आवा कटकटाई कर जा रुधावा अति विशाल तरु एक उपारा विरत कीन लंके सुकुमारा रहे महाबट पाके संगा गई गई कपि मर्दई निज अंगा तिनय निपात ताई सन बाजा भिरे जुगल मानो गज राजा मटका मार चढ़ा तरु जाई ताई एक चन मूर्छा आई उठ बहोर की रसिबो माया जीति न जाई प्रभंजन छाया
मिलया ब्रह्म हस्त से साधा कभी मन कीन विचार जो न ब्रह्म सरमान्यो महिमा मिटय पार ब्रह्म बाण कभी कौते मारा परते उबार कटुक संहारा नहीं देखा कभी मूर्छित भय हो नाग पास बांधे सिले गए हो रासु नाम जप सुनो भवानी भवबंधन काटे नर ज्ञानी वासुदूत की बंतर वावा प्रोकार जले कभी बनावा कभी बंधन सुन निश्चर धाये कौतुक लाग सभा सभी आए असुमुख सभा दीख कभी जाई कहीं न जाई कछु प्रभुताई कर जोरे सुरज से विनीता वृत्ति विलोक सकल सभीता देख प्रताप न कभी मन शंका जिमे गण मन करुण असंका कभी विलोकित सानन बेसाखी दुर्वाद सुत पद सुरत कीन पुनी उपजा हृदय विषाद है लंकेश कवंत की सा कही केवल गाले बन की सा ही दो श्रवण सुने नहीं मोही देखो अति असंक सड़ तो ही मारे निश्चर की अपराधा को सड़ तो न प्राण कह बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया जाके बल विरंच हरी सा पाल सुजत हर दस सीसा या बल सी दरस से सानन अंड कोश समित गिर कानन हरई जो विविध दे सुर त्राता तुमसे सटन सिखा वंदाता हर को दंड कठिन जय बन जाती समेत नव दल गंजा कर दूषण तिसराय रुबाली भदे सकल ये तुलित बलशाली जाके बल्लव लेस ते जितो चरा चर झारी वासुदूत मैं जा करी हरिया ने उपरे नारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाऊ सन परी लड़ाई समर बाल सन कर जस पावा सुन कवि वचन बेस बेहरावा खायो बल प्रभु लागी भूखा कवि सुभाव ते तोरे रूखा सबके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधे तने तुम्हारे मोहिन कछु बांधे कई लाजा कीन कहो निज प्रभु कर राजा विनती करो चोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज कुलई बिचारी भ्रम तज भजो भगत बहारी जाके डरे अति काल डराई सो सुर असुर चढ़ा चुर खाई आसो बैर कबो नहीं की जय मोरे कहे जान की दी जय प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राख है तवे अपराध विसार रामचरण पंकज उर्धर लंका अचल राज तुम करहु ऋषुपुलस्त जसु विमल भयंका ते सज मौजन होई कलंका राम नाम बिन गिरान सोहा देख विचार त्याग मद मोहा बसन हीन नहीं सो सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी राम विमुख संपति प्रोथाई जाई रही पाए बिन पाई सजल मूल जिन सरतन नाही वर्ष गए पुनि तबई सुखाई सुंदर कंठ कहो पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकै न राख राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तवि अभिमान भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान यद्यपि कही कवि अतिहित वाणी भक्ति विवेक विरत्न सानी बोला भी असि महाअभिमानी मिला हमें कवि गुरु बड़ ज्ञानी रक्त निकट आई कल तो ही लाग सी अदम सिखावन मोही उल्टा हुई ही कई हनुमाना मतवम तोर प्रकट मैं जाना सुन कवि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हरो मोड़ कर प्राणा सुनत निसाचर मारण धाये सजवन सहित विभीषण आए नाई सीज कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड कछु करी गुसाई सब ही कहा मंत्र बल भाई सुनत पे सिबो लाद सकंदर अंग भंग करी पटी बंदर अब के ममता पूछ पर सबई का

मैं तिनकी प्रोताई। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। धातु दान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सुई रचना। रहान नगर बसन गत्तेला, बाड़ी पूंछ कीन कवि खेला। तुके आए पुरवासी, मारे चरण करे वो हासी। आजय ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ पुजारी। आवक चरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। विमुख चढ़ो कवि कनक अटारी, भई सबीत निसाचर नारी। हर प्रेरित अवसर चले मरति उनचास, अट्ठास करी कर जा कवि बड़ लागे आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। जरय नगर बालोक बिहाला, जबट लबट भो कोटि कराना। आत्मा तहां सुनिए पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो काय कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर ये नाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। आकर दूत नल जे सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु बजारी। पूछ बुझाई खोय शम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। मात मोहि दीजै कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तव दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। गयो तातिस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। आत सुख सुत कदा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस मऊ नाथ नयावा, तोपन मोहि जीत नहीं पावा। ओ कपि कहि विध राखो प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना। ओहि देख शीतल भई छाती, पुन मोह दिन को सोई दिन राती। जनक सुतई समझाय करी, बहुविध धीर दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवर राम पाकीन। चरत महादुनि गर्ज से भारी, गर्भ सवै सुनि निश्चर भारी। नाग सिंधु ए पार आवा, शब्द किलकिला सवै सुनावा। हर्षे सब लोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिंद बजाना। ओ प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री राम चंद्र कर काजा। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपद मीन पाव जे वारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कैत नवल इतिहासा। तव मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु बल गाए। रखवारे जव बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार अनस भागे। गाय पुकारी ते सब, बने उजार जुवराज। सुन सुग्रीव हर्ष कवि, करी आए प्रभु काज। जौन होत सीता सुत पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। हे विधि मन विचार कर राजा, आए देव कवि कवि समाजा। आय सबन्ना वापस सीसा, मिलु सबन अति प्रेम कपीसा। ऊँची कुशल कुशल पद देखी, राम कर बाबा काज विशेखी। नाथ काज की न्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। उन सुग्रीव बहुरते मिले हो, कपिन सहित रघुपत पै चले हो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा। पटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। रीति सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। रामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। आय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय भी नहीं गुण सागर, तासु जस त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजु, जन्म हमार सुफल बा आजु। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, से सो मुख न जाय सो बरनी। अवंतन के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति सुनाये। सुनत कृपा निधि मनियति भाये, पुनि हनुमान ऋषि लाए। भाव तात की भात जानकी, रहत करत रक्षा सुपान की। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट।

विसरत प्राण करे हटिबादा तिरे अग्नि तन तूल समीरा श्वास जरे छन माय शरीरा नयन सवे जल निहित लागी जरे न पाव देह बिरहा की सीता कहे अति विपति विशाला विनय कहे बल दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि दाय कलप संभीर वेग चले प्रभु आनी है भुजबल खल दल जीत सुन सीता दुख प्रभु सुखे ऐना भरियाए जल राजीव नैना चन काहे मन मंगत जाही सपने बूझ विपत गीता ही कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई एतिक बात रो जातु धान की कोई जीत यानी बिजान की सुन कपि तो समानी उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी अति उपकार करे का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तोई उरिण मैं नाही देखो कर विचार मन माही मन पुनि कपि चित सुर काता लोचन नीर पुलक यति गाता सुन प्रभु वचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमंत धरण पर प्रेमा कुल त्राई त्राई भगवंत बार बार प्रभु चहे उठावा प्रेम मगन ते उठव न भावा प्रभु कर पंकज कब कैसी सा सुमिर सुद सा मगन गौरी सा सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा भव कभी रावण पालित लंका के विदि दहेव दुर्गे अति भंगा प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगति अनुमाना शाखा मृके बड़ मन स्वाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटकपुर जारा निश्चरगन विधि विपिन उजारा सोसव तो प्रताप रघुराई नाथ नगज मोरी प्रभुताई ताको प्रभु कुछ यगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वा नल ही जार सके गल तूल नाथ भगत यदि सुख दायनी देव कृपा कर अन पायनी सुन प्रभु परम सरल कपि वाणी एवं अस्तु तव कहे भवानी उमा राम सु भाव जय जाना ताई भजन तई भावना आना ऐ संवाद जा सुर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुन प्रभु वचन कहे कपि वंदा जय जय जय कृपाल सुख कंदा अब रघुपति कपिपति बुलावा कहा चले कर करो बनावा अब विलंब के कारण की जय तुरंत कपिन कहो आयुष कृपा करे राजीव नैना राम कृपा बल पाए कपिंदा भयो पच्छ जद मनो गिरिंदा हर्ष राम तब कीन बयाना सगुन भय सुंदर सुबनाना दासु सकल मंगल मैं कीती दासु बयान सगुन ये नीति रव बयान जाना भय देही फरक बाम अंग जन कई दे जोई जोई सगुर जान की होई अजगुन भयो रावण नहीं सोई चला कटुको भर नहीं पारा कर जय बानर भालू अपारा नखिया विद गिरी पादब दारी चले गगन में इच्छा चारी गेरी नाद भालू कब कर ही डगमगाई दिग्गज चिक्कर शिक्करा ही दिग्गज ढोल मई गिरी लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाद किन्नर दुख तरे कटकट मरकट बिकट भट भर कोट कोट धावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुन गन गावई सही सक न भारी उदार पति बार बार मोह शंका जब ते जार गयो कपि लंका निज निज ग्रह सब करे बिचारा नहीं निश्चर कुल घेरु बारा सासु दूत बल भरने न जाई ते आए पुर कवन बलाई दूतन सन सुनि पुर जन वाणी मंदोदरी अधिक गुलानी ऐसी जोर कर पति पद लागी बोली वचन नीति रस पागी अंत कर शहर सन परि हरियो मोर का अति हिति हे धरियो समझत जासु दूत कई करनी गर्भ सबई रजनी चर धरनी आसु नारनी सचिव बुलाई पटवो कंत जगहो बलाई सब कुल कमल विपिन दुख दाई सीता सीत ने सा समय आई सुनो नाथ सीता बिन दीने इतना तुम्हार शंभु अज कीने राम बाण आई गण सरस निकर निसाचर भेक जब ले गसन तब लगी जतन करो तज ते श्रवण सुनी चढ़ पाकर बानी बेसा जगत विदित अभिमानी सब स्वभाव नारी कर साचा मंगल मऊ में बनी अति काचा जो आवई मर कटकट काई जिए बेचारे निश्चर खाई हम पई लोक बजा की त्रासा ता सुनार सबित बड़हासा हस कई वे सिताई उर लाई चले सवा ममता दिखाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयो कंत पर विद विपरीता बैठे सवा कबरे सिपाही सिंधु बार से ना सब आई मुझे सचिव जित मत कहू ते सब हसे मष्ट करी रहू जिते सुरास तो शमनाई नरवा नर के लिखे माई सचिव वैद गुरु तीन जो ते बोले वह आस राज धर्म धरतीन कर होई बे गई नाग सुई रावण को बनी सहाई अस्तुति करई सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण आवा प्राता करण शीश दे नावा उन सिर नाई बैठ निज आसन भूला वजन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे मई बाता मतीन रूप कहो हिताता जो आ पंचा है कल्याण सुज सुम सुभग सुख नाना सो पर नार ललार गुसाई तजो चोत के चंद्र किनाई चौदह भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई गुण सागर नागर

नींद बखानी सुनत सान उठा रे साई कल तो इन घट मृत्यु अब आई यस राव सट मोर जे आवा रिप कर पच मूड ते बाबा ऐसे नकली अस को जग माई बुझ बल जाई जिता मैं नाही मंपुर बस तब सिंसन प्रीति सट मिल जाए कहो ते नीति अस कई कीने से चरण प्रहारा अनुज गए पद बारे बारा उमा संत के इहें बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई तुम फिर सरस भले मैं मारा राम बजे इतना तुम्हारा सचिव संग लय नौपद गए हो सबई सुनाए कहते सबई हो राम।

विधिकर्थ सत्रियम बेचारा आयो सबर सिंधु ए पारा कपिन विभीषण आवर देखा जाना कौरव दूत विशेखा आई राख पिसपैयाए समाचार सब ताई सुनाए है सुगनीव सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई है प्रभु सखा पूजिए कहा कहे कपीस सुनो नरनाहा जाने न जाय निसाचर माया काम रूप के कारण आवा खेद हमार लेन सजावा राखिए बान मोहि स्वभावा अकानिक तुम नीक बिचारी मम पर शरणागत बहारी सुन प्रभु वचन हर्ष अनुमाना शरणागत बच्छल भगवान शरणागत कौ जे तजही निज अनित अनुमान ते नर पावर पाप मय तिनी बिलोकत हान कोटि विप्रवद लागे जाओ आए शरण तजो नहीं ताहो सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासो तब ही पापवंत कर सह स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख भाव कि सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा भेद लेन बटवा दसी सा तब न कुछ मैं हानि कपीसा जग मोह सका निसाचर जे ते लक्ष्मण हनी निमिष माते ते जो सभी ते आवा सिरु नाही रखियो ताई प्राण के नाही उभय भांति ते आनी है हसके कृपा निकेत जय कृपाल कई कपि चले अंगद हनु समेत सागर ते आगे करिवानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर दूर ते देखे दो भ्राता नैना नंद दान के दाता गौरी राम छवि धाम बिलोकी रहे टटक एक टपल रोकी पुष्पलम्ब कंजारुण लोचन श्यामल काज प्रणत वह मोचन सिंध कंधे आए तुर सुहान नियमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित यदि गाता मन धर धीर कहो विधवाता नाद दसानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा सदा उलूक तम पर ने श्रवण सुजस सुनी आयो प्रोभंजन महवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर हसके करत दंडवत देखा तुरते उठे प्रभु हर्ष विशेखा दीन वचन सुन प्रभु मन बावा भुज विशाल गए हृदय लगावा अनुसहित मिल टिक बैठारी भोले वचन भगत बहारी अवलंके सहित परिवारा कुशल कुटाहर पास तुम्हारा कलमंडली बसो दिन राति सखा धर्म निभाई के भांति मैं जानो तुम्हारी सब रीति अतनय निपुण भावे अनीति परबल बास नर करता था दुष्ट संग जन देई विधाता अपते कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जनदाया तब लगे कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगे वेतन राम कहूँ शोक धाम तज काम तब लगे हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मद नाना जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिबा था ममता तरुण तमी दियारी राग देश ओ लुक सुकारी तब लगे बसत जीव मन माई जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाई अव मैं कुशल मिटे वह भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर्यन कूला ताहि न व्याप्ति विरबल सूला मैं निश्चर अति अधम स्वभाव सुभ आचरण की ने नहीं काहू ना स्वरूप मुनि ध्यान न आवा ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखौ नयन विरंज शिव शिव जुगल पद कंज सुनो सखा निज कहो स्वभाव जान बुसुंड संभ गिर जाओ जो नर हो चराचर द्रोही आवे सब शरण तक मोही नजमद मोहक पट छल नाना करो सद्य ते साधु समाना जननी जनक बंधु सुत तारा तंदन भवन सुरत परिवारा सबके ममता पाक बटोरी मम पद मन बांध पर टोरी समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही अस जन्म मोर बस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे हम सारी संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्य होरे सगुण उपासक पर हित नृत नीति दृढ़ नेम प्राण समान मम जिनके दुष्पद प्रेम सुन लंके सकल गुण

बारा सुनो देव सचराचर स्वामी भरतपाल उर अंतर जामी उर कचपतम वासना रही द्रौपद पीत सरित सोभही अब कृपाल निज भक्ति भावनी देव सदा शिव मन भावनी एव मस्तु के प्रवण धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा यदि सका तब इच्छा नाही मोर दर से मोह जग माही अस्कई राम तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नव भैया।

स्वयं संपदा विभीषण ही सकुच दीने रघुनाथ अस्त्रोचाड़ वजे जय आना ते नर पशु बिन पूछ विसाना निजन जान पाई अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा गुण सर्वज्ञ सर्व वासी सर्व रूप सब रहती उदासी बोले वचन नीति पति पालक कारण मनुष्य कनु कुल खालक सुन कपि श्रीलंका पति वीरा कई विधि तरिय दल दि गंभीरा संकल्प कर उरग जय जाति अध्युगात दुष्कर सब भांति है लंके सुनो रघुनायक कोट सिंधु सो शक्त सहायक तदव तदव नीति सगाई विनय करिय सागर सन जाई प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद कहीं उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार सखा कही तुम नीकी उपाय करिय दैव जो होई सहाय मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा नाथ दैव कर कवन भरोसा सोशे सिंधु करिय मन रोसा आदर मन कहो एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा सुरत बेसी बोली रघुवीरा

मन धीरा अस्कै प्रभुर जी समझाई सिंधु समीप गए रघुराई अदम प्रणाम की निसुरनाई बैठे पुण तन दर्भ दसाई जब विभीषण द्रौपद आए पाछे रावण दूत पटाए सकल चरित्र देखे नरे कपट कवि देह प्रभु कर हृदय सराही शरणागत पर नेह प्रगट बखाने राम स्वभाव अस प्रेम का विसर तुराओ कृपके दूत कपिन तब जाने सकल बांध कपिस पयानी ऐ सुग्रीव सुनौ सो बानर अंग भंग करि पटवौ निश्चर सुन सुग्रीव वचन कपि धाए बांध कटुक पास फिराए बहु प्रकार मारण कपि लागे तीन पुकार तद बिना त्यागे जो हमार हर नासा काना तई कौशला दीस कयाना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हस्तुरत छुड़ाए रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण बचन बाच कुल खाती कहो मुखागर मूड सन मम संदेश उदार सीता देव मिलो नता आवा काल तुम्हार पुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरन गुण गाथा कहते राम जस लंका आए रावण चरण शीश तिनाए व्यसित सानन पूछी बाता कैसे न सुख आपन कुशला था उनको खबर भी भीषण खेरी जाहि मृत्यु आई न तेरी करत राज लंका सड़ त्यागी हो जीव कर कीटे भागी उनको बालु की चकटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मदुल चंद सिंध बिचारा कब तब सिंह बात बहोरी जिनके हृदय ता से तिमोरी की बही बेटी फिरी गए श्रवण सुजस्त निमो

कभी सब सुख रीव समाना इन सब कोटिन घने को नाना राम कृपा इतनी बल तनी तर समान त्रय लोक नहीं असमय सुना श्रवण दस कंदर पदुम अठारह दूत बंदर नाप कटुक मा शोक विनाई जो न तो मई चीत नहीं मन माही परम क्रोध मी जय सब हाथा आय सुपै न देह रघुनाथा सोशिय सिंधु से इज्जत प्याला पूरे नत पर कुदर विशाला मर्द गर्द मिलवई दस सीसा ऐसे ही वचन करे सब कीसा कर जय तर जय स

तेज बलबुद बिपलाई से सह सक सकई नगाई अक्सर एक सोच सत्सागर तब रात पूछे नहीं नागर आसु बचन सुन सागर पाई मांगत बंद कृपा मन माही सुनत बचन बैसा दसी सा जो असीमत सहाय कतकी सा सहज वीर कर बचन दड़ाई सागर संठानी मचलाई ओढ़ वशाखा कर सी बढ़ाई रिपल बुद्ध था मैं पाई सचि सवित विभीषण जाके विजय विभूत कहाँ जगता के सुन कल बचन दूतरे से बाड़ी समय विचार पत्रिका काढ़ी रामानुज दीनी है पापी नाथ बचाए जुड़ावो छाती ऐसे बाम कर लीनी रावण सचिव बोल सट लाग बचावन बातन मने रि जाय सके जन घाल स्कूल कीस राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस गीत जिमानी अनुजेव द्रौपद पंकज भंग कोई कि राम सरानर खलकुल सहित पतंग सुनत सब मन मुख मुसकाई है दसान सबई सुनाई ओमे परा कर कहते काशा लघुता बस कर बात दिलासा है सुखनाथ सत्य संवाणी समझो छाड़ प्रगति अभिमानी सुनो वचन मम परि हरि क्रोधा नाथ राम सनत जो विरोध अति कोमल रघुवीर सुभाओ यद्यपि अखिल लोक कर राओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही और अपराध न एक उधरही जनक सुता रघुनाथ दी जय एतन कहा मोर प्रभु की जय जब ते कहा देन भय दे चरण प्रहार कीन सड़ते ही नाय शरण सिर चला सुता कृपा सिंधु रघुनायक जहां करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपाया पन गति पाई ऋषि अगस्त की साब भवानी राक्षस भयो राम मुनि ज्ञानी बंदे राम पद पारि बारा मुनि आश्रम को पग धारा विनय न मानत जल्दी जड़ गए तीन दिन पीत बोले राम सकोप तब भय बिन होइ न प्रीत लक्ष्मण बाण सरासन आनो सौ शोभार विसिक सानू सट सर विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीत ममता रसन ज्ञान कहानी अति लोभे सन बिरति बखानी क्रोधी समकामी हरि कथा उसर बीज भय बल जथा असकई रघुपति चाप चढ़ावा ये मत लक्ष्मण की मन भावा संधान प्रो विसिक कराला उदी उदत उर जंतर ज्वाला मकर उरग जश कन्या कुलानी जरत चंदु जल नितब जाने करक थार भर मन गन नाना विप्र रूप आयु माना काटे पई कदरी फरई कोटि तुन कुसीच विनय न मान कके सुन डाटे पई नवनी सब सिंधु गई द्रौपद केरे चुनौ नाद सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जड़ धरनी इनके नाद सह जड़ करनी औ प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब गंथन गाये प्रभु आयस देखे जस अही सोते भात रहे सुख लही प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी मर जादा पुन कुमरी कीनी ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ ना के अधिकारी प्रभु प्रताप मैं जाप सुखाई उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल शुद्ध गाई करो सवेग जो तुम्हें सहाय सुरत विनीत वचन अति कह कृपाल मुझकाई जय विधि उतरे कभी कटकु कहो उपाय नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आसित भाई तनके परस के गिर बारे तरी हई विनती प्रताप तुम्हारी मैं पुनि उड़धन प्रभु प्रताई करी हूँ बल अनुमान सहाई जय विधि नाथ पयोद बंधाई है जइये सुजस लोक त्यु गए हैं कई सर ममी उत्तर तटवासी हतो नाथ नर कल अग्रासी सुन कृपाल सागर मन पीरा गुरत हरि राम रण धीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निर्भयो सुखारी सकल चरित गई प्रभु सुनावा चरण बंदि पादोत्सिधा निज भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति है मत भायो।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: streams, science, commerce and humanities, excellent infrastructure, smart class and digital class board, convenience facilities, scout guide, events, project and educational tour.
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त. एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा. संपर्क करें 9450944999.

वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. और देखिए संग अपने कितनी सारे बादल लेकर आया हूँ. एक ऐसा मौसम जिसको देखते ही आपको लगेगा ओ लगता है आज भी कल की तरह ज़बरदस्त बारिश होने वाली. वैसे कल की बारिश देख करके कौन कौन खुश हो गया था भाई. जिस तरह के बादल आए थे

0: ऐसा लग रहा था कि जम के बरसने वाले हैं और हुआ भी यही। भाई बरसा तो दिल खोल के बरसा। ऐसा लगा कि भाई इतने जमाने बाद जो बारिश है वो पूरी तरह खुल करके हो रही है, झमाझम झमाझम झमाझम। और जो लोग टीन के नीचे थे उनको तो लगा भैया आज तो लगता है छेदी हो जाएंगे टीन में। सो वैसे कल का क्या एक्सपीरियंस रहा आप ये बता सकते हैं। एक बार वापस से आपको मॉर्निंग विश करते हैं, खूबसूरत सी जो आज सुबह है वो आप तक पहुंचा देते हैं इस पैगाम के जरिए, क्योंकि आज का थॉट क्या लेकर आया है आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे, चलिए बताते हैं। आज का थॉट कह रहा है, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बार बार सोचकर अपना आज जरूर खो सकते हैं। जी हाँ, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बार बार सोच करके अपना आज जरूर खो सकते हैं। ऐसा कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे बहुत सही, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा है, क्योंकि शायद हुआ भी यही है। इतिहास उठा कर देखे तो ज़्यादातर जो हमने सोचा है, जो हमारा वक्त गया है, वो ऐसे ही गया है कि जो बीत चुका है वो उसको हमने कभी सही कर ही नहीं सकते हैं और ना कभी हो पाया है, लेकिन उसे बार बार सोच करके आज को हमने ज़रूर खोया है। ऐसा ज़रूर हुआ है क्या? ऐसा आप भी मानते हैं? यस, ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात आज समझने वाली है, आज सोचने वाली है कि भाई जो हमारा आज है इसको हम सोच सोच करके ख़राब कर रहे हैं बीते हुए कल का। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा होता है वो आपके फ्लो में हो रहा होता है और हर बार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही आगे जाए ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो कुछ होता है वो ज़रूर आपके अकॉर्डिंग होता है। यानी जो कुछ हो गया हर बार आपके हाथ में नहीं होता है जो हो गया उसके रोक पाना, लेकिन उसके बाद आप कैसे रहने वाले हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में होता है, राइट? ऐसे कई हादसे हो जाते हैं, कोई हादसा जानबूझ के नहीं करता, हो जाते हैं, लेकिन उस हादसे के बाद आपको कैसे सर्वाइव करना है, किसी के छोड़ जाने के बाद आपको कैसे सर्वाइव करना है, किसी के दिल दुखा देने के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है या कैसे खुद को संभालना है, कैसे बुरे वक्त में संवार के रखना है, खुद को संभाल के रखना है, ये पूरी तरह से आपके और हमारे हाथ में होता है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही है कि जो बीत चुका उसको बार बार सोचा करते हैं, फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा, और एक ज़माना बीत जाता है ये करते करते। बहुत कहीं बाद में जाके रियलाइज़ होता है, अरे यार हमने तो बड़ा कीमती वक्त खो दिया बस इसी बात को कहने में, करने में। इसी वक्त में यही बात किसी और शख्स से अगर हम कोई दूसरी बात कह देते तो शायद आज हमारे रिश्ते अलग होते, शायद आज हम खुद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो ये जो बात का काश है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि आज के इस थॉट ऑफ द डे को थोड़ा सा समझने की देरी है। जिस लम्हा ये थॉट समझ में आ जाएगा, उस लम्हा हमारी बीते हुए कल की परेशानियों का जो सबब बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करने वाला है। एक बार वापस से बता दें कि आज का थॉट कह रहा है, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बार बार सोचकर अपना आज ज़रूर खो सकते हैं। तो आपको तय करना है कि भाई अपना आज खोना है क्या, बीते हुए कल के बारे में सोच करके, वो भी उसके बारे में जिसको आप सच में नहीं बदल सकते हैं। तो जो कुछ रहा उसको जाने देते हैं, जो कुछ है प्लीज़ उसे नहीं जाने देंगे। बस इतना सा आपको ख्याल रखना है, फिर देखिए किस तरह से आपके बोलने का, आपके समझने का, आपके सोचने का जो नज़रिया बदलेगा उससे आपकी पूरी पूरी लाइफ और आपका नज़रिया बदल जाएगा। नज़रिया बदलेगा तो डेफिनेटली नज़ारे बदलेंगे ही बदलेंगे।

0: सो भाई, सुना है ये रस्में वफा है, और सुना है कि आपने इस थॉट को सुनने के बाद जो है वो कसम खा ली है कि भैया आप भी अपने इन जख्मों को बंद करके अब आगे बढ़ने का पूरी तरह से सोच रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आपने एक बार भी बाहर निकल कर देख लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मौसम सच में कह रहा है यार कि कहाँ हो तुम, इन सब चीज़ों को छोड़ो और देखो मुझे एंजॉय करो। तो चलो आज का मौसम हम एंजॉय करने वाले हैं अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो से, क्योंकि कई सारे सॉन्ग्स इसी तरह से आते रहेंगे, आपके मूड को अपलिफ्ट करते रहेंगे, रोमांटिक बनाते रहेंगे और साथ ही साथ आपसे हम बतियाते रहेंगे। तो चलो फिलहाल क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं आपके ज़रिए जो आपने भेजे हैं चैट बॉक्स पर, लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो भाई पहला जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा आशु जी का, और आपने लिखा है कि प्यारी सी सुबह का प्यारा सा नमस्कार सर, थैंक यू सो मच आपको भी। और आप आगे लिखती हैं कि जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। सविता जी लिखती हैं सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, और काफ़ी वक्त बाद आज आपने एंट्री ली है चैट बॉक्स पर, क्या बात है, आपका भी स्वागत है सविता जी। प्रीति जी हमारी बहराइच से लिखती हैं, सर जी बारिश भरा प्यारा सा सुप्रभातम, क्या बात है, आपका जो सुप्रभात है वो मौसम सिचुएशन के हिसाब से अपडेट होता रहता है, दैट्स वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच टू यू। भोला राम जी आपको भी गुड मॉर्निंग। और आशु जी लिखते हैं थमके बरस मुझे मायके जाना है। चलिए आपको गोंडा आना है, इधर पानी फिलहाल रोक के रखा है, लखनऊ की गारंटी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। ऑलराइट, सो सविता जी ने कहा मेरे इधर नहीं हो रही बारिश, हाँ फिलहाल तो इधर भी नहीं हो रही लेकिन कल की हम बात कर रहे थे। महेंद्र देपन जी हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखते हैं सुप्रभात अदनान सर जी, सुप्रभात महेंद्र, आपका स्वागत है, वेलकम है भाई। महेंद्र जो है अपनी अटेंडेंस रोज आकर के वक्त से लगा जाते हैं, आज भी इन्होंने लगा दिया है, थैंक यू सो मच महेंद्र। एंड हमारी गीता श्रीवास्तव जी हैं, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। सविता जी लिखती हैं सोचती कम मस्ती ज़्यादा करती हूँ इसीलिए मस्त रहती हूँ, सुविचार बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो मच। और आपकी भाई मस्ती को कौन नहीं जानता, हर संडे में उससे मुखातिब तो हम लोग हो ही जाते हैं, इवन शायद कल भी हो सकते हैं। एंड प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं प्रेरणादायक थॉट, बीती बिसारिए आज बेहतर बनाइए, बट ए इंसान मन बड़ा ही मनचला है, जानते हुए गुजरे वक्त को बार बार याद कर ही लेता है, लेकिन वर्तमान को भली भांति जीना भविष्य को बेहतरीन बनाना होता है। एक बात आपकी बात से याद आई, जैसे मैं जब कहता हूँ कोई चीज़ कि इसको ऐसा बेहतर है, कभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब आप बिल्कुल पूरी तरह से एक चीज़ करने लग जाइए, क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है आप अपने बीते हुए कल को याद करेंगे, बहुत खूबसूरत भी तो यादें सहेजी है, उसको ज़रूर सोचिए। जख्म भी याद आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, रुला जाते हैं, आंखें नम कर जाते हैं और डरा जाते हैं, लेकिन बिता कहाँ रहे हैं ज़्यादातर वक्त, आखिर कितना टाइम देंगे, आखिर कितना उसमें हम खोए रहेंगे, कहीं तो हमको फिर सोचना पड़ेगा। जो आज की ज़िंदगी है, जो आज का दिन है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। जो आने वाला कल है उसका पता नहीं, जो बीत गया वो वापस आएगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी से हम परे हो चुके हैं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आज की है और हर रोज़ सिर्फ आज ही की होगी। अब ज़रा सोचिए, यही तो लाइफ का पैटर्न होगा, है ना। इसके बाद जो है नव्या ने लिखा है, हो सके तो समुद्र में नहा लेना आपने इस काले दिल को, धो लेना, जिंदगी में कोई लड़की आए तो उस प्यार नहीं बल्कि इज्जत देना भी सीख लेना। आहा हा, क्या बात है, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू, सुपर थॉट, थैंक यू सो मच। आशु जी लिखती हैं समय एक बार बीत जाए तो फिर लौट कर नहीं आता, इसलिए कभी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, बेशक सही बात है। सो वक्त को बर्बाद नहीं करना है, हाँ कभी कभी गोते लगा देना है, क्योंकि फैक्ट यही है हम पूरी तरह से किसी चीज़ को नहीं चला सकते, ना पूरी तरह से किसी चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हमारा इरादा क्या और हमको जाना किधर है। तो एक बार आपको पता हो जाए कि आपको जाना किधर है तो प्लेटफॉर्म नंबर आपके अपने फेवरेट नंबर पर आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है, जिसका नाम है आज एक्सप्रेस।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: क्या बात है भाई, इतना खूबसूरत गाना, इतना प्यारा गाना कि मुझे याद आया कि आपको कुछ फ़ायदे बताने थे। हाँ हाँ, मैं अक्सर आपके फ़ायदे की बातें करता हूँ। वैसे मैं बताने वाला हूँ दरअसल ब्लैक कॉफ़ी का फ़ायदा। जी हाँ भाई, चाय के शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, चाय एक फील तो है, इसको तो कोई शक नहीं है, लेकिन चाय रेगुलर पीना या इस तरह से करना कई बार नुकसानदेह साबित हो ही जाता है। तो चलिए, फ़िलहाल जो लोग उसका अल्टरनेट निकालते हैं और ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, सो ये ब्लैक कॉफ़ी आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आज आप हमको बता देते हैं। नहीं, हम आपको बता देते हैं। कौन बताने वाला है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि भाई ब्लैक कॉफ़ी पीने के आखिर क्या क्या हैं फ़ायदे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

मुझे पता है भाई, वो जो जा रहे हैं जिम इस वक्त इस बात को बड़ा ही कान लगा के सुनने वाले हैं। हाँ, मैं भी लेता हूँ भाई ब्लैक कॉफ़ी, ज़रा सुनो तो क्या फ़ायदा है। चलिए अच्छा बताते हैं। देखिए, ब्लैक कॉफ़ी पीने के दरअसल अगर मैं बताऊँ तो कोई एक फ़ायदा नहीं है, इवन कई फ़ायदे हैं। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि वज़न कम होना होता है और साथ ही साथ फोकस को बढ़ाता है। और जाहिर है, चूँकि आप जिम से आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं तो आप काफ़ी ड्रेन हो जाते हैं, सो एनर्जी को बढ़ाने का काम भी करती है ब्लैक कॉफ़ी। बिना दूध और चीनी के बनी ब्लैक कॉफ़ी, जी हाँ याद रखिएगा, इसमें दूध भी नहीं है और चीनी भी इवन नहीं है। ऐसी बनी ब्लैक कॉफ़ी जो है वो कैलोरी ना के बराबर इसमें होती है, मतलब लगभग ना के बराबर, और ये सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी जाती है। जाहिर है, अब अगर किसी को वज़न कम करना है तो भी वो इसका सेवन करता है, इसमें भी वो फ़ायदेमंद होती ही है। फोकस बढ़ाने में मदद करती है, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें फोकस की ज़रूरत है सो आप उससे पहले ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। काफ़ी हद तक आप जो है कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी वर्क पर, किसी भी चीज़ पर। इसके अलावा होता है एनर्जी बढ़ाने में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं के लिए, बल्कि आपको लगता है कभी किसी वक्त आप ज़्यादा थक गए हैं किसी दिन, तो आप ब्लैक कॉफ़ी का सेवन अगर करते हैं, वो भी जैसे बताया है बिना दूध और बिना चीनी के, तो फिर ये ब्लैक कॉफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो बूस्ट करने वाली है। ये तीन मेजर फ़ायदे होते हैं ब्लैक कॉफ़ी के। हाँ, किसी भी चीज़ का अति सेवन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं होता है, लेकिन अगर हम बैलेंस्ड वे में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब देखिए, इसी में हमारे चैट बॉक्स पर आशु जी ने बोल दिया है लखनऊ से कि सर जी, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि आप ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं। अच्छा, क्या आप भी क्वांटिटी का ध्यान रखती हैं कि आखिर आप ज़्यादा तो नहीं पी रही हैं? क्या आपको इस बात का ध्यान रहता है? और अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप में से कोई और भी ब्लैक कॉफ़ी पीता है और उसको सच में लगता है कि हाँ एनर्जी मिली है, तो वो भी चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं कि हाँ वो भी सेवन करते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ यार ये फ़ायदेमंद तो है, मतलब डेफिनेटली इसको पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ ही हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल आपको ले चल रहे हैं एक खूबसूरत से गाने की तरफ, लेकिन तब तक आप ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदों को गिनाना हमको और बताना जारी रखिए, क्योंकि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे लिए ज़्यादा ही मैटर करता है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर सी लगी और इस दिल को कोई ठिकाना न मिला।

कहां ब्लैक टी की बातें हो रही थी और कहां जहर पीने तक की बातें। आगे फिलहाल आइए भाई, चलिए आपको ले चलते चैट बॉक्स पे आए हुए कुछ बातों की तरफ, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए हैं फिलहाल। और जो वापस से आया है वो लिखा है ऑफकोर्स क्रिकेट लवर ने कि चीनी 70 रुपये केजी हो गई है आज से, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही लेंगे सर। अच्छा ओके, मतलब अब चीनी बढ़ गई है तो चूंकि इसमें अब चीनी डालनी नहीं है तो मसला ही ख़त्म कर लेते हैं, ये बढ़िया था वैसे। एंड आपने बताया है आशु जी ने कि सुबह लेती हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी लेती हैं। एंड क्रिकेट लवर ने लिखा है कि सर मैं तो ब्लैक टी लेती थी बट आज से ब्लैक कॉफ़ी ही लूँगी। अच्छा सो काली चाय से बेहतर है काली कॉफ़ी, क्योंकि आपको इसमें चीनी की बचत भी मिल जाती है, राइट। सो जब चीनी नहीं डालिएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी वो बचत ही बन के आएगी। और चलिए अच्छी बात है, इस तरह हम बचत करते रहेंगे। फिलहाल आकर के हम आपको कुछ ज़रूरी बातों से अपडेट करने वाले हैं, कुछ ख़ास बातें और बताने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके काम की होने वाली है, राइट। और वैसे भी हम आपके काम की कई सारी बातें बताते हैं। अब एक ऐसी जगह आपको ले चलने वाले हैं जहां हल्दी तो बन रही थी लेकिन हल्दी ही नहीं थी। अब आप सोचेंगे ये क्या माजरा है भाई, यही तो बताना है कि जहाँ हल्दी बन रही थी एक्चुअल में वहाँ हल्दी ही नहीं थी। ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है और बिल्कुल सच है। कहाँ का है, क्या है मामला, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हाँ जी, फिलहाल इश्क ले डूबे या ना डूबे, लेकिन आपका दिल जरूर सोचने पर मजबूर हो जाने वाला है कि भाई हल्दी की फैक्ट्री में हल्दी का ही पता नहीं। चलिए, अब हमने जो पता लगाया है वो आप तक सारी डिटेल्स पहुंचा देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

कितना अजीब लगता है कि जिस चीज की खदान है, जिस चीज का बाजार है या जिस चीज की फैक्ट्री हो, वही ना मिले। अरे मुझे लगता है हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज्यादा हैरानी होती है। फिलहाल ऐसा ही मामला आया है जो कि चौंका देने वाला है। जी हाँ, सो फिलहाल कानपुर का ये मामला है और कानपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई के दौरान पता ये चला कि भैया छापेमारी में एक मसाला फैक्ट्री से करीब 5.86 रुपये यानी 5,86,000 रुपए का जो संदिग्ध स्टॉक था वो जब्त किया गया। सो अधिकारियों को ये आशंका है कि चावल के टुकड़े में रंग मिला करके हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था। सो मसालों के 6 नमूने जांच के लिए फिलहाल भेजे गए हैं और रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी जहां फैक्ट्री है वहां बिना हल्दी के बन रही थी हल्दी पाउडर। सो आज ये ज़माना आ गया कि भाई जो चीज़ बनाया जा रहा उसका अता पता ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है और हम कुछ और ही खा रहे हैं, हम कुछ और ही पी रहे हैं। सो फिलहाल लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से ताबड़तोड़ इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है ज़बरदस्त तरीके से, वो काबिले तारीफ है। मिलावट के खिलाफ जंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां जो है, इतने सारे हादसे, ये कहीं ना कहीं मिलावट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा असर है। सो इसी में अब यूपी में भी लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत हो गई है, जिसका काफ़ी बड़ा श्रेय रोशन जैकब को जाता है। अब आप जानेंगे कि रोशन जैकब कौन है। ऑफकोर्स जो लोग गोंडा में रहे हुए हैं उनको पता है कि यहाँ की फॉर्मर DM रह चुकी हैं रोशन जैकब, और फिलहाल रोशन जैकब क्या कर रही हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और किस तरह से उनको महाराष्ट्र के एक IAS ऑफिसर से तुलना उनकी की जा रही है, और क्यों की जा रही है, किस बात को लेके की जा रही है, ये भी हम बताएंगे इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल चूँकि हमने कह दिया है ज़रूर बताएँगे, तो मतलब ज़रूर बताएँगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम ज़रूर बताएँगे।

0: जाते जाते एक गल सुन दी जा, लाके कदे आस किसे खास ते ना बैठी, जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी, मुक जाना मैं सुख जाना मैं, फुल जया लेके मेरी लाश ते ना बैठी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी भाई, जिस वादे के साथ में गए थे उस वादे के साथ में वापस से आ गए हैं और अब आपको बताने वाले कि भाई डॉक्टर रोशन जैकब आखिर इनको क्यों कंपेयर किया जा रहा है महाराष्ट्र के एक आईएएस ऑफिसर के साथ में। आखिर क्या वजह है और क्यों ऐसा कंपैरिजन किया जा रहा है, चलिए फटाफट से हम आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो भाई महाराष्ट्र में जो तुकाराम मुंडे हैं, जिस तरह से उनका फैसला डिसीजन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भाई कॉटन कैंडी से लेकर के शावरमा का रोल हो, कुछ भी हो, सिंथेटिक कलर्स सब कुछ बंद कर दिए गए, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को नोटिस दिया गया, इवन बंद कर दिया गया। ये सारे डिसीजन ताबड़तोड़ महाराष्ट्र में लिए जा रहे हैं फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, जिसका पूरे देश में सराहना हो रही है कि भाई ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे डिसीजंस हर राज्य में होने चाहिए, क्योंकि मिलावट जो है हर राज्य में। सो उत्तर प्रदेश में रोशन जैकब को बार बार याद किया जा रहा है इसी मामले को लेकर, क्यों आखिर? नकली घी हो या फिर मिलावटी दूध या फिर पनीर, इसके खिलाफ यूपी में भी फिलहाल चलाया जा रहा है एक अभियान। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने की थाली तक, चूंकि हमको बताया भाई डेयरी उत्पाद जो है, यानी दूध और उससे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब जैसे किसी को चाय पीना है तो दूध है, खाना बनाना, सब्जी बनाना तो पनीर है, फिर दही का भी इस्तेमाल करते हैं, छाछ का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त जो हैं रोशन जैकब, बाजार में मिलावटी डेयरी उत्पाद बेचने वाली कई सारी यूनिट्स पर शिकंजा लगातार कसती जा रही हैं। 2026 के एक बड़े अभियान में 3,537 निरीक्षण किया, 2,075 छापेमारी की और 2,965 सैंपल की जांच हुई। इस दौरान 11,66,00,000 रुपए का सामान जब्त हुआ और 63,17,000 रुपए के मिलावटी जो उत्पाद थे उसको नष्ट भी किया गया। आखिर

एक अलग राज्य स्तरीय अभियान में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के नमूने भी सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद 110 ब्रांड के लाइसेंस जो हैं वो भी खत्म कर दिए गए। सो रोशन जैकब मिलावट करने वालों को जनता के सामने भी लाने की कोशिश कर रही हैं और अक्टूबर 2025 में उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसे दोषियों के नाम और तस्वीरें जो प्रमुख सार्वजनिक स्थान है वहां पर होर्डिंग्स और पोस्टर पर लगाए जाएंगे। यानी जो भी मिलावट करता पाया गया, ऐसी कंपनी का मालिक, ऐसा कंपनी का ओनर, उसके सार्वजनिक फोटोज लगाए जाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों को बताया जाएगा कि ये है मिलावटखोर, इनसे सावधान। सो इस तरह के अभियान चलाए हैं डॉक्टर रोशन जैकब ने। सो पिछले साल दिवाली से शुरू हुआ ये अभियान अब भी पूरी ताकत से ही जारी है, क्योंकि आपकी थाली तक जो पहुंचे वो असली खाना होना चाहिए, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं। और आपके राज्य में मिलावट के खिलाफ कौन लड़ रहा है अब आपको समझ में आ ही गया है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई महाराष्ट्र के तुकाराम मुंढे, जिनके ताबड़तोड़ फैसले अब पूरे देश में उनको सराहना दी जा रही है कि ऐसे डिसीजन जो उसमें मिलावट के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जाए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से कमा रहे हैं हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, लेकिन जब सारा पैसा, सारी मेहनत, सारे एफर्ट्स बीमारियों को सही करने में ही जाएगा तो जियेंगे कब? जाहिर सी बात है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये मिलावट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरे समाज को खोखला और ख़त्म करने की बात होती है ये। सो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जंग लड़ना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपको हम बता दें, डॉक्टर रोशन जैकब के बारे में हम बता रहे थे। सो डॉक्टर रोशन जैकब जो है वो गोंडा की फॉर्मर DM भी रह चुकी हैं। सो इसके बाद बुलंदशहर, कानपुर, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ जैसे ज़िलों में भी DM रह चुकी हैं और फिलहाल मंडल आयुक्त के पद पर तैनात रही हैं और अभी मिलावट के खिलाफ अभियान छिड़े हुए हैं UP में। सो आपको डॉक्टर रोशन जैकब के बारे में जान करके कैसा महसूस हो रहा है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप भी इनकी DMship में गोंडा में रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बारे में आप भी जान रहे हैं कि आखिर कैसा कार्यकाल था एज DM इनका गोंडा में। और फिलहाल अभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पद पर तैनात रहते हुए जिस तरह से डिसीजन ले रही हैं डॉक्टर रोशन जैकब, वो कहीं ना कहीं सभी के मुंह से ये निकल रहा है कि भाई काबिले तारीफ़ हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये काबिले तारीफ काम जो है ये यूं ही जारी रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ख़िलाफ़ अभियान चलते रहने चाहिए, क्योंकि हमारी थाली तक जो पहुँचे, हम तक जो पहुँचे, वो साफ़ सुथरा और बेहतर चीज़ हो। क्या मानना है आपका? आप भी अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। फ़िलहाल चलिए, वक्त हो गया है आपको एक बेहतरीन सा सॉन्ग सुनाने का आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: अगर मैं कहूं कि भाई बस महज एक पत्थर से ये पता लग जाए कि कहीं ना कहीं बाकी ग्रहों पर भी जिंदगी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मतलब एक पत्थर क्या ही बता सकता है, क्योंकि वो तो ना बोल पाता है, ना जिंदा होता है, ना ही बढ़ता है, बस हमेशा यूं ही पड़ा रहता है ना? लेकिन दरअसल इसी पत्थर में छिपे हैं राज इस पृथ्वी के बनने के, और क्या कुछ आगे हो सकता है इस बात को जानने के, साथ ही साथ वो राज जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों पर जिंदगी तलाशना फिजूल नहीं। आइए, क्या है पूरी बात, कौन सा ऐसा पत्थर मिला है जिससे इतने सारे राज खुले हैं, आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

क्या पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत भारत से हुई थी? फिलहाल हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को झारखंड की एक 3.5 अरब साल पुरानी चट्टान में मिला है सूक्ष्म जीवों के शुरुआती निशान। तो आप सोचेंगे 3.5 अरब साल पुरानी चट्टान कहां मिल गई? भाई वही तो आपको बताने वाले हैं। सो दिखने में ये एक आम सा पत्थर लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा है हमारी पृथ्वी के शुरुआती दौर का सबसे बड़ा सीक्रेट। जी हाँ, जब हमारी पृथ्वी, हमारी धरती सिर्फ 3.5 अरब साल पुरानी थी। सो कहानी की शुरुआत हुई है 2014 में। भूवैज्ञानिक त्रिशोरता चौधरी को झारखंड में चर्ट नाम की एक चट्टान मिली जिसमें काली सफ़ेद धारियां थी। जांच में इन काली धारियों में कार्बन पाया गया, लेकिन सिर्फ कार्बन होना जिंदगी का सबूत नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी टेक्निक से इसके रसायन और बनावट की गहराई से जांच की। सो जांच में खुलासा तो हुआ ही होगा। सो जांच में खुलासा ये हुआ कि इसमें कार्बन 13 बहुत ही कम था, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का पक्का सबूत है, और इसकी परतदार बनावट जो है वो प्राचीन सूक्ष्म जीवों से पूरी तरह मेल खाती है, जैसे कि प्राचीन सूक्ष्म जीव थे। फिर मिली एक कुदरती घड़ी। चट्टान में मौजूद जिरकॉन के 8 क्रिस्टल्स, जिसका यूरेनियम धीरे धीरे सीसे में बदलता है और जिससे चट्टान की बिल्कुल सटीक उम्र पता चलती है। सो जब इस कुदरती घड़ी को पढ़ा गया तो उम्र निकली 3.497 अरब साल। 3.497 अरब साल, कैन यू इमेजिन कितनी जिंदगी जी लेंगे इसमें? ओ माय गॉड, अनकाउंटेबल। सो इस खोज की खासियत ये कि जिंदगी के जो सबूत हैं और उम्र बताने वाले क्रिस्टल्स दोनों एक ही चट्टान में बहुत ही महफूज मिले, यानी सुरक्षित मिले। सो ये क्रिस्टल्स जो है बाहर से बहकर आए हुए टुकड़े नहीं थे, बल्कि इनकी बनावट से साफ है कि चट्टान बनते वक्त ज्वालामुखी की जो सामग्री है उसी से ही इन जिरकॉन क्रिस्टल्स का निर्माण हुआ है। सो ये सबसे पुराना जिंदगी होने का दावा नहीं है, क्योंकि इससे पुराने सबूतों पर अभी विवाद है या उनकी सटीक उम्र तय नहीं है। सो झारखंड की खोज इसलिए खास है क्योंकि इसकी उम्र सीधे नापी गई है और पता भी चल गया है कि भाई ये इतने साल पुराना है। सो फिलहाल इस सरजमी, इस धरती के प्राचीन ज्वालामुखी वाले माहौल में मिला ये जिंदगी ये साबित करती है कि ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों पर भी जीवन की तलाश जो है वो बेकार नहीं है। क्योंकि शुरुआत में हमने अपने आपसे कहा था कि भाई इस चट्टान से पता चला है कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं तो वो बेफजूल नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये जो झारखंड में चर्ट नाम की चट्टान मिली है ये सुन लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा, और हो सकता है आप इसको जाकर के अलग से सर्च करके इसके बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन है तो काफ़ी सच में इंटरेस्टिंग, मतलब एक पत्थर से इतनी सारी चीज़ों को पता लगाना, और इतने पुराने हम लोग हैं, क्या बात है। मतलब ये धरती जो है ये बहुत पहले आई, इंसान तो खैर बहुत बाद में आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की चीज़ें खोज होती रहती है और पता लगता रहता है, स्टडीज़ आती है, ये होता बड़ा गजब का है। क्योंकि इसको सुनने में, इसको जाने में बड़ी ही दिलचस्पी आती है कि भाई अपनी धरती, अपनी ये पृथ्वी आखिर कितनी पुरानी, आखिर कैसे बनी और क्या कुछ हुआ इसके बनने के बाद।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: सुनो, आज से तुम मेरी कविता हो, भावना हो, कामना हो।
4: सुनिए।
3: हाँ कहो।
4: आज से आप ही मेरे दिनेश हैं, सुरेश हैं, राकेश हैं, रमेश हैं।
3: क्या?

0: फिलहाल चीनी चीनी जो है हर तरफ चीनी चीनी हो रही है, और तो कई सारी मीम्स और रील्स भी आपको अब चीनी पर ही नजर आने लगी उसकी अचानक से बढ़े दामों और महंगाई को लेकर के। फिलहाल आपको हम बता दें कि त्योहारों से पहले सस्ती हो सकती है चीनी, आखिर लिया गया है एक फैसला, क्या है आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

चूंकि त्योहारी सीजन है और इसमें चीनी का बढ़ना सच में काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सारी मिठाइयाँ, सारे मीठे पकवान चीनी से ही बनते हैं, और ऐसे वक्त में जब चीनी इतना ज़्यादा दाम बढ़ जाए तो मतलब ख़र्चा पूरा पूरा डबल। इसी को देखते हुए फ़िलहाल डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने 10 लाख टन ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 10 लाख टन जो चीनी है उसको ड्यूटी फ्री करके इम्पोर्ट कराने की बात है, यानी जो चीनी इम्पोर्ट होगी, जो बाहर से आएगी, उसको ड्यूटी फ्री 10 लाख टन तक दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट का लक्ष्य है घरेलू बाज़ार में चीनी की अवेलेबिलिटी बढ़ाकर कीमतों पर दबाव को कम करना। अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों की वजह से चीनी की मांग बढ़ती है, ऐसे में इस फैसले से सप्लाई के फ़िलहाल मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। त्योहारों के सीज़न से पहले चूंकि बढ़ती चीनी कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क जो है वो मुक्त आयात की मंजूरी दी है, और ये आयात 31 अक्टूबर 2026 तक टैरिफ रेट कोटा यानी टीआरक्यू के तहत किया जा सकेगा, जिससे कि उम्मीद जताई जा रही है कि भाई इससे चीनी के दाम कम हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये कोशिश भी है कि चीनी के दाम कम किए जाए, क्योंकि बताया ना कि लगातार अब त्यौहार पर त्यौहार आ रहे हैं, और इसमें हर त्यौहार पर हमारे सभी घरों में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता हो, फिर चाहे वो मिठाइयाँ बनाते हों, सेवइयाँ बनाते हों, या कोई भी ऐसा आइटम जो मिठाई से बनता है, यानी जो मिठाई का काम करता है और चीनी से बनता है, हर वो उत्पाद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं डिमांड्स और लगातार बढ़ती जाएगी, जिसको लेकर के ये कंसर्न साफ है कि किस तरह से चीनी के रेट को कम किया जाए। फिलहाल कितना फिजिबल होगा और कितना वर्क करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ले चलते हैं सॉन्ग की तरफ, और उसके बाद हम बताते हैं क्योंकि आपके तरफ से कंटेंट्स भी आ गए हैं। कंटेंट में किसने क्या और कहां से भेजा है ये भी हम आपको बताएंगे आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल सुनते रहिए गुड मॉर्निंग हुड्डा विद यू मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।

0: फिलहाल सूरज की बाहों में जिंदगी है और आइए इसी जिंदगी में हम ले चलते हैं आपके भेजे गए कंटेंट्स की तरफ, क्योंकि आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। सो फिलहाल वक्त है ले चलने का कंटेंट्स की तरफ, जो कुछ आपने लिखा है और भेजा है। सो किसने लिखा है, क्या लिखा है और कहां से भेजा है, ये आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो देखिए भाई, हमारी प्रीति जी ने सबसे पहले बहराइच से भेजा है और लिखा है, सुहावना था गुजरा वक्त। वाह, उनवान तो बड़ा ही प्यारा है। लिखती हैं कि बड़ा सुहावना था मेरा गुजरा हुआ वक्त, जो बिसारने से भी ना बिसरता काश। वापस लौट आए वो सुहावना बचपन का मतवाला, निश्चल निष्कपट वाला दौर। वैसे तो सभी बड़े बड़े उपदेश, क्योंकि उपदेश देने से टैक्स जो नहीं लगता कोई। जैसा भी जीता वर्तमान में जो इंसान, उसे भी सहस्त्र संघर्ष करना पड़ता। चाहे हो भला या बुरा, हर इंसान चाहता वक्त गुजारना अच्छा अच्छा, पर ना चलता वक्त पे अपना कोई जोर। इसलिए कहना है बहुत ही आसान और स्वयं आत्मसात करना है बहुत मुश्किल। न चलता अपना कोई जोर बीते हुए लम्हों को बिसारने में। वाह क्या बात है, बीते हुए लम्हों को लेकर के बड़ा ही उम्दा आपने ये कंटेंट भेजा। थैंक यू सो मच प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं।

हो, कभी बनकर चांदनी मेरे पास उतरती हो, कभी सपनों में आकर मेरा हाथ पकड़ती हो। तुम्हारी यादों की खुशबू अजीब सी है, दूर होकर भी तुम मेरे करीब सी हो। तुमसे मिले बिना भी मुझे तुमसे प्यार हो गया, जाने कब दिल तुम्हारा बेकरार हो गया। तुम्हारी एक मुस्कान का असर ऐसा है जैसे सूखे मौसम में सावन बरसा हो। तुम बोलो तो वक्त ठहर सा जाता है, तुम चुप रहो तो दिल बेचैन हो जाता है। तुम्हारी आंखों में तो राज छुपा है जिसने मेरे दिल को अपना लिया है। हर सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है और हर शाम तुम्हारी याद में ढलती है। तुम्हारे बिना ये मौसम अधूरा सा लगता है, हर खुशी में कोई हिस्सा अधूरा सा लगता है। कभी सोचता हूँ तुमसे कह दूँ सब कुछ, फिर डरता हूँ कहीं खो ना दूँ तुम्हें यूं ही। तुम्हारे नाम से धड़कता है मेरा दिल, तुम्हारे बिना लगता है सब कुछ मुश्किल। तुम पास रहो तो दुनिया खूबसूरत लगती है, तुम दूर रहो तो हर खुशी अधूरी लगती है। तुम मेरी चाहत हो, मेरी दुआ भी हो, मेरी हर कविता का सबसे हसीन वजह हो। तुम्हें पाने की कोई जिद नहीं है मुझे, बस उम्र भर चाहने की इजाज़त चाहिए तुम्हारी। अगर इश्क गुनाह है तो ये गुनाह रहने दो, मेरे दिल में अपना नाम यूं ही रहने दो। क्यों आती हो तुम ये सवाल रहने दो, बस मेरी हर धड़कन में अपना ख्याल रहने दो। काली रातों में यूं ही मुझे सताती रहो, मेरे सपनों में चुपके से आती रहो। मैं हर जन्म तुम्ही से चाहूंगा और हर बार तुम्हें अपना कहकर मुस्कुराऊंगा। यह है कुंदन राज दत्त और निश्चल जी फ्रॉम पूर्णिया बिहार। थैंक यू सो मच, बहुत इंटेंस्ड है, थैंक यू सो मच। पुनीता सिंह जी ने लिखा है कि खत्म अपनी चाहतों का सिलसिला कैसे हुआ, तू तो मुझ में जज्बा था मुझसे जुदा कैसे हुआ। वो जो सिर्फ तेरे और मेरे दरमियाँ एक बात थी, आओ सोचे शहर उससे आशना कैसे हुआ। चुभ गई सीने में टूटी ख्वाहिशों की किरचियाँ, क्या लिखूं दिल टूटने का हादसा कैसे हुआ। जो रंग गए जहाँ था कभी मिलता है अब रुख फेर कर, सोचती हूँ इस कदर वो बेवफा कैसे हुआ। ओहो क्या बात है, थैंक यू सो मच। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, फिर भी उम्र भर दिल से कम नहीं होते। मिलना जिनकी किस्मत में लिखा ही नहीं, वो दूर रह कर कभी जुदा नहीं होते। कुछ लोग सफ़र में साथ नहीं चलते मगर रास्तों में उनकी आहट रहती है। वक्त उन्हें हमसे दूर तो कर देता है पर दिल में उनकी वही जगह रहती है। हमने भी उसे अपना कहकर नहीं चाहा, बस उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ली। वो मेरा हो कर भी मेरा ना हो सका और मैंने उसकी यादों को ही जिंदगी मान ली। क्या बात है वर्षा कुमारी पायल जी, थैंक यू सो मच, बहुत खूब। यामिनी चौहान जी लिखती हैं खामोश रिश्ता, कुछ रिश्ते ख़त्म कहाँ होते हैं, बस चुपचाप रख दिए जाते हैं। दिल की उस दराज में जहाँ पुराने खत तो रहते हैं मगर उन्हें पढ़ने की वजह नहीं रहती। नाम वही रहता है, याद भी कभी कभी आ जाती है, बस इतना बदल जाता है कि सामने आ जाए वो रिश्ता तो आंखें पहचानती है मगर जुबां उसका जिक्र नहीं करती। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। साक्षी यादव जी लिखती हैं तेरे नाम से शुरू हो मेरे नाम पे ख़त्म हो, मेरी हर दुआ में बस तेरा ही जिक्र हो। तू मिले तो लगे मुकम्मल है मेरी ज़िंदगी, वरना इस दिल को हर खुशी में भी कुछ कम हो। ओहो क्या बात है। मिस्टर आकाश लिखते हैं न जाने किस मोड़ पर हमने उसूलों का जनाजा पढ़ लिया। अर्ज़ है न जाने किस मोड़ पर हमने उसूलों का जनाजा पढ़ लिया। ज़मीर ज़िंदा था मगर हमने उसे खामोशी की गहराई में दफन कर दिया। और जो लोग कल तक सच के लिए दुनिया से लड़ने का हुनर रखते थे आज कहाँ गए वो सब। कि जो लोग कल तक सच के लिए दुनिया से लड़ने का हुनर रखते थे आज कहाँ गए वो सब। देखो तो ज़रा उन्हीं लोगों ने अपने फ़ायदे की खातिर आज सच को ही मुजरिम साबित कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और आज की लास्ट ये जो पोएम है वो कुंजन जौहरी जी की है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, कि कभी यादों की गलियों में मेरा नाम पुकारना, कभी रुक कर ज़रा मुझको भी अपने पास बुलाना। ये दोस्ती सिर्फ लफ्ज़ों की कहानी तो नहीं, कभी खामोशियों में भी मेरा हाल समझ जाना। बहुत गुजर गया वक्त तेरे इंतज़ार में, ज़रा देर से ही सही मगर एक बार लौट आना। जो पल साथ गुजारे थे वो

भी हैं महफूज, कभी उन बीते लम्हों की किताबें खोल कर पढ़ जाना। वक्त की रफ्तार ने हमको बहुत दूर कर दिया, कभी इस भागती दुनिया से थोड़ा वक्त चुरा लाना। रोहतक उतर जाती कुछ पुरानी यादें, कभी मेरी खामोशी को भी अपना समझ जाना। देरी से आने का शिकवा नहीं है तुमसे, बस लौटो तो इस बार दिल से लौट कर आना। जिंदगी रोज हमें खुद से दूर करती रही, कभी थोड़ा ठहर जाना और खुद से मिलाना। मैं आज भी वही हूँ जहाँ छोड़ा था तुमने, अगर याद आए दोस्ती तो बस एक बार मुस्कुराना। क्या बात है, वाह, बहुत ही उम्दा, सभी का बहुत इंटेंस लिखा है। प्रीति जी ने भी कहा है सभी की लेखनी वेरी ऑसम, सविता जी कहती सभी की लेखनी बहुत खूबसूरत, नव्या ने भी तारीफ की, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। साथ ही साथ क्रिकेट लवर आपका भी स्वागत है, वेलकम है स्पेशल शो में। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी आपका भी स्वागत करते हैं, एंड यस लवली सिंह आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। साथ ही साथ हमारे अनूप जी हैं, आपका भी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में हम स्वागत करते हैं। और महेंद्र लिखते हैं कि चीनी के भाव कितने भी बढ़ जाए, मुझे तो वैसे भी मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, वैसे भी मेरी किसी चीज़ की आदत नहीं, क्योंकि मेरा मानना किसी भी चीज़ की लत नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई इंसान। आखिर आदत ऐसी हो कि ज़रूरत पड़े तो आसानी से छोड़ भी सके, वरना भाव बढ़े या रिश्ता बदले दोनों ही जेब और दिल पर भारी पड़ सकते हैं। वाह क्या बात है, सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सब लोगों के प्यार के लिए, आप सब लोगों के सम्मान के लिए। फिलहाल आपको आज का ये शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे अब इजाज़त, वापस से मिलेंगे कल संडे स्पेशल शो में आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं संग मिल करके।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार श्रोताओं, ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 FM के लोकप्रिय कार्यक्रम गांव की गूंज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी जया।
7: मैं हूं समता।
8: और मैं हूं आपकी गीता।
9: और मैं हूं किरण।
6: हम चारों हर सप्ताह किसी ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां आज भी मिट्टी की खुशबू, रिश्तों की गर्माहट और लोकगीतों की मिठास जिंदा है। हमारा उद्देश्य केवल गीत सुनाना नहीं, बल्कि उस जीवन को आपके सामने लाना है जो शहरों की भागदौड़ में कहीं पीछे छूटता जा रहा है।
7: आज हम पहुंचे हैं गोंडा जनपद के एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत गांव रामपुरवा में।
8: अरे वाह, हवा कितनी ठंडी और ताजी है ना?
9: देखिए सामने सरसों नहीं लेकिन धान के खेत हवा के साथ ऐसे झूम रहे हैं जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं।
6: अरे उधर देखिए, आम का कितना पुराना बाग है और सारे पेड़ों पर तोते बैठे हैं। सच, गांव की सुबह का अपना अलग ही संगीत होता है।
7: हाँ जया जी, शहर में सुबह गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं और यहाँ कोयल और गौरैया।
8: सच कहूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि जूते उतार कर इसी मिट्टी में नंगे पांव दौड़ूं।
6: तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं।
9: नमस्ते काका।
10: खुश रहो बिटिया, कहाँ से आई हो?
6: काका, हम ज्ञानस्थली रेडियो से आए हैं।
10: अच्छा, वही रेडियो जिसमें लोकगीत बजते हैं। बहुत अच्छा, गांव का नाम रोशन कर दिया आपने।
6: श्रोताओं, अभी सुबह के 7 बजे हैं। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं है कि महिलाएं अपने घरों के सामने आंगन बुहार रही हैं, कोई गोबर से लिपाई कर रहा है तो कोई तुलसी पर जल चढ़ा रहा है।
7: उधर देखिए, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सिक रही है
8: और उसकी खुशबू, लगता है कि आज का नाश्ता यहीं कर लिया जाए।
9: अगर चाची ने बुला लिया तो मना मत करना।
6: अरे वाह, इतने सारे बच्चे।
11: नमस्ते दीदी।
7: स्कूल जा रहे हो?
11: जी।
8: अच्छा तो बताओ, सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है?
11: मुझे तो हिंदी पसंद है।
8: और मुझको साइंस।
9: और बड़े होकर क्या बनोगे?
11: अध्यापिका।
6: तो याद रखिए बच्चों, कोई काम छोटा नहीं होता है। मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान के योग्य है।
7: देखिए, इस पीपल के नीचे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं।
6: नमस्ते दादाजी।
12: नमस्ते बिटिया।
9: ये सुबह सुबह क्या चर्चा चल रही है?
13: खेती की, राजनीति की।
8: बिना राजनीति के चौपाल अधूरी रहती है क्या?
6: लेकिन आज राजनीति नहीं, आज बात होगी गांव की खुशियों की।
13: तब तो बैठी है।
7: अरे ये रही दादी अम्मा।
14: नमस्ते बिटिया।
6: दादी, आप हमको बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी होगी?
15: अरे बिटिया, आप गिना विना छोड़ दिए ना, 80 के ऊपर तो होंगे हुई।
8: फिर भी कितनी फुर्ती है।
15: और अगर काम करत रहो ना बिटिया, तो शरीर चलत फिरत रहत है, मशीन निहाय।
9: दादी, पहले के गांव और आज के गांव में क्या अंतर है?
15: अरे पहले इतना ज्यादा ढेर कुल्ले सामान नहीं रहत रहा और लोग कितना खुश रहत रहे। और अब देखो महन्नो इतना सामान हो गया है, लेकिन सभे एक दूसरे से मतलब मिलू नहीं पावत है, तनिको कोई लगे समय नहीं है।
6: बहुत गहरी बात कही आपने।
15: पहले के वक्त देखो कत्ता बढ़िया रहत रहा। सभे खाना खाए के बाद पूरा गाँव भर चौपाल पे इकट्ठा बैठा जात रहा, एक दूसरे का हाल चाल लिया जात रहा, आल्हा होत रहा, कजरी होत रहा, क्यों बियाहू गावत रहा, और वहीं बच्चा लोग सब खेलत रहे। और आज सब मोबाइलिये में ही हैं, जब देखो तब वहीं के जाने का खिचिर मिचिर किया करत है।
7: क्या आपको पुराने लोकगीत याद है?
16: मैम, हम देख ले, संतोष भैया मिल जाए तो हम उनको बुला लें।
7: हम बोलते जा रहे हैं।
16: हाँ, बोल
7: ठीक है।
15: अरे बहुत ढेर,
8: तो आज हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सुना ही दीजिए।
15: अरे हमसे हो ही ना, लेकिन देखो हम किहे दे थे और तोहरे लोग हमारे साथ दे दियो।
6: जरूर दादी। श्रोताओं, बरसात केवल खेत को ही नहीं बल्कि मन को भी हरा भरा कर देती है। और सावन के दिनों में जब पति परदेश चला जाता है, तब गांव की महिलाएं अपने मन की बात गीतों से ही तो कहती हैं। ऐसा ही एक बेहद लोकप्रिय गीत अब हम सुनने जा रहे हैं।

0: क्या मधुर गीत संगीत था।
1: आंखें बंद करके सुनो तो लगता है जैसे कच्चे आंगन में बैठी महिलाएं ढोलक पर यही गीत गा रही हों।
2: दादी, एक बात पूछूं, इस गीत का सबसे सुंदर हिस्सा आपको कौन सा लगता है?
3: अब देखो सुनो, ये महान शिकायतों है, प्यारो है, और साथ में यह कहो कि अगर इंतजार करत हो ना बिटिया तो उहो है। और यही का कहा जात है लोकगीत के कहूँ ना कहूँ मजबूती और ताकत।
4: बिल्कुल, लोकगीतों में बड़े बड़े शब्द नहीं होते लेकिन सीधे दिल तक पहुँच जाते हैं। सामने किसान काम कर रहे हैं। नमस्ते चाचा।
5: नमस्ते बिटिया।
2: सुबह से काम शुरू कर दिया।
5: किसान की घड़ी सूरज से चलती है, सूरज निकला नहीं कि खेत में पहुँच गए।
0: थकान नहीं होती है क्या?
5: जब फसल लहलाती है बिटिया, सारी थकान भूल जाते हैं।
4: आपके लिए खेती क्या है?
5: खेती रोजगार नहीं है, जीवन है। धरती हमारी माँ है, जितना प्रेम दोगे उतना लौटाएगी।
1: आजकल नई पीढ़ी खेती छोड़ रही है।
5: पढ़ाई जरूरी है लेकिन अपनी मिट्टी से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए।
2: बहुत सुंदर बात है, अब चलिए खेतों की ओर चलते हैं।
5: आइए बिटिया, जरा मेड़ पर संभल कर चलिए। रात में हल्की बारिश हुई थी, मिट्टी अभी भी गीली है।
1: अरे वाह, मिट्टी की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है।
0: शहर में तो लोग इत्र लगाते हैं लेकिन इस भीगी मिट्टी की खुशबू का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
2: वो देखो, खेत में बगुले भी उतर आए हैं।
5: जहाँ हल चलता है वहाँ कीड़े निकलते हैं, इसलिए बगुले हमारे साथी हैं। किसान अकेला कभी खेती नहीं करता, प्रकृति भी उसका साथ देती है।
4: वाह, कितना सुंदर विचार है।
1: चाचा, खेती आपने किससे सीखी?
5: अपने बाबा से। उन्होंने अपने बाबा से सीखी थी, तभी बाद में आई खेती पहले अनुभव से चलती थी।
0: और हाँ, अब तो मशीनें भी आ गई हैं।
5: हाँ बिटिया, मशीनें आई लेकिन मेहनत कम नहीं हुई। किसान आज भी सूरज से पहले जागता है और सबसे बाद में आराम करता है।
2: आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है?
5: मौसम, अगर समय पर पानी मिल जाए तो किसान का चेहरा खिल जाता है, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
4: सच है, किसान का जीवन उम्मीद पर चलता है।
0: वो देखो, उधर ट्रैक्टर चल रहा है।
5: लेकिन इस खेत में अभी बैलों से जुताई होती है, कुछ काम आज भी पुराने तरीके से ही अच्छे होते हैं।
1: और बैलों के नाम भी होंगे?
5: अरे क्यों नहीं, ये हीरा और मोती हैं।
2: अरे वाह, बिल्कुल कहानी वाले नाम।
5: इनके बिना तो मेरा आधा काम रुक जाए।
4: तो श्रोताओं, क्या आपको पता है गांव में जानवर केवल पशु नहीं होते, परिवार के सदस्य होते हैं।
0: उधर देखिए, उधर एक गाय अपने बछड़े को कैसे चाट रही है।
1: कितना सुंदर दृश्य है।
5: इसी से तो घर चलता है, दूध दही घी सब इन्हीं की देन है।
2: शहर के बच्चों को शायद ये सब देखने का अवसर नहीं मिलता,
4: इसलिए आज हम उन्हें रेडियो के माध्यम से गांव की सैर करा रहे हैं।
1: सामने कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं।
4: नमस्ते बहनों।
0: इतनी देर तक पानी में खड़े रहकर काम करना कठिन नहीं लगता है?
6: कठिन तो है लेकिन खेतवा हमार है, मेहनत करबे तब्बे तो चूल्हा जली।
2: काम करते समय बातें भी होती हैं।
7: खूब होत है, कोई हंसी सुनावत है, कोई गीत छेड़त है,
1: तभी तो थकान नहीं लगती होगी।
6: और का?
4: बिल्कुल।
1: अच्छा, कोई मजेदार बात सुनाइए।
6: एक बार हमरे गांव के हरिराम पहली बार शहर गए, वहाँ लिफर देखिन, ओमा एक बूढ़ी अम्मा गई और कछु देर बाद एक जवान लड़की बाहर आई। हरिराम दौड़ते हुए घर आए और बोले, अरे जल्दी चलो, अम्मा का भी वही डिब्बा माँ बैठा दिया जाए।
0: अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया।
2: गांव का सीधा साधा हास्य सबसे प्यारा होता है।
4: श्रोताओं, खेत केवल अन्न ही नहीं उगाते बल्कि गीत भी उगाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का दूसरा लोकगीत।

0: वाह क्या मधुर गीत था।
1: ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी ताल मिलाकर झूम रही हो।
2: यही गीत सुनकर काम में नई ताकत आ जाती है।
3: चाचा क्या आज भी लोग खेतों में गीत गाते हैं?
2: पहले जितना नहीं लेकिन त्योहारों और रोपाई के समय अभी भी गाते हैं।
0: हमें इन्हें बचा कर रखना होगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि लोकगीत हमारी पहचान है।
1: चलिए थोड़ी देर इस बरगद के नीचे बैठते हैं।
3: हवा कितनी ठंडी है।
0: अरे वो देखिए बच्चे आम बीन रहे हैं।
4: अरे एक बच्चा तो पेड़ पर चढ़ गया।
0: अरे बेटा सावधानी से।
5: जी दीदी।
1: पढ़ाई भी करते हो?
5: जी, लेकिन छुट्टी में आम खाना भी तो जरूरी है ना।
4: बचपन की यही तो असली खुशी है।
0: श्रोताओं गांव का जीवन हमें सिखाता है कि खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों की जरूरत होती है।
3: कभी पेड़ की छांव और कभी मिट्टी की खुशबू, कभी माँ के हाथ की रोटी और कभी किसी लोकगीत की धुन।
1: और इसी मुस्कान के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे गांव की पुरानी कुएं की ओर, जहां महिलाएं पानी भरते हुए एक बहुत ही प्यारा लोकगीत गाने वाली हैं। अरे वाह कितना सुंदर पुराना कुआं है ये।
4: उसके चारों ओर नीम और पीपल के पेड़ हैं। उनकी छाया में कितनी ठंडक है।
3: और तो और वहाँ रंग बिरंगे घड़े रखे हैं। ऐसा दृश्य अब बहुत कम देखने को मिलता है।
0: नमस्ते बहनों, आप सब मिलकर पानी भर रही हैं क्या?
6: हाँ बिटिया, पहले तो पूरा गांव यही आवत रहा, पानी भरत भरत काम भी हो जात रहा और आधी दुनिया के खबरों मिल जात रहे।
1: यानी ये गांव का पहला समाचार केंद्र था।
6: बिल्कुल, केकरे घरे मेहमान आए, के गाय के बछड़ा हुआ, के बिटिया सगाई है, ये सब पता चल जात रहा।
4: और झगड़े भी यही सुलझ जाते होंगे।
6: हाँ, कई बार तो दुई लोग रिसियान रहत रहे और पानी भरत भरत हंसते हुए अपने घर का लौट जात रहे।
3: सचमुच साथ रहने का अपना ही आनंद है।
0: आजकल हर घर में तो नल है लेकिन उस समय ये कुआं पूरे गांव की धड़कन रहा होगा।
6: बिल्कुल, सवेरे और संझा का यहाँ मेले जैसा माहौल रहत रहा।
1: अरे बेटा रहने दो, ये घड़ा बहुत भारी है।
5: दीदी कहती है काम सीखोगी तो जीवन आसान हो जाएगा।
0: बहुत प्यारी बात,
3: लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है।
5: जी मैं तो 5वीं में पढ़ती हूँ।
0: शाबाश।
1: चाची काम करते करते गीत भी गाती हैं?
6: अरे बिटिया बिना गौनई के पानी बिना ही भरा जाता।
4: तो आज हमारे श्रोताओं के लिए वही पुराना माहौल बना दीजिए।
6: पहले एक किस्सा तो सुन ले।
0: जरूर।
6: बहुत साल पहले की बात है, एक नई नई दुल्हन पहली बार पानी भरने आई, घड़ा सिर पर रखा, लेकिन घरत पहुँचत पहुँचत घड़ा खाली हो गया। रास्ते भर सबका नमस्ते करत करत चली, बात करत रही, पनिया छलकत जात रहा। सास बोली बहू पानी कहाँ गवा। बहू बोली अम्मा रास्ते माँ सबका नमस्ते करत करत पनिया उड़ाए गवा।
3: और गांव के ऐसे किस्से सुनकर मन खिल उठता है।

0: यही तो लोकगीत की ताकत है, वे कहानी भी कहते हैं और भावनाएं भी।
1: चाची, अब भी गांव की लड़कियां ऐसे गीत सीखती हैं क्या?
2: कुछ सीखत तो हैं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। भाई, मोबाइल आए गवा है, टीवी आए गवा है, अब लोकगीत सुनने वाले कम हैं। अब लोकगीत कोई नहीं सुनता है।
3: लेकिन जब शादी होती है तो गीत गाए जाते होंगे, है ना?
2: अरे चाची, बिना लोकगीत के कैसी शादी? हल्दी हो, मटकोर हो, विदाई हो या स्वागत, हर रस्म में गीत तो चाहिए ही चाहिए।
4: और दादी अम्मा भी गाती होंगी?
5: अभी भी गाती हूँ बिटिया, आवाज बूढ़ी हो गई है, गीत नहीं।
1: वाह, क्या बात कही आपने, आवाज बूढ़ी हो गई लेकिन गीत नहीं।
0: दादी, आपने सबसे पहले कौन सा गीत सीखा था?
5: अपनी अम्मा से सोहर, फिर कजरी, झूला, बिरहा, देवी गीत, धीरे धीरे सब याद हो गए बिटिया।
3: क्या उस समय कोई लिखकर सिखाता था?
5: नहीं, सुनते सुनते याद हो ही जाता है, यही हमारी किताब थी।
4: तो जी हाँ श्रोताओं, यही है हमारी अमूल्य संस्कृति और विरासत।
1: चाची, एक बात बताइए, मिट्टी के घड़े का पानी इतनी देर ठंडा कैसे रहता है?
2: अरे ये तो मिट्टी के कमाल है, न बिजली चाहिए न मशीन, प्रकृति खुद ही ठंडा कर देती।
0: सच है, हमारे पुराने तरीकों में कितना विज्ञान छिपा है
3: और कितना अनुभव भी।
1: नमस्ते बाबा,
4: कहाँ जा रहे हैं?
6: चौपाल, आज शाम को बच्चों को आला सुनाऊंगा।
0: आज भी बच्चे सुनते हैं?
6: अगर प्यार से सुनाऊं तो बच्चे सब सुनते हैं, बस उन्हें समय देना पड़ता है।
1: बहुत सुंदर बात। श्रोताओं, अगले पड़ाव में हम चलेंगे गांव की चौपाल पर, जहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सुनेंगे एक मधुर लोकगीत और जानेंगे कि गांव की एकता की असली ताकत क्या है।
3: अरे जया जी, जरा धीरे चलिए, आप तो ऐसे चल रही हैं जैसे पूरा गांव आज ही देख लेना है।
1: गांव छोटा हो सकता है समता जी, लेकिन इसकी कहानियाँ बहुत बड़ी होती हैं।
4: और मुझे तो हर मोड़ पर रुक जाने का मन कर रहा है।
0: देखिए देखिए, सामने कितना बड़ा बरगद का पेड़ है।
3: वाह, इसकी जड़ें तो जमीन तक आ गई हैं।
1: गांव में ऐसे पेड़ केवल पेड़ नहीं होते, ये इतिहास होते हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियां इसकी छांव में बैठी होंगी।
4: चलिए ना, दो मिनट यहीं बैठते हैं।
3: उफ, कितनी ठंडी हवा है।
0: शहर में तो ऐसी हवा एसी भी नहीं दे सकता।
1: बिल्कुल, प्रकृति की ठंडक किसी मशीन से नहीं मिल सकती।
4: पता है, हमारी नानी कहा करती थी कि बरगद के नीचे बैठकर अगर मन की बात कहो तो मन हल्का हो जाता है।
3: अच्छा, तो फिर मैं अपनी बात कह दूं?
1: कहिए।
3: मुझे बहुत भूख लगी है।
0: मुझे पहले से ही पता था कि आपकी बात खाने पर ही जाकर रुकेगी।
4: उफ़, सुबह से बस खेत कुआं और बातें, अरे अब कुछ खाने को भी मिलना चाहिए कि नहीं?
1: अच्छा ये बताइए, अगर किसी गांव वाले ने हम लोगों से ये कहा कि आइए बाजरे की रोटी, दाल और ताज़ा मक्खन तैयार है, तो आप लोग क्या बोलेंगी?
3: तो मैं रिकॉर्डिंग 5 मिनट रोक दूंगी।
0: और अगर साथ में गुड़ भी मिल जाए तो?
3: और फिर 10 मिनट।
4: और देखिए, हमारी समता जी का पूरा कार्यक्रम खाने के हिसाब से ही चलता है।
3: अरे पेट खुश रहेगा तो आवाज़ में मिठास रहेगी।
1: श्रोताओं, गांव की एक खूबसूरती है, यहाँ समय भागता नहीं, धीरे धीरे चलता है। लोग एक दूसरे को देखकर रुकते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, शायद इसी वजह से रिश्ते इतने मजबूत होते हैं।
0: सच कहा, अभी तक जितने लोगों से मिले हर किसी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया है।
4: और किसी को जल्दी भी नहीं थी।
3: शहर में तो लोग लिफ्ट में साथ खड़े होकर भी एक दूसरे को नहीं देखते।
1: यही तो फर्क है।
0: देखो देखो, एक छोटी सी बच्चिया भागती हुई जा रही है।
4: कितनी प्यारी है।
3: लेकिन अगर हमारी तरफ आ गई तो?
1: अरे डरिए मत समता दीदी, ये गांव के जानवर हैं, ये शहर से ज्यादा सभ्य होते हैं।
3: यह बात तो मैं नोट कर रही हूँ।
0: किसी के घर से ढोलक की आवाज़ आ रही है,
4: शायद कोई महिलाएं लोकगीत गा रही हैं।
1: गांव में ढोलक की आवाज़ सुनाई दे तो पैर अपने आप उसकी ओर चल पड़ते हैं।
3: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी इसी इंतजार में होंगे कि अगला गीत कब आएगा।
1: लेकिन उससे पहले एक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लोकगीत इतने वर्षों तक कैसे बचे रहे?
0: क्योंकि इन्हें किताबों ने नहीं, लोगों ने संभाला है।
4: एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को सुनाया।
3: किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, फिर भी सबको याद रहा।
7: यही हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है।
4: बचपन में मेरी दादी माँ कहा करती थी कि जिस घर में गीत गूंजते हैं वहाँ उदासी ज्यादा देर नहीं ठहरती।
3: कितनी प्यारी बात है।
0: और आज पूरे रामपुरवा में वही गीत गूंज रहे हैं।
7: तो आइए सुनते हैं आज का चौथा लोकगीत।

0: कितनी सुंदर रचना है, शब्द भी इतने सरल और भाव से भरे हुए हैं।
1: यही तो लोक गीतों की खूबसूरती है, इन्हें समझने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती,
2: बस दिल होना चाहिए।
3: श्रोताओं, हमारा सफर अभी जारी है। अब हम गांव के तालाब की ओर चलेंगे। वहां शाम ढलने लगी, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हैं और पूरे वातावरण में एक अलग सी शांति उतर रही है।
1: और वहीं बैठकर हम करेंगे कुछ दिल की बातें,
0: साथ ही सुनेंगे आज का अंतिम और बहुत ही पुराना लोकगीत।
2: इसीलिए कहीं मत जाइए।
3: स्वागत है श्रोताओं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम के कार्यक्रम गांव की गूंज के अंतिम पड़ाव में। आपको पता है पूरा दिन रामपुरवा गांव में घूमते घूमते कब बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला।
1: बिल्कुल, सुबह जब आए थे तो सूरज उग रहा था और अब देखिए शाम धीरे धीरे उतर रही है।
0: वो देखो सामने का तालाब कितना शांत लग रहा है, पानी में डूबते सूरज की परछाई किसी चित्र जैसी दिखाई दे रही है।
2: देखो देखो पक्षी भी अपने घर की ओर लौट रहे हैं और पूरे दिन की मेहनत के बाद जैसे गांव भी अब आराम की तैयारी कर रहा है।
3: सच कहा किरण दी, और शायद यह बात सच कही भी जाती है कि गांव की शाम का अपना ही जादू होता है, ना शोर ना भाग दौड़, बस प्रकृति की मधुर संगीत।
1: जया जी, आज एक बात मैंने महसूस की।
3: क्या?
1: यहाँ किसी के चेहरे पर जल्दबाजी नहीं थी, सब आराम से बात कर रहे थे, कोई घड़ी देखकर नहीं भाग रहा था।
3: श्रोताओं, हमने आज सुबह से बहुत कुछ देखा, हरी भरी फसलें, पुराना कुआं, बरगद की छांव, मिट्टी की खुशबू, लोकगीत और सबसे बड़ी बात लोगों के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान।
1: मुझे तो दादी अम्मा की बात बार बार याद आ रही है, आवाज बूढ़ी हो गई है, गीत नहीं।
0: कितना बड़ा संदेश था उसमें, समय बदल सकता है लेकिन संस्कृति तब तक जीवित रहती है जब तक लोग उसे अपने दिल में संजो कर रखते हैं।
2: जया जी, अगर आपको एक दिन के लिए इस गांव में रहने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगी?
3: सबसे पहले मैं सुबह सूर्योदय देखूंगी, फिर किसी पेड़ के नीचे जाकर गर्मा गर्म चाय पीऊंगी और गांव की महिलाओं से पुराने खूब सारे लोकगीत भी सीखूंगी। अच्छा गीता दीदी, और आप?
0: मैं तालाब के किनारे बैठकर पक्षियों को देखूंगी।
2: और मैं पूरे गांव की तस्वीरें अपने मन में संभाल कर रखूंगी। कैमरे की तस्वीरें तो मिट जाती हैं, लेकिन मन की तस्वीरें हमेशा रहती हैं।
3: वाह क्या बात कही।
1: जया जी, एक बात पूछूं?
3: जरूर।
1: अगर कोई श्रोता हमसे पूछे कि गांव की सबसे बड़ी पहचान क्या है तो आप क्या कहेंगी?
3: मैं कहूंगी गांव की पहचान उसकी मिट्टी नहीं, उसके लोग हैं। खेत नहीं, उनका परिश्रम है। घर नहीं, उसमें बसने वाला अपनापन है।
0: और मैं कहूंगी गांव की पहचान उसके लोक गीतों से है। जहां गीत है वहां संवेदना।
2: मेरी नजर में गांव की पहचान है एक दूसरे का सम्मान।
1: और मेरी नजर में अच्छा खाना।
3: समता दीदी, कभी कभी आप खाने से आगे का भी सोच लिया करिए।
1: सोचती हूँ लेकिन खाली पेट नहीं।
0: तो जी हाँ श्रोताओं, अब समय है आज के अंतिम लोकगीत का। यह गीत वर्षों से गांव-गांव गाया जाता है और आज भी उतना ही लोकप्रिय है।
3: तो आइए सुनते हैं आज का पांचवा और अंतिम लोकगीत।
2: हमसे

0: सचमुच ऐसा लगा जैसे पूरा रमुआपुर हमारे साथ गुनगुना रहा हो।
1: आज का सफर हमें हमेशा याद रहेगा
2: और उम्मीद है आपको भी। यदि आपके गांव में भी कोई पुराना लोकगीत, लोक कथा या ऐसी परंपरा है जिसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए तो हमें जरूर लिखिए।
1: हो सकता है अगली बार हमारी टोली आपके गांव पहुंचे
0: और आपके साथ मिलकर आपकी मिट्टी की खुशबू पूरे देश तक पहुंचाएं।
2: विदा लेने से पहले बस एक छोटी सी बात, आधुनिक बनिए, नई तकनीक अपनाइए, आगे बढ़िए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने लोकगीत और अपने गांव को कभी मत भूलिए। यही हमारी पहचान है, यही हमारी जड़ें हैं,
3: क्योंकि जड़ों से जुड़ा पेड़ ही सबसे ऊंचा होता है
1: और अपनी संस्कृति से जुड़ा समाज ही सबसे समृद्धशाली होता है।
0: इसी संदेश के साथ हमें अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी सॉन्ग के साथ में गुड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम वेलकम और वार्म वेलकम आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अर्शिका। और भाई बहुत बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से। तो आज भी हम आ गए हैं और जैसे कि आप सभी को पता है लिसनर्स कि आज दिन जो है वो बहुत ही प्यारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन में ऐसा भी क्या खास है जो कि अंशिका मैम कह रही हैं कि आज का दिन इतना प्यारा है। भाई आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज है सैटरडे और जब बात आती है सैटरडे की तो हमारे मन में सिर्फ एक चीज़ आती है ना, और वो होता है मतलब फुल ऑन लगता है हमें कि मस्ती मस्ती और सिर्फ मस्ती, यही लगता है ना। होता है होता है होता है, ऐसा ही होता है क्योंकि कहते हैं ना कि जितना ज़रूरी होता है सीरियस होना, जितना ज़रूरी होता है कि हम हर चीज़ को अलग तरीके से लें समझें, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी मस्ती भी होती है। तो कुछ मस्ती से होगी शुरुआत और करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले पहले पहले कहना चाहूँगी अपने लिसनर्स से कि फटाफट से आएँ चैट बॉक्स में अपनी हाज़िरी लगा दें, हमें बता दें कि आप आ चुके हैं। तो आज कुछ शुरुआत करेंगे हम जो वो है कुछ भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप सभी को बताया था कि रोबोट ओलंपिक के बारे में, रोबोट ओलंपिक मैंने आपको बताया था ना कि बीजिंग में होने वाला है चीन में, तो उसकी जो शुरुआत है वो आज से हो गई है, यानी कि रोबोट ओलंपिक आज से बीजिंग यानी कि चीन में शुरू होने वाला है। सो आज से शुरू हो रहा है भाई, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप सभी ज़रूर जाएं, ज़रूर से ज़रूर देखें आप सब और इन्जॉय भी करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो उनसे हमारे अंदर अच्छी चीज़ें आती भी हैं। जैसे जब भी किसी की आप इंस्पिरेशनल स्टोरी देखते हैं ना तो मन में उस स्टोरी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो क्लिक होता ही है, हमें भी लगता है कि हाँ हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन फिर हमने अपने आप को इस तरह ओवरकम किया। और गेम्स, गेम्स का तो भाई क्या ही कहना, गेम्स तो ऐसी होती हैं कि कहते हैं ना उदास भी अगर आप हैं तो हंसा देती हैं। सो गेम्स तो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आइए अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की। और आज की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही अच्छे वाले एक टॉपिक से, जो कि आज हमारे पास टॉपिक ये है कि ज़्यादातर जो यूथ्स होते हैं ना उनके मन में एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल उनके मन में हमेशा घूमता रहता है, जो होता ये है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, और मोस्ट ऑफ द डैट कि करियर में क्या होने वाला है। यही सारे सवाल होते हैं ना, यही सारी चीज़ें होती हैं हमारे मन में और यही सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो आज कुछ उन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने करियर में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। आज हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक ही यही है कि अगर आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जब भी हम अपने करियर को प्लान करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि किस चीज़ पर ध्यान जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि एक अच्छा करियर मुझे मिल जाए, होता है ना, हर मन में यही सवाल होता है। तो आज कुछ इसी सवाल का हम जवाब लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि क्या चीज़ है करियर प्लानिंग। करने से पहले हमेशा आपको जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसी पर चलना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है आप उसी पर चलें। करियर से जुड़े फैसले लेने के लिए कई बार आपकी स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी इंटरेस्ट, आपका कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। मान लीजिए आपने सोच लिया है कि मुझे बीकॉम करना है या जो भी आपने सोच लिया हो कि मुझे ये करना है, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन जो कि आपने एक बार सोच लिया है कि नहीं मुझे यही करना है तो आप उसी तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप क्या करना चाहते हैं। और सही बात तो यह है कि सिचुएशंस से हमें जो भी मिल जाता है ना उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिचुएशन हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और
इसलिए एक समय में अगर जैसे एक टाइम पर आपको एक ही करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं नहीं मुझे पढ़ाई में जाना है, नहीं नहीं मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, नहीं नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो भी करना है, तो हमारे अंदर क्या होती है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप अपनी करियर प्लानिंग कर रहे हैं एज अ यूथ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी इंटरेस्ट को देखना है, अपने इंटरेस्ट एरिया को देखना है, साथ ही साथ में ये भी देखना है कि जो सिचुएशन है वो आपको कैसी अपॉर्चुनिटी दे रही है। हो सकता है आप जिस तरह का करियर सोच रहे हो वो आपके सिचुएशन से मेल ना खाता हो। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे नहीं मुझे ये करना है, लेकिन हम वो पढ़ाई करने के लिए हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े और उस वक्त आपकी सिचुएशन आपसे ये ना कह रही हो कि आप बाहर जा सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को देखते हुए, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी सिचुएशंस को देखते हुए, और हाँ सबसे मैंने जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही करियर पे, अगर आपको पढ़ाई करनी है मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड करियर बनाना है तो आप पढ़ाई से रिलेटेड बनाइए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनाइए, अगर आपको कुछ म्यूज़िक डांस या ऐसे किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाइए, पर एक टाइम पर एक ही चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करिए। कई बार क्या होता है ना कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं और फिर ये होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी नहीं लग पाता। दूसरी बात ये है कि आप जिस भी चीज़ में मतलब जिस भी स्ट्रीम में और जहाँ भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में बनाना चाहते हैं, या म्यूज़िक है, डांस है, जो भी है, उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें और ये देखें कि आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है और आपके पास जो स्किल्स हैं वो उससे कितनी मेल खाती हैं। अगर हम जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ जाए तो आपको ये समझने का मौका मिलना चाहिए कि क्या आपके अंदर उतना कैलिबर है कि आप उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं या फिर आपको और ज़्यादा अभी तैयारी की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है अरे नहीं नहीं मुझे तो सब आता है ना, मैं तो क्वालिफाइड हूँ, और फिर हम इंटरव्यू देने चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें हमसे बातें की जाती हैं, तो कई बार कई सारे जो फ्रेशर्स होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुझे तो सब आता है। इसलिए एक बार अपने कैलिबर को चेक ज़रूर करना चाहिए कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं क्या वो मैं कर पाऊँगी जब मैं जाऊँगी वहाँ, अगर मैं इंटरव्यू में बैठूँगी तो क्या मैं बता पाऊँगी सब कुछ। एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना खुद को परखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमेशा अपने आप को परखना चाहिए। समझने का बेहतर मौका खुद को खुद ही को देना चाहिए, और जो आपका फीडबैक आए, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, कोई इंटरव्यू आपने दिया और वहाँ पे आपके लिए फीडबैक जैसा भी आया, हो सकता है बहुत अच्छा नहीं आया, हो सकता है बहुत अच्छा फीडबैक आया, अगर अच्छा फीडबैक नहीं आया तो वो फीडबैक आपको आगे की आपके जो भी, वो फीडबैक बुरा नहीं होता, वो फीडबैक आपको आगे के लिए अनुभव दे जाता है, सिखा जाता है कि आगे हमें ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है और हमें खुद पे मेहनत करनी है। या फिर अगर उस फीडबैक से आपको ये लगता है कि आप ये करियर नहीं चूज़ कर पाओगे, हमें ये लगता है कि हम ये जॉब नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा करियर, दूसरा जॉब यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हमेशा सोच समझ कर। अपने चीज़ों को हमेशा डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आइए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो ज्ञान असली लाइफ, मैं हूँ आपकी दो होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो, जिसका की नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई, अभी तक तो हमने की बहुत सारी काम की बात तो चलिए करते हैं अब कुछ मस्ती की शुरुआत। भाई, मस्ती की शुरुआत इसलिए क्योंकि ये देखिए, आज तो है सैटरडे, और सैटरडे को थोड़ी सी मस्ती करना तो बनता ही है ना। तो आज हम भी करेंगे मस्ती, लेकिन मस्ती करने से पहले आज मेरे पास कुछ आप सभी के लिए अच्छी सी न्यूज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ है, कुछ खास न्यूज़ है, वो मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले पहले पहले भाई, मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, तो अगर आप सभी कहें तो मैं उसकी एक लाइन ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। अब आज याद आ ही गया है तो सुना देती हूँ, सुना दूँ ना? ओके, तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी ना ना ना, मुझसे शादी करोगी। भाई ये मुझे लगता है फिल्म आप सभी को याद होगी, मुझसे शादी करोगी, जो कि फिल्म थी प्रियंका चोपड़ा, और इसमें उनके साथ में थे सलमान खान और आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, अक्षय कुमार। बहुत ही अच्छी मूवी थी और सभी ने आई थिंक बहुत इन्जॉय किया, और उसी के बाद से कोई भी शादी हो ये सॉन्ग ज़रूर बजता है, मुझसे शादी करोगी। तो आज आप सोच रहे होंगे कि भाई ये वहाँ से, इसकी बात कहाँ से निकल आई? तो आज इसकी बात इसलिए निकल आई क्योंकि मुझसे शादी करोगी मूवी के पूरे हो गए हैं 20 साल। यस, इस मूवी को रिलीज़ हुए हुए आज पूरे 20 साल पूरे हो गए हैं, और साथ ही साथ में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करो की 20 साल पूरे होने के मौके पर सलमान और अक्षय कुमार के साथ अपनी एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की, और साथ ही साथ में उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दिनों की यादों को भी बताया, और इसे बताते बताते वो भावुक भी बहुत ज़्यादा हुई, यानी कि इमोशनल भी हो गई, और उन्होंने एक पॉजिटिव नोट भी लिखा जिसे उनके फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। भाई मूवी ही कुछ ऐसी थी कि जो भी देखता है ना, मतलब आज भी अगर आप देखते हैं, सोचिए 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है ना, पर फिर भी अगर आप देखते हैं तो लगता है कि अभी इतनी पुरानी तो नहीं हुई थी। तो भाई हमने कर ली काम की बात, और अब करेंगे कुछ बॉलीवुड के गलियों की सैर, क्योंकि आज है हमारा सैटरडे, और सैटरडे और मस्ती की बात जब भी आती है ना, तो हम हमारे बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। भाई हमारे बॉलीवुड में ही तो हैं बहुत सारे हीरो, बहुत सारी हमारी एक्टर एक्ट्रेस जो कि हमें एंटरटेन करती हैं, और जिनके की थ्रू हम बहुत सारी मस्ती कर पाते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ आज बॉलीवुड से, गलियों से कुछ महकती हुई जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें बताते हैं आपको। तो सबसे पहली जो न्यूज़ कह लें या कुछ नया कह लें, वो हमारे पास है। कहते हैं ना कि जब भी नई शुरुआत होती है तो कुछ खास होती है। जब कहा जाता है कि बेटा बड़ा होने लगता है, तो सभी कहते हैं कि अब बेटे के जो पांव हैं वो पिता के जूतों में जब अच्छे से बैठने लगते हैं तो बेटा बड़ा होने लगता है, और जब बेटा बड़ा होता है तो पिता के सपने भी कुछ बड़े होने लगते हैं। कुछ ऐसे ही बड़े हो गए हमारे दिग्गज अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा। यस, गोविंदा जी, जिनकी कि भाई हीरो हीरो हीरो नंबर वन हमारे गोविंदा जी, जिनके बेटे यशवर्धन आहूजा जो कि हीरो की हीरोइन, आज की ये फिल्म है हीरो की हीरोइन से बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये फिल्म जनवरी 2027 में सिनेमा घरों में आने वाली है। यशवर्धन ने लंदन से मेट फिल्म स्कूल से पढ़ाई की है और साजिद नाडियालवाला के साथ फिल्में भी असिस्ट की हैं और अपने काफ़ी अब इतने सारी प्रैक्टिस के बाद में फाइनली वो डेब्यू करने जा रहे हैं और उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली है हीरो की हीरोइन। तो भाई देखते हैं कि ये हीरो की हीरोइन कैसी होगी। और जो कि हम बात कर रहे हैं हमारे दिग्गज अभिनेता गोविंदा जी के बेटे यशवर्धन जी की, तो भाई कहते हैं ना कि पिता के जो गुण होते हैं वो बेटे में खूब आ ही जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि हमारे गोविंदा जी के जो प्यारे से बेटे हैं यानी कि यशवर्धन जी, वो कैसे डेब्यू करते हैं और कैसी होती है उनकी फिल्म। आई होप आई नो कि बहुत अच्छी होगी, बट फिल्म भी देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये पहली फिल्म कैसी होती है। तो ये थी हमारी पहली बॉलीवुड की गलियों से निकली हुई खबर। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जो है भाई वो बहुत ही अच्छी सी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जोड़ियों की जो केमिस्ट्री होती है, मतलब हमेशा हम कहते हैं ना कि अरे यार जोड़ी पुरानी हो गई है तो केमिस्ट्री भी पुरानी हो गई, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता कि अगर जोड़ी पुरानी है तो केमिस्ट्री भी पुरानी हो। बट हाँ, कहते हैं ना कि बॉलीवुड में जोड़ियों का जो दौर है वो कुछ अलग सा ही दौर है। बहुत टाइम पहले जब अगर 90s की बात कर लें तो 90s में शाहरुख जी और काजोल की जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। फिर उसके बाद में अक्षय कुमार जी के साथ प्रियंका जी की जोड़ी पसंद की जाती थी। ऐसे कई सारी जोड़ियां हैं जो बहुत पसंद की जाती थी और जो कि बहुत ज़्यादा हिट भी हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ नई जोड़ियों की और उनकी फ्रेश केमिस्ट्री की। साल 2026 में बॉलीवुड में कई नए चेहरों को मौके दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वेदांग रैना और रिंकी खतरा की बेटी जल्द ही अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म जान है तू मेरी में एक साथ नज़र आएंगी। ये कई सारी फ्रेश ऑन जोड़ियों को लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि भाई बहुत ही नई और फ्रेश जोड़ी और फ्रेश केमिस्ट्री के साथ इसमें दिखने वाली है। तो भाई मज़ा ही आ जाने वाला है, मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छी ये जो भी जोड़ियाँ होंगी वो डेब्यू करेंगी। और कहते हैं ना कि जब कोई नया आता है तो अपने साथ बहुत ही सारे खुशियों के रंग भी लाता है। तो अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो हमने बॉलीवुड की गलियों की थोड़ी सी सैर की है, अभी काफ़ी कुछ खबरें बाकी हैं। तो आऊँगी इस ब्रेक के उस पार, आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने कि बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है बहुत ही बड़ा क्या, अरे भाई बहुत ही अच्छी उनकी जो है बहुत ही अच्छी कमाई हुई है और उन्होंने बॉलीवुड के गलियों में और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल धूम मचा दी है। और कुछ अभी हमने कॉमेडी का तड़का भी नहीं लगाया, तो वापस आकर कॉमेडी का तड़का भी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: गया।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर
6: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही प्यारा वाला शो कि जिसका की नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और भाई आज है सैटरडे, यानी कि मस्ती वाला डे। तो आज हम भी कुछ मस्ती कर रहे हैं, और अभी अभी हमने बहुत ही अच्छी कुछ न्यूज़ भी जानी। अब चलते हैं, जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी वो फिल्में हैं जिन्होंने कि अपने झंडे पूरी तरह गाड़ दिए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनका बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस पे हुआ है बिजनेस। तो आइए जानते हैं कि इस साल अगर हम बात करें तो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2026 की ऐसी टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट है जिसमें कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल ही धमाल मचा दिया। अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो फिल्म आती है वो है रणवीर सिंह स्टार्टर धुरंधर 2। धुरंधर 2 ने भी बहुत ही अच्छी कमाई की, और उसके बाद आती है बॉर्डर 2 जिसने कि बता दें कि 362 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की, और भारतीय सिनेमा में ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी नई नई ऊंचाइयों को पर ये ले जा रही है। और बहुत ही प्यारी फिल्म भी है, आप सभी ने देखी होगी आई होप, और इसने भी सारे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और अब बातें हैं कि भाई ये तो थी एक्शन, चाहे आप धुरंधर की बात करें चाहे बॉर्डर की बात करें, दोनों ही थी एक्शन फिल्में। थोड़ा एक्शन थोड़ा ड्रामा सा मिक्स था इसमें। लेकिन अब बात करते हैं कॉमेडी फिल्मों की। भाई जहां एक्शन का जलवा रहा शानदार, वहीं पे कॉमेडियों का फिल्मों का जलवा भी कुछ कम नहीं रहा। मतलब उन्होंने भी कुछ कम बॉक्स ऑफिस पे धमाल नहीं मचाई, बहुत ही ज़बरदस्त धमाल मचाई। तो सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड फिल्मों की तो उसमें आती है अक्षय कुमार की भूत बंगला। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने 199 यानी कि 199 करोड़ का बिजनेस किया, और उसी के साथ आती है अजय देवगन की फिल्म धमाल जिसने कि 177 करोड़ का बिजनेस किया, और साथ ही साथ में सिनेमा घरों में दर्शकों को इतना हंसाया कि हम कहें ही क्या। कि भाई दर्शकों को हंसाने के साथ साथ बम्पर कमाई करके इसने थिएटर के मालिकों के चेहरे पर भी कम मुस्कान नहीं लाई। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में कि जिन्होंने तो धुरंधर नहीं बिल्कुल धमाल मचा दिया। अब आते हैं हम कुछ और न्यूज़ आपको बताते हैं जो कि है फिल्मों से ही रिलेटेड। कि अगर बात करें तो इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड स्किल फिल्म जो कि है आवारापन 2, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई की। मतलब अगर बात करें तो 170 करोड़ के आंकड़े के करीब ये फिल्म पहुंच गई थी जिसका कि नाम है आवारापन 2। और इसी के साथ में भाई फिल्म आती है नेक्स्ट वाली हमारी जो है वो है बंटवारा 1947 का कलेक्शन भी, जो कि सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म है जो कि ड्रामा फिल्म है। रफ्तार दूसरे हफ्ते कुछ धीमी पड़ गई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन अब लाखों में सिमट रहा है। तो काफ़ी अच्छी इस फिल्म ने भी काफ़ी अच्छी कहीं ना कहीं कमाई की। तो ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, मतलब बहुत ही अच्छा धमाल। सो ये थी कुछ फिल्में। अब आते हैं कुछ और न्यूज़ की तरफ। तो बता दें आपको कि और क्या कुछ चल रहा है बॉलीवुड की गलियों में। सो बॉलीवुड की गलियों में चल ये रहा है कि भाई होता है ना कि जब भी कोई सेलिब्रिटी कुछ अच्छा काम करते हैं या कोई भी कोई अच्छा काम करता है, मतलब सिर्फ सेलिब्रिटी ही क्यों, जब भी कोई अच्छा काम करता है और उस अच्छे काम के लिए अगर आपको कोई अच्छी सी एक चीज़ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम बता दें कि बहुत ही अच्छे हमारे अभिनेता हैं जो कि मनोज बाजपेयी को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने ये पुरस्कार अपने उन सभी फैंस को समर्पित किया जिन्होंने कि उनके शुरुआती दिनों में उनके संघर्षों में उनका साथ दिया है। उनका मानना ये था कि उन्हें आज जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि उनके फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। कहते हैं ना कहीं हमारे जो फैंस होते हैं, जो हमें मानने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं ज़मीन से उठाकर आसमां तक पहुंचा देते हैं। सो उन्हें आज ये अवार्ड मिला है, वो काफ़ी खुश हैं और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं अपने फैंस को ही देते हैं। अब आते हैं कि बॉलीवुड के साथ साथ भारतीय यानी कि अगर हम बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की बात करें या मराठी की बात करें, साउथ सिनेमा और मराठी तो वो भी कुछ कम नहीं है। उन्हें भी इसी वीक में इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी सराहना मिली है। 3 भारतीय इंडिपेंडेंस फिल्मों को ऑस्कर और 2027 की शुरुआती स्क्रीनिंग लिस्ट में जगह भी मिली है, जो भारतीय सिनेमा की बदलती हुई ताकत को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ये सब इसीलिए है क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी तरह के कंटेंट्स लाए जाते हैं, उन्हें अच्छे से डिलीवर किया जाता है। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो एक पॉजिटिविटी होती है वो तब होती है जब आप किसी की रियल लाइफ स्टोरी को दिखाते हैं, उनसे ही लोग सीखते हैं नई तरीके से और फिर वो सब कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी फैलाने का काम भी करता है भारतीय सिनेमा की, हम चाहे बात करें चाहे साउथ की और चाहे मराठी की, पर कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी भी लेकर के आते हैं। और जब बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तो हम एक नाम कैसे भूल सकते हैं भाई, जब भी बात आती है देश के लिए कुछ करने की, कुछ अच्छा पॉजिटिव करने की, तो देश के चहेते अभिनेता यानी कि सोनू सूद, उनका नाम कैसे रह सकता है। सोनू सूद ने गाँव के बच्चों के लिए एक नई फ्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम लॉन्च की है। इस पहल के तहत हज़ारों ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त में टैबलेट और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके। इसे कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अरे सेलिब्रिटीज़ क्या है, वो तो स्पॉटलाइट में रहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सीने में दिल तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी के भी सीने में दिल तो कहीं ना कहीं इंसान का होता है ना, एक इंसानियत होती है उसके दिल में भी, और वो भी औरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। और ये बॉलीवुड की कहीं ना कहीं जो एक चमक हम कहते हैं वो उनके उस इंसान को और ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं वो इस्टेब्लिश होते हैं और अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी आपने सुना सोनू सूद के बारे में, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने अपनी ग्रोथिंग ब्रांड के ज़रिए कमाई करने का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जो भी वो उससे अर्निंग करती हैं वो समुद्री तटों की सफाई और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के लिए उन्होंने दान करने की सोची है। उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्यार भी मिल रहा है फैंस का। सो इसी को कहते हैं ना कि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं स्पेशली अपने समाज और अपने देश के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी तो लाता ही है। हमारा मतलब खुद का तो अच्छा होता ही होता है, बट उसके साथ जब हम एक अच्छी फीलिंग के साथ चलते हैं कि हमें कुछ समाज के लिए करना है तो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें पसंद भी करते हैं। तो आइए लिसनर्स चलते हैं इन प्यारी प्यारी न्यूज़ के साथ एक बहुत ही प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक के पे। आती हूँ इस ब्रेक के उस पार कुछ नया और बहुत ही अच्छा सा लेकर के। तब तक के लिए इस प्यारे से सॉन्ग को सुने, इंजॉय करें। बस यू गई और यू आई। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

तेरी गलियां मुझे तड़पावें, गलियां तेरी गलियां, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि बहुत ही प्यारा सा था। आइए अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि हमारे पास क्या है। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक लिसनर्स, तो चलिए चलते हैं सीधे चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि हमारे साथ है नव्या जी जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून नव्या जी, कैसी हैं आप? तो आइए लिसनर्स आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने की मस्ती, बताया आपको बहुत सारी बॉलीवुड न्यूज़, अब बारी आती है कुछ टिप्स की। लेकिन आज हमारी टिप्स होने किस बात पर वाली है, मतलब ऐसा क्या टॉपिक है जिस पे हम आपको टिप्स देने वाले हैं? तो आज का हमारा टिप्स जो है वो इस टॉपिक पे है कि किस तरीके से आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आखिर कोई चैलेंज होता है ना सबसे बड़ा, तो वो यही होता है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को रिलैक्स रखें। क्योंकि सब कुछ तो कर सकते हैं बट अपने माइंड को रिलैक्स नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक हम कह लें चुनौती की तरह होती है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे रखें। तो आज कुछ टिप्स हैं हमारे पास आपकी माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं जिस

देती है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की जो मात्रा होती है उसे कम कर देती है। और साथ ही साथ में आते हैं कुछ मेंटल ऐसी चीज़ों को बताते हैं, मतलब ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस कह लीजिए, टिप्स कह लीजिए, जो आपके माइंड को वाकई में रिलैक्स कर देती हैं। तो सबसे पहले कि सोने से पहले दिमाग में चल रही जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, उन स्ट्रेस को एक डायरी में लिखें। इससे आपका दिमाग खाली और शांत हो जाता है और फिर हमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़ आती है कि बहुत ही धीमी, मतलब बहुत ही सूदिंग वाली म्यूज़िक सुननी चाहिए, या फिर अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और आप उसे रिलैक्स करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी कुछ ऐसी आवाज़ें सुननी चाहिए, जैसे बारिश हो गया, लहरों की आवाज़ें हो गई, समुद्र की आवाज़ें हो गई। ये सारी जो होती है ना, ये नेचर से जुड़ी हुई आवाज़ें होती हैं और इन्हें सुनने से ब्रेन जो होता है, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरा आता है कि रोज़ाना केवल 15 मिनट ही वॉक या स्ट्रेचिंग करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि इससे हमारी बॉडी का जो हैप्पी हार्मोन होता है, यानी एंडोमॉर्फिन, वो रिलीज़ होता है, जो मूड को तुरंत सुधार देता है। वही इस बात से तो मैं भी पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूँ लिसनर्स, कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग करते हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चाहे आप वॉक मॉर्निंग में करिए, चाहे आप वॉक शाम में करिए, रात में करिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नहीं, कि रात को खाने के बाद भी उनकी वॉक करने की हैबिट होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो इन तीनों में से किसी भी टाइम पे आप उस वॉक को ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और हमारा दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। अब आते हैं एक पॉइंट पर कि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि पानी की कमी से चिड़चिड़ापन और सिरदर्द होता है, दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर किसी तरह से आप 3 से 4 लीटर मान लीजिए नहीं भी पी सकते हैं, तो कम से कम 3 लीटर या 2 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए। सो पानी ज़रूर पीते रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा ब्रीथिंग ब्रीथ आउट वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है। थर्ड पॉइंट है, कभी भी बहुत, मतलब बहुत तो कोई भी नहीं खाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि 5 से 6 पराठे, वैसे तो आपकी जितनी भी नीड हो आप उतना खाएं, ऐसा कहने का सेंस नहीं है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं। भले आप दिन में 3 बार 4 बार खाइए, जितनी भी बार खाइए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि अगर हम तली हुई या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेते हैं ना, या बहुत गर्म खाना खा लेते हैं, तो उससे भी हमारे माइंड पर असर पड़ता है और बॉडी जो होती है ना वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में कई बार खाइए, बट हाँ थोड़ा थोड़ा। और इसी के साथ एक हमारे पास आपके लिए न्यूज़ है कि भाई आपको वो टाइम तो याद ही होगा लिसनर्स, कि जब हम नानी की कहानियाँ सुनकर सोते हैं, या फिर दादी से ज़िद करते हैं कि हमें बहुत सारी दादी रात हो गई ना, रातों को कहानियाँ सुनाओ। कभी हम ज़िद करते थे नहीं नहीं दादी भूत वाली कहानी सुनाना, कभी हम ज़िद करते थे कि नहीं नहीं परियों वाली कहानी सुनाना। और कहानी सुनकर जो हमें मीठी सी नींद आती थी और माइंड भी रिलैक्स हो जाता था, भाई उसका क्या ही कहना, फिर चाहे वो कहानी डरावनी ही क्यों ना हो। तो अगर आप भी ऐसी कहानियों को सुनना चाहते हैं और अपनी माइंड को करना चाहते हैं रिलैक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना है रेडियो ज्ञानसली 89.6 FM पे रात की बात। रात की बात जिसमें कि बहुत सारी प्यारी प्यारी स्टोरीज होती हैं, और वो होती हैं किन के साथ, वो है हमारी आरजे गुमनाम, उनके साथ होती है, और वो आपको सुनाएंगी ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियाँ अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी आवाज़ में, कि आप सुनेंगे ना तो आपको यूँ नींद आ जाएगी, और चाहे आपका माइंड कितना भी स्ट्रेस्ड आउट क्यों ना हो, बस यूँ तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। तो इसलिए रेडियो ज्ञानसली पर रात को सुनना ना भूलें, रात की बात में बहुत सारी कहानियाँ सुनें, इंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, क्योंकि खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वैसे तो आजकल खुश रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, बट फिर भी
हमें खुश रहने की और बेटर करने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। तो चलिए लिसनर्स, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
3: बिल्कुल, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप सवर जाता है।
2: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
3: अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले ही शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
3: अच्छा, तो क्या जन्म के बाद?
2: नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले।
3: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, आखिर कब से?
2: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन का मजबूत आधार मिलता है, यानी एक मजबूत शुरुआत होती है।
3: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, जब हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की जन्म की ओर ले जाता है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
3: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर जोर दिया जा रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा, हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
3: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
2: बिल्कुल, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: धन्यवाद आरजी जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।
2: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच में माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण होता है?
4: बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना ही नहीं रहता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसके शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी बेहतर होगी।
5: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
4: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
3: अच्छा, यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
4: बिल्कुल सही कहा।
2: सेहतिया जी, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक शब्द और सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी। आखिर ये समस्या कितनी गंभीर है?
4: यह बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उन्हें खून की कमी है। वो कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है।
3: ओ, इसलिए हमेशा उन्हें थकान रहती है।
4: बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के समान लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम भी और बढ़ जाता है।
2: और किस तरह का जोखिम?
4: समय से पहले परसों हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और परसों के समय अगर ज़्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
3: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोरी महसूस करना होता है।
5: यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
5: बिल्कुल, इसलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
3: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले से भी जरूरी है?
4: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है और उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है।
5: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
4: आपने बिल्कुल सही कहा।
2: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध होता है?
4: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHEA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं।
3: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
5: पहले 1000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक का होने का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेजी से विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
4: टीकन जी, अब श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
5: सबसे जरूरी चीज है बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा का कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाता भी है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई भी दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो?
4: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा जहां परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चों की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं।
3: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है।
5: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
2: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो।
4: अक्सर हम बच्चों के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
3: और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे हैं।
5: बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि हम ये सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
2: और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती हैं।
3: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
2: श्रोताओं, आज की इस चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण चीजें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों को अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए जरूरी हैं।
3: तो श्रोताओं, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
5: और मैं सभी बहनों और परिवारों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत को कभी भी नजरअंदाज न करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
4: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नज़दीकी आशा कार्यकर्ता, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
3: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
4: धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
5: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है और जाने से पहले लेंगे हम शपथ।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
6: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
6: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
6: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
6: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे
6: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
1: तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और टाइम भी बहुत ही बिंदास हो रहा है क्योंकि 143 क्योंकि 143 का मतलब होता है जस्ट लाइक आई लव यू। तो आई लव यू बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हो जाता है कि हम प्यार करते हैं अपने काम से, अपने जुनून से और अपनी बुलंदियों से और अपने आने वाले भविष्य से। भविष्य में कोई और भी हो सकता है, ऐसा मतलब नहीं,
1: भविष्य में किसी से भी प्यार हो सकता है।
0: मतलब मैंने ये नहीं कहा है कि मैं कमिटेड हूँ, मैंने कभी भी वो नहीं कहा है। यस आई एम टोटली कमिटेड और उस इंसान से प्यार है जो सच्चाई से प्यार करते हैं, जिन्हें सच में जीना आता है और जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे इंसानों से मुझे एग्जैक्टली बहुत लव है। और कोई पीठ पीछे मेरे लिए कोई कोई बात नहीं करता है, मुझे ऐसे इंसानों से भी प्यार है। लेकिन जो पीठ पीछे ऐसे लोग होते हैं ना, फिर लगता है कि यार इतना कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरीके से करे तो फिर हर्ट होते हैं, जैसा कि कल में हर्ट हुई थी। अब इस बारे में अंशिका से पूछते हैं कि क्या कहना चाह रही है। फिलहाल आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। और मौसम इतना गजब का है कि मैं क्या बताऊँ, इस मौसम में तो केवल घूमने का मन करता है क्योंकि कल से बारिश हो रही है फिर से। और ईश्वर बहुत मेहरबान है एग्जैक्टली हम सभी जीवों पे कि थोड़ी सी गर्मी कर देते हैं लेकिन फिर अपने बच्चों पर दया करके फिर से मौसम को बहुत ही खुशनुमा कर देते हैं। तो चलिए और आज के इस प्यारे से मौसम में हम एक बार फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में विश कर देते हैं
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और क्या आपको पता है मैम आज बारिश क्यों हो रही है?
0: नहीं।
1: क्योंकि आज है सैटरडे।
0: हाँ।
1: और सैटरडे को हमारा दिन होता है कौन सा?
0: सैटरडे होता है हमारा प्यार का दिन। हाँ। मस्ती का दिन और धमाल का दिन,
1: इसीलिए आज बारिश।
0: तो सैटरडे वीकेंड जो होता है ना, वीकेंड का वार एक्चुअली बहुत ही अच्छा होता है। तो मुझे कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती है कि आज के दिन जिनको भी घूमने फिरने जाना होता है ना, वो आराम से निकल जाते हैं और फिर कल का दिन रात का आज नाइट को स्पेंड करके शाम को स्पेंड करके कल फिर अपने घर की ओर लौटते हैं और मंडे फिर से तरोताजा होकर के अपने काम पे आते हैं।
1: बिल्कुल। वैसे जो ये मौसम है ना, इसमें एक ही मन करता है कि या तो आपके पास में फोर व्हीलर हो या फिर बाइक हो। वैसे
0: स्कूटी भी चल सकती है।
1: हाँ, स्कूटी भी चल सकती है लेकिन वो थोड़ी स्लिपी होती है, मतलब रोड पे, तो वो आसानी से स्लिप हो जाती है।
0: तो फिर बाइक बोल दे फिर।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: वो सेफ रहती, सेफ जोन
0: जी।
1: वैसे स्कूटी भी चल सकती है तो अच्छी सी बाइक हो। वैसे मुझे ज्यादातर बाइक अच्छी लगती है क्योंकि उसमें फायदा होता है।
0: क्या
1: उसमें फायदा? ये होता है कि आप बारिश में भीग भी सकते हैं। और
0: तो स्कूटी पे भीग नहीं सकते हैं क्या?
1: स्कूटी पे भी भीग।
0: स्कूटी पे छतरी होती है क्या?
1: नहीं, लेकिन फोर व्हीलर तो वो होती है ना मैम, उसमें तो नहीं।
0: पर मेरा तो मन होता है फोर व्हीलर, मतलब बेस्ट ऑन बेस्ट होता है फोर व्हीलर। मतलब मेरा एक एम है कि मैं खुद की अपनी कभी गाड़ी लूं और उसमें आराम से घूमूं।
1: उसमें घूमिएगा भी और घुमाइएगा भी
0: और मैं सीख लूं अपने आप चलाना।
1: वाओ,
0: कितना अच्छा है ना कि मैं इधर चला रही हूं एंड समवन स्पेशल मेरी बगल की सीट पे बैठे हूं। मजा आ जाए ना।
1: और भी कुछ,
0: कितने अच्छे ख्वाब है ना।
1: और बढ़िया से एक सॉन्ग बज रहा हो, कोई एक अच्छा।
0: चलो हम लोग वापस आते हैं।
1: कौन सा?
0: ऐसे सपने की।
1: हाँ,
0: सपनों ऐसी ऐसी सपनों की दुनिया से निकल के हम वापस आते हैं। तुम्हारे गाने हम बाद में सुनेंगे लेकिन आइए अपने काम पे आते हैं। और काम पे यानी कि आपका शो शुरू हो चुका है और आज का शो जो कि आप सभी को पता है कि लव सीरीज पे होता है। तो लव सीरीज में हम लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारी सी पोयम, यानी कि एक प्यारी सी कविता जो कि होने वाली है प्यार भरी। तो पढ़ूं मैं?
1: जी
0: जी बताएं।
1: तो शुरू होने वाला है प्यार का।
0: शुरू हो रही है प्रेम का।
1: वाह। अब इस पर मुझे मन कर रहा है मैं कुछ ना बोलूं और मैम पूरा सुनाएं।
0: जी,
1: बट ऐसा तो नहीं होगा।
0: लगा दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं अभी।
1: श्योर श्योर श्योर। तो भाई शुरू हो रही है प्रेम कहानी, आपने अभी सुन लिया आज समता की जुबानी। तो आइए अब चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे कहानी, छेड़ते हैं फिर कोई नया तराना क्योंकि मौसम का है बड़ा ही प्यारा सा अफसाना। आ रही है उनकी याद, आ रही है उनकी याद, काश वो यहाँ होते, पर ना है तो ना सही, पर ना है तो ना सही। चलो कर लेते हैं उनकी ही बात, करते हैं प्यार की शुरुआत इस प्यारी सी नई कविता के साथ जो आपको सुनाएंगी यार की यार जिस समता और करेंगी आप सभी से बात।
0: जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी थी। कल भी अंशिका ने रास्ता दिया था क्योंकि कल मैं गुस्से में थी मैंने इसकी बातें सुनी नहीं थी। खैर कोई नहीं, फिर से आते हैं, लौटते हैं अपने काम पर और अब हम सुनाने जा रहे हैं आज की लव पोयम। तुम्हारी आंखों में एक गहरा समंदर है जहाँ मेरा दिल हर पल सुकून पाता है।
1: वाह।
0: तुमसे मिलकर ही मुकम्मल हुई है जिंदगी, तुमसे मिलकर ही मुकम्मल हुई है जिंदगी, तुम्हारे बिना तो हर लम्हा अधूरा नजर आता है। जुबान से भी जो कभी न कह पाते हम, जुबान से जो कभी कह न पाते हम, वो बातें तुम्हारी खामोशी पढ़ लेती है। ये कैसा पाक सा रिश्ता है हमारा, जो बिना कुछ कहे रूह से जुड़ जाती है। धड़कन बनकर तुम धड़कते हो इस सीने में, जैसे सांसों का जिंदगी से कोई गहरा नाता हो। तुम्हारी एक मुस्कान बदल देती है मेरा जहां, जैसे हर सूखा बाग अचानक से खिल जाता हो। मोहब्बत का ये सफर यूं ही चलता रहे, हाथों में तेरा हाथ और साथ तुम्हारा हो। दुनिया की इस मतलबी भीड़ में जाना, दुनिया की इस मतलबी भीड़ में जाना, बस तू ही मेरा आखिरी और इकलौता सहारा हो।
1: वाह, बहुत ही प्यारी, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, और शब्द भी बहुत ही बेहतरीन थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे हम कहते तो हैं और बहुत आसानी से कह भी देते हैं मैम कि अरे मेरी लाइफ में वो है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना कि हस्बैंड हो हमारा या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर हो, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनरशिप शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, वो वाकई आपका लाइफ पार्टनर होता है। और बिल्कुल हमें उम्मीद होती है कि कोई समझे या ना समझे, लेकिन वो हमारी दिल की धड़कन समझेंगे। कोई करे या ना करे, वो प्यार करेंगे। कहते हैं ना कि मजबूत तो हम बहुत बनते हैं जवानी के सामने, मजबूत तो बहुत बनते हैं जवानों या जवानी के सामने, पर अब इंतज़ार है उसका जिसके सामने हम सब कुछ कह सकें। मतलब बहुत कम इंसान होते हैं जिनके सामने हम रो सकते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी फीलिंग समझेंगे, तो एक उसका इंतज़ार लाइफ में सभी को होता है।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल,
1: और मिलना भी ज़रूर चाहिए।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होता है।
1: नहीं मैम, ऐसा होता है,
0: होता है।
1: मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी देखा। पता है एक बात होती है, क्या मैं बताऊं आपको? जैसे जब दो मेल आपस में बात करते हैं और कोई मेल किसी मेल को कुछ समझाता है तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसी की जगह अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है तो वो अगर समझाती है तो मेल को जल्दी समझ में आ जाता है। ये होता है, जैसे कहते हैं ना शादी के बाद, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ जाइए तो कहते हैं ना शादी के बाद जब होता है कि अरे बीवी समझा रही है ना, अब समझ जाओ, अब नहीं समझोगे तो फिर घर में वापस नहीं आ पाओगे,
0: घर में वापस शाम को नहीं आ पाओगे और फिर खाना वाना नहीं मिलेगा।
1: हाँ, तो ऐसा ही कुछ होता है कि मतलब कहते हैं ये कि जहान बिगड़ जाए तो आप सुधार सकते हो, लेकिन अगर आपकी बीवी बिगड़ी तो फिर आप कुछ नहीं सुधार सकते,
0: कुछ नहीं,
1: फिर घर में खाना बंद, पानी बंद, कपड़े भी प्रेस नहीं मिलेंगे, मतलब ऑल टोटल हमारा जो काम होता है वो
0: बंद हो जाता है,
1: बंद हो जाता है।
0: तो चले अब आपको सुना दे गाना, क्योंकि मेरे पास नहीं, मेरे पास तो है ही, पर ये बहुत ही प्यारी सी एक गाना भी चल रहा था जो कि मेरे शब्दों

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
3: आरजे अंशिका।
2: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के ओटीटी सीरियल्स के बारे में, देन हम बताएंगे आपको राशिफल, आज का लव राशिफल और आपका फेवरेट सेक्शन यानी कि गेम।
3: बिल्कुल, ओटीटी सीरीज के बारे में हम बताएंगे, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले भाई, आज जो कहते हैं ना कि हर सैटरडे हम बॉलीवुड की गलियों में घूमने से पहले टीवी की दुनिया में जरूर जाते हैं, तो आज भी पहले आपको टीवी की दुनिया में ले चलते हैं, क्योंकि हमारी जो टीवी है ना वो हमारे बहुत करीब होती है। बस एक वर्ड का अंतर होता है, अगर टीवी की जगह आप कुछ और लगा दें तो वो सेट हो जाएगा।
2: क्या?
3: जैसे टीवी
2: बीवी।
3: बिल्कुल
2: अच्छा।
3: सही। और उस पर एक जोक भी था, मतलब वो जोक ये था कि टीवी तो आप बंद कर सकते हो या अगर आपको पसंद ना आए तो आप चैनल चेंज कर सकते हैं,
2: लेकिन बीवी का मुंह नहीं बंद कर सकते
3: और ना सेकंड वाला ऑप्शन तो कतई नहीं है। मुंह तो कभी कभार हो भी सकता है कि आप कुछ ऐसा कह दें या उनका मन हो जाए तो उनका मुंह बंद हो जाए, लेकिन चेंज करने का तो नो, मतलब नो
2: वो उसमें बटन ही नहीं है,
3: वो उसमें बटन ही नहीं है। जैसे कुछ कपड़े हम लेकर के आते हैं ना, वैसे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि जब कुछ कपड़े आप लेकर के आते हैं या खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है नो एक्सचेंज, यानी कि दोबारा हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ वैसा ही वाला ऑफर होता है। वैसे ये तो जोक था और वाइफ के ऊपर जोक,
2: मतलब हम लोग खुद ही, मतलब जीवन में हम लोग भी वाइफ बनेंगे और हम लोग खुद ही अपना मजाक बना रहे हैं।
3: नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं, वो तो जब बनेंगे तब बनेंगे।
2: जी जी,
3: जब कोई आएगा तब आएगा, अभी
2: तो महेंद्र जी आ गए हैं फिलहाल, और जब कोई आएगा तो आएगा, लेकिन महेंद्र जी आ गए हैं, आशु जी आ गई हैं, नव्या जी आ गई हैं, एंड आशु जी, प्रीति जी और हमारे क्रिकेट लवर, तो सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। मौसम की तरह वेरी ऑसम ये हमारा शो, ओ माई गॉड प्रीति जी, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रीति जी, आप कभी हमारे शो के लिए नहीं बोलती हैं कि मौसम की तरह ऑसम और ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बस आप आ जाते हैं, शुभ दोपहरिया बोल देती हैं, दैट्स इट। तो भाई कुछ और भी कंपैरिजन कर दिया करिए, कि जैसे आपने अभी मैसेज एक डाला था उस ऊपर कि मौसम की तरह ऑसम ये शो, तो वैसे ही हमारा भी कुछ कोई टैगलाइन बना दीजिए,
3: मौसम की तरह ऑसम हम दोनों, या ऐसा भी कुछ जो आपको पसंद हो।
2: हाँ।
3: तो आइए चलते हैं सीधे ओटीटी सीरीज की तरफ, और ये सीरीज बहुत ही प्यारी है क्योंकि इसका नाम बहुत प्यारा है, और नाम है क्लीन अप कंपनी।
2: फेस का क्लीन अप
3: नहीं है, ये कुछ लोगों का क्लीन अप है। तो इसमें होता क्या है ये भी बता देते हैं, कि इससे पहले सवाल उठें कि ये है क्या, हम बता देते हैं। सबसे पहले तो ये 21 अगस्त को रिलीज हो चुकी है, यानी कि कल, और इस सीरीज में तीन दोस्तों की कहानी है।
2: ओके।
3: जो कि क्राइम सीन, ये क्राइम स्टोरी है जिसमें तीन दोस्त जो होते हैं उन्होंने क्राइम किया नहीं होता है, लेकिन वो क्राइम सीन पे जाकर फंस जाते हैं।
2: हाँ।
3: और वहां से शुरू होती है कि जुर्म की दुनिया में आप फंस गए हैं और आपको खुद को बेगुनाह साबित करना है। तो ये खुद को बेगुनाह साबित करने की स्टोरी जो उठती है वो धीरे धीरे थ्रिलर की तरफ भी जाती है, क्योंकि जब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, जिसका कि मर्डर केस है, जाते हैं, तो आपको पता है उनकी हेल्प कौन करता है?
2: कौन?
3: वो मरी हुई लड़की उनकी हेल्प करती है और लास्ट में उन्हें बेगुनाह साबित कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें ट्विस्ट है, और यही देखने के लिए मजेदार है कि किस तरीके से वो जो है ही नहीं वो कैसे मदद करती है। तो इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प है, आप देखें। और मैं बता दूं, इसमें होने वाले हैं रवि किशन, विशाल और विशाल के साथ अमेघ, तो बहुत मज़ा आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। दूसरा है कि अब कॉमेडी से निकल करके, नहीं सॉरी, थ्रिलर से निकल के चलते हैं कॉमेडी की तरफ, क्योंकि अगर डराएंगे हम तो हंसाएंगे भी तो हम ही ना।
2: बिल्कुल।
3: जो कि है वेलकम टू द जंगल। ये वेलकम जो आपने पहले देखी होगी, अनिल कपूर और नाना पाटेकर पे बनी,
2: बहुत ऑसम मूवी।
3: यस मैम।
2: वेलकम वन, वेलकम टू, बहुत ही बढ़िया मूवी,
3: बहुत ही बढ़िया। और
2: मतलब
3: ये
2: कोई कितनी भी स्ट्रेस में हो ना, लेकिन अगर वेलकम वन या वेलकम टू देख लेना तो मतलब वो इतना स्ट्रेस में रहेगा नहीं। हाँ। एक वो एक धमाल आई थी।
3: यस मैम।
2: ये सब मूवीज जो है ये बहुत।
3: वेलकम में उसका एक डायलॉग भी था, उसमें जो मेन होता है कैरेक्टर, वो जो मतलब बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है, उसमें वो बहुत अच्छा है। तो वो कहता है जब देखो 10 गोलियां खाने के बाद भी वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अभी हम जिंदा
2: हैं।
3: तो वो बहुत अच्छा था। तो आइए अब वेलकम के बारे में आपको बता देते हैं कि उसी वेलकम से ये वेलकम बनी है। और ये वेलकम टू द जंगल इसलिए है क्योंकि पहले जैसे आता था ना एक शो, क्या नाम था उसमें, आई थिंक मोगली जैसे कुछ था, तो वो कुछ वैसा ही है कि वो पूरे 20 दिन जंगल में बिताएंगे। अब पूरे 20 दिन जंगल में कैसे बीतेंगे ये तो बिताने वालों को ही पता, लेकिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप जरूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। अब आइए चलते हैं टीवी की तरफ।
2: ओके,
3: टीवी की तरफ एक नया शो जो कि जी टीवी पर लॉन्च होने वाला है, आप इसे Z5 ऐप पे देख सकते हैं, जिसका कि नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे कल मैंने इसकी एड देखी और मुझे नाम बहुत प्यारा लगा, दिल में तुम ही तुम रह गए। बहुत ही मतलब टची था और बस टच हो गया। तो दिल में तुम ही तुम रह गए हो, इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक लड़की जो होती है वो हमेशा अपनी ड्रीम में ही रहती है, मतलब उसकी और सभी की ड्रीम होती है, ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन जो मिलता है वो बिल्कुल उसकी कल्पना या उसकी इमेजिनेशन हम कह लें उससे अपोजिट होता है, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। कहीं एक पॉइंट भी, जैसे हम कहते हैं ना कि 36 में 36 गुण मिलने चाहिए, लेकिन इस केस में हम ये कहेंगे कि 36 में कुछ भी नहीं मिला, मतलब 1% भी नहीं मिला, सब कुछ अलग। तो सोचिए आप कि आपने दुनिया में, मतलब दुनिया में नहीं, आपने अपनी प्लेट में इमेजिन किया हो कि आज मुझे रसगुल्ला मिलेगा, ऐसा आपने इमेजिन किया हो, और अगर आपको मिल जाए करेले की सब्जी तो कैसा लगेगा, कैसे लगेगा मैम बताइए
2: करेले की सब्जी क्या?
3: अगर आपने सोचा हो कि मुझे आज रसगुल्ला मिलेगा मेरी प्लेट में, और आपको करेले की सब्जी मिल जाए तो कैसा लगेगा?
2: ओह माय गॉड, मुझे करेला बहुत पसंद है एक्चुअली।
3: ये तो अच्छी बात है।
2: एक्चुअली मुझे करेला बहुत पसंद है।
3: मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहती थी कि मतलब मीठा आपने इमेजिन किया है और आपको कड़वा मिल जाए तो कैसा लगता है। अच्छा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग। एक्चुअली इस शो का कंटेंट ये है कि कभी भी बहुत अच्छा इमेजिन नहीं करना चाहिए,
2: नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, मेन बात ये होती है एक्सपेक्टेशन। मैंने एक लाइन भी बोली थी कि मोर देन एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करती है।
3: राइट, तो ये है। और दूसरा हमारा शो है जो कि भाई बहुत शानदार होने वाला है, आप सभी इस शो को जानते हैं और इसमें हमारे सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन जी आते हैं और कहते हैं देवियों सज्जनों आपका स्वागत है और शुरू होने जा रहा है कौन बनेगा करोड़पति। तो वैसा ही है कि इस बार कौन बनेगा करोड़पति फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो हम देखेंगे कि अपने ज्ञान के बल पे कौन परचम लहराते हैं और करोड़पति बनते हैं।
2: प्रीति जी ने बहुत ही अच्छे से मॉर्निंग में शो के लिए लिखा था कि जैसा मौसम है वैसा औसम शो, और हमारे लिए लिखा है कि हम सब रंगेंगे रंगोली के संग संग आज शनिवार के शो में, मैं और मस्ती धमाल लिखना चाहे मस्ती धाम मचाएंगे मस्ती धूम मचाएंगे।
3: ओ थैंक यू प्रीति जी। तो ये थी कुछ अपडेट्स जो कि शोज को लेकर के। और हाँ, पुरानी यादों में हम हमेशा कुछ ना कुछ जब भी जाते हैं तो निकाल कर ले आते हैं, तो इस बार कुछ पुराना फिर से आने वाला है। कहते हैं ना जब कुछ पुरानी चीज़ें फिर से रिन्यू होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप सभी ने शो देखा होगा, मुझे लगता है अमूमन सभी ने, कसौटी जिंदगी।
2: अरे मेरा फेवरेट शो।
3: यस मैम, तो मैं बता दूँ कि स्टार उत्सव पे कसौटी जिंदगी की फिर से शुरू हो रहा है, तो ज़रूर देखिए और फिर से खो जाइए उन्हीं पुरानी यादों में, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी आपकी पुरानी यादें उससे जुड़ी हुई होंगी। तो फिर से वही कलाकार होंगे, वही माहौल होगा और मस्ती भी होगी, लेकिन जो कि कसौटी जिंदगी की है तो ड्रामा तो जरूर ही होगा।
2: ड्रामा होगा और बहुत ही अच्छा सा प्रेरणा बजाज, मिस्टर बजाज
3: तो, और अनुराग
2: तो yes, क्या किरदार वही लौट रहे हैं?
3: बिल्कुल, मतलब जो पहले आया था, पहले कास्ट हुआ था, वही फिर से स्टार उत्सव पे शुरू हो रहा है।
2: ओके वाओ, तो चलिए भाई हम लोग ये जरूर से देखेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और सॉन्ग के उस पार आएंगे सीधे सीधे हम आज के राशिफल की। और अभी OTT सीरियल्स बाकी है
3: नो आज के लिए तो मेरे पास
2: तो चलो भैया आज फिर मैं आप फटाफट राशिफल शुरू कर देंगे और उसके बाद में हम आपका गेम सेक्शन जो कि आज के दिन होता है हमारी बकबक कम काम ज्यादा।
3: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, सुनते हैं एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

अब पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता और साथ में हैं
3: आरजे अंशिका।
2: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि आपका फेवरेट राशिफल।
3: हमेशा अपनी लाइफ में करते रहिए लव शव, तो चलिए अब आते हैं लव राशिफल पे। लव राशिफल बताते हैं तो सबसे पहले जो राशि आती है वो है मेष राशि वालों के लिए। तो आइए बताते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल। आज आपकी लव लाइफ में रोमांस और खुशियां बढ़ेंगी, साथी के साथ खुलकर दिल की बात कह पाएंगे और पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे।
2: जी
3: ओके, बहुत ही अच्छा। तो आइए बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों की तरफ है कि आज
2: लेकिन अंशिका कैसे भूल गई तुम कि हमारा गेम सेक्शन शुरू होने से पहले हम पहले देते हैं वर्ड्स, उसके बाद शुरू करते हैं राशिफल।
3: तो मैंने आज तुम कहाँ हो, कह दिया था
2: कहाँ हो तुम आज, मुझे समझ में नहीं आया ना तुम आज यहाँ नहीं हो। तो चलिए दोस्तों आपका गेम शुरू हो चुका है।
3: कल के डोज का असर मुझे लगता है थोड़ा सा आज भी रहेगा,
2: तब रहेगा। तो हम देते ही ऐसे ऐसे डोज, हाई डोज हम देते ही है, हम नॉर्मल डोज देते नहीं है। वो 5-3 ml का नहीं देते हम, देते हैं तो 15 ml का ही देते हैं हम। 350 बहुत हो जाएगा, मैं देती हूँ 15 ml का एक पूरा, एक जो इंजेक्शन आती है छोटी शीशी पूरी भर के, क्योंकि वो इंसान को 15 दिन तक तो उसका असर रहे नहीं, अच्छी आए, दिमाग सही रहे, नसे कमजोर ना हो। तो 15 दिन तक उसका असर रहता है लोगों के दिल दिमाग पे। तो आपका गेम स्टार्ट हो गया है और आपका पहला वर्ड आज मैं आपको दूंगी वो है लव।
3: ओ माई गॉड, मतलब मैम ने वर्ड दिया है लव।
2: चलो आप अपना काम करो।
3: जी जी जी, चलिए काम करते हैं। हाँ, तो वृषभ राशि वालों के लिए है आज का राशिफल कि आज के पूरे दिन में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं और इसलिए आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा सैड है लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ सैडनेस होती है वहाँ हैप्पीनेस भी होती है। तो हमारे पास इसका वो भी है कि आपकी राशिफल में है कि फ़ोन या मैसेज के जरिए जुड़ाव बना रहेगा, पार्टनर की नाराज़गी को प्यार से दूर करें। तो भाई नाराज़गी तो बनती है जब पूरे दिन आप बात नहीं करेंगे, तो नाराज़गी तो होगी ना। अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि आज आपकी लव लाइफ में बहुत ही अच्छा और बेहद खूबसूरत दिन है। ओके,
2: आपका वर्ड मैंने दे दिया है, वर्ड इज लव। लव माय इंडिया, माय लव इंडिया, लव माय इंडिया, ये कौन सा गाना है, आई लव माय। ओके
3: ओके ओके, और साथ में है कि कुछ पुराने लम्हे फिर से आपकी लाइफ में लौट कर वापस आने वाले हैं, कुछ पुराने लोग भी हो सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो नहीं है लेकिन अभी के लिए, कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल है कि आज आपका पार्टनर आपसे खुलकर अपने दिल की बात करेगा, आप भी उससे सारी बातें कह सकते हैं, साथ ही आपके फैसले का सम्मान करेगा, घुट घुट कर जीने की बजाय बातों को साफ साफ।
2: एग्जैक्टली और आशु जी एंड प्रीति जी, आपके दोनों के सॉन्ग्स जो है बहुत सेम आ गए हैं, तो मैं दोनों के सॉन्ग्स को ज़रूर से प्ले करूँगी। एंड मतलब पहला वर्ड तो मुझे दिया था प्रीति जी ने, ओके, लेकिन आशु जी एंड प्रीति जी का सॉन्ग सेम हो गया, बट नव्या जी ने लिखा है लव तुझे लव में करता हूँ, तो नव्या जी सेकेंड चांस इज द बेस्ट चांस। तो आपके हो गए राशिफल
3: जी,
2: तो मैं आगे बढ़ूँ।
3: जी मैम,
2: तो चलिए अब मैं सुना देती हूँ आपको एक सॉन्ग एंड ब्रेक के बाद आएंगे फिर से चार राशियों को बताने के लिए। तब तक के लिए सुनते रहें हमारे प्यारे प्यारे गानों का जो सिलसिला है, गेम का सेक्शन शुरू हो गया, नेक्स्ट वर्ड हम आपको देंगे चैट बॉक्स में, तो आपका ध्यान पूरा बना रहे आपके अपने चैट बॉक्स में।
3: तो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी समता और आ गई है आपकी अंशिका। तो फटाफट आइए शुरू कर देते हैं। अंशिका ने बताया था मिथुन राशि, मेष, ऋषभ है ना,
3: कर्क तक
2: बताई थी आपने। अब मैं बताऊंगी आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। तो सिंह बताने जा रही हूँ भाई कि आज का दिन आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आने वाला है। एक साथ कोई नया काम या ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप। तो सलाह आज आपके लिए यही है कि बातचीत में अपने अहंकार को बीच में ना आने दे। वो कहाँ हो सकता है इनसे। कन्या
3: हाँ मैम, सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सिंह राशि वाले मतलब जो भी होते हैं वो थोड़ा एटीट्यूड में होते हैं,
2: बहुत ज्यादा वाले में हो, बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है उनको,
3: तो एटीट्यूड फिर नुकसान भी होता है। जी
2: कन्या के लिए है कि लव लाइफ में आज शांति और स्थिरता बनी रहने वाली है एंड पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं आज आप। साथी के साथ प्रति एक सलाह है, जो साथी के प्रति अपनी वफादारी और मजबूत करें आप। नेक्स्ट राशि आती है तुला राशि है। आज का दिन आपकी तालमेल को और बेहतर बनाने का है। कोई छोटा सा सरप्राइज आपके रिश्ते में मिठास घोल सकता है एंड सलाह आज के लिए है कि पार्टनर की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज आप अपने पार्टनर के प्रति काफी आकर्षित महसूस करेंगे एंड प्रेम जीवन में सकारात्मक और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। छोटी सी सलाह है कि अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें और संकोच बिल्कुल ना करें। एंड नेक्स्ट राशि हमारी आती है धनु, मकर, कुंभ और मीन।
3: तो धनु राशि वालों के लिए बताते हैं कि धनु राशि वालों के लिए है कि आपको आज अपने साथी से, अपने जो आपके साथी के प्रति आपको आकर्षण होगा और साथ ही साथ में आपको अपने मन की जो भी बातें हैं वो उनसे कहनी होगी,
2: कह सकते हैं आप।
3: बिल्कुल, रिश्ते में जल्दबाजी ना करें,
2: ये एक छोटी सी सलाह है।
3: ये एक सलाह है कि रिश्ते में कभी भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी जो भी आपकी भावनाएं हैं उन्हें जल्दबाजी में कहने की कोशिश ना करें। दूसरा आता है मकर राशि वालों के लिए है कि आपकी लव लाइफ में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कि बहुत जरूरी भी हैं
2: और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओके, सावधानी बरतने की आवश्यकता है अंशिका। और
3: मतलब वैसे भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं आगे जो कि है मकर राशि वालों के लिए। तो बताते हैं आपको कि मकर राशि वालों के लिए आज क्या है।
2: जी
3: सो मकर राशि वालों के लिए आज का राशिफल है कि आज लव लाइफ में थोड़ी इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है और साथ ही में है कि किसी गलतफहमी की वजह से थोड़ी बहस होने की आशंका है। सलाह आपके लिए ये है कि ठंडे दिमाग से बात कर मामले को सुलझाएं।
2: जी
3: अब आते हैं कुंभ राशि वालों के
2: लिए। आई एम सो एक्साइटेड।
3: यस, कुंभ राशि वालों के लिए कि आज रिश्तों में गहरा तालमेल और आपसी समझ देखने को मिलेगी।
2: हाँ ये तो है,
3: ये तो
2: मुझे लगा भी आज।
3: जी और पार्टनर के साथ किसी फंक्शन में यानी कि सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और सलाह ये है कि साथी के विचारों की तारीफ करें।
2: ओके ठीक है।
3: ओके अब आते हैं मीन राशि वालों के लिए है कि आज पारिवारिक सुख शांति के साथ प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जाने का मौका मिल सकता है। भाई बहुत ही अच्छी, तो ये थी हमारी राशियां और ये थे आज के लव राशिफल। तो अब हम चलेंगे अगले सॉन्ग की तरफ।
2: अगला सॉन्ग हमें भेजा है सबलू जी ने, इश्क।

0: प्यार हुआ, इकरार हुआ एक लिए। अभी बिल्कुल सही गाना आया है जो कि बारिश का मौसम भी दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आप दोनों लोग मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बारिश के मौसम में बारिश का आनंद ले रहे होंगे। हालांकि हम आनंद नहीं ले रहे बिकॉज मेरी गली में भर चुका है पानी और उस पानी से छप छप करते हुए हम आ चुके हैं आपके अपने वाला स्टूडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति, और ये है आपका अपना वाला प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा सैटरडे स्पेशल, जिसमें होती हैं आपकी डिमांडेड सॉन्ग्स के साथ आपका कॉल इन प्रोग्राम, यानी कि आपकी कॉल्स, मेरी बातें, आप मेरे सवाल, आपके जवाब, और उनके बीच में होते हैं आपके गाने। तो तैयार रहिएगा क्योंकि आज का शो होने वाला है काफी स्पेशल। और हम आपको बता दें, ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल के लिए हम कॉलिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले अपना पहला गाना प्ले कर देते हैं, यानी कि पहली फरमाइश प्ले कर देते हैं, जो कि हमारी अमित कुमार जी की आई है और वो सुनना चाहते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, और ये था हमारी अमित कुमार जी की फरमाइश। सावन आया है और इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं अपना कॉलिंग प्रोग्राम। और हमारे पास किसकी कॉल आई है देखते हैं। हेलो हेलो, आपका नाम? सबिया जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। और आपको हम बता दें, इस वक्त आप ऑन ईयर हैं।
1: जी मैं पता है।
0: क्या बात है। चलिए, तो आपकी डिमांडेड गाने को स्टार्ट करने से पहले कुछ गेम हो जाए।
1: जी मैम।
0: क्या बात है भैया, हमारे ऐसी लिस्ट बड़े पसंद है जो कहते हैं जी मैम, तुरंत तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है जिसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, और आपने भी सुना होगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग सही है या नहीं?
1: बाप।
0: हाँ, बताइए बताइए।
1: हाँ, जो छोटे हो तो उनके तो बाप लगते हैं।
0: मेरा सवाल ये था कि जो डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ये डायलॉग सही है या फिर ये वाला डायलॉग सही है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह?
1: ये सही है।
0: पहले वाला सही नहीं है?
1: नहीं।
0: लो जी, अमिताभ बच्चन को तो हम यही बोलते सुने हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा था, ठीक था। और इसी के साथ आपने जीता है अपना डिमांडेड गाना। कौन सा है आपका सॉन्ग? हेलो,
1: सावन की बरसातें।
0: भाई सावन की बरसातें, लगता है आज मेरी गली में ना आप लोग वो लेकर ही आ जाएंगे जिसको हम कहते हैं बाढ़। और मुझे तैर के जाना पड़ेगा, तैरना भी नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए जुबिन नौटियाल की आवाज में रिमझिम सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच सबिया जी कॉल करने के लिए। तो लिसनर्स, आप एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोडा विद आरजी उन्नति, और ये है आपका अपना वाला प्रोग्राम, आपके अपने एफएम पर रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम पर।

ऐसा तो कहीं भी नहीं है भैया कि सारे शहर में सिर्फ हमको भिगा रहा है, पूरे शहर को भिगा चुके हैं। वो अलग बात है कि मेरी गली में पानी थोड़ा ज्यादा भर गया है। फिलहाल के लिए आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुड विद राज चुनौती, और ये थी हमारी फरमाइश सभिया जी की, जिन्होंने हमें कॉल किया था। कॉलिंग के बाद हमने उनसे सवाल भी किए थे, तो अगर इस वक्त किसी की कॉल आ गई तो उनसे भी मेरे सवाल की छड़ी लग जाएगी। फिलहाल अगर नहीं आती है तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और हम चलेंगे अपने अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा सैटरडे स्पेशल, और ये है आपका अपना रेडियो 93.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है धर्मेंद्र मोहन जी की, जो मैं सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, और उन्होंने गाने की फरमाइश की है कसम से दो आंखें बारह हाथ गोविंदा पर फिल्माया गया गाना कुमार सानू अलका जी की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

0: धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश थी और आप इंजॉय कर रहे थे कुमार सानू और अलका जी की आवाज में 90s का गाना दो आंखें बारह हाथ फिल्म से कसम से कसम से। और इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स, जिनके पैगाम, जिनके मैसेजेस आ चुके हैं हम तक आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। तो फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद है वो है आशु मिश्रा जी फ्रॉम लखनऊ, और इसके बाद सबिता दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। इसके बाद नव्या जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड नमस्कार रति मैम से लिखा है महेंद्र दीपन जी ने, नमस्कार आपको भी, कैसे हैं आप। एंड इसके बाद जो हमारे पास दूसरा मैसेज आया है वो आया है सबलू जी का, ओ माय गॉड इतनी बड़ी धूप है, लग ही नहीं रहा सावन भादो माह है, बारिश कहीं खो गई है। नहीं नहीं नहीं, बारिश कहीं खो नहीं गई है, बारिश हमको आधी भिगो कर आ चुकी है। एंड इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी का मैसेज है आवास विकास से लिखा है, उत्तर जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक माई सॉन्ग, आपका गाना हमने प्ले कर दिया है। और इसी बीच हमारे पास एक कॉल भी आ गई है, तो क्या ख्याल है, खुराबाती दिमाग लगाया जाए और कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: चांद बाबू
0: जी। चांद बाबू जी कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में, और इस वक्त आप हमारे साथ ऑन एयर यानी कि लाइव हैं
1: जी।
0: चलिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप बोल कहाँ से रहे हैं?
1: मैं हथियागढ़ से बोल रहा हूँ मैडम।
0: हैं, आप मुझे सुना? अच्छा, आपने बोला हथियागढ़, मुझे सुनाई दिया, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ, मैं सोचूं कि अपने घर से ही बोला जाता है वैसे तो।
1: नहीं नहीं, मैं हथियागढ़ बाजार से बोल रहा हूँ
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: तो कौन सा गाना है वैसे आपका?
1: ये यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: अच्छा चांद बाबू, मैं आपसे एक सवाल करूं क्या?
1: हाँ पूछिए।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये क्यों मुश्किल था, क्योंकि डॉन के बीच में ऐसी कौन सी चीज आ रही थी जो उसे मुश्किल बना रही थी? सोचो सोचो।
1: नहीं मालूम है।
0: ओके, चलिए आपको नहीं मालूम तो हमारे लिसनर बताने वाले, तब तक के लिए हम आपका गाना प्ले कर देते हैं, आप एंजॉय करते रहिए अपने पसंदीदा सॉन्ग को कॉलर ट्यून गोंडा में। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो भाई हमारे चांद बाबू जी को तो नहीं पता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल क्यों है, आफ्टर ऑल आप बताइएगा कॉल करके या फिर चैट बॉक्स में कि डॉन को पकड़ना मुश्किल क्यों था इतना मुश्किल, डॉन ही तो था, कोई भी पकड़ सकता था, है कि नहीं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा विद राजरति।

भाई मानना पड़ेगा हमारे लिसनर्स के अंदर क्रिएटिविटी इस लेवल की है जिस लेवल पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमने पूछा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल क्यों है, तो हमारे लिसनर्स हमें कमेंट करके बता रहे हैं डॉन के बीच में डॉन की महबूबा आ रही थी इसलिए डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। वाह नहीं वाह वाह, ये आंसर हमारी नाजिया जी ने लिखा है। इसके बाद एक और जवाब हमारे पास आया है और वो ये है कि डॉन को इसलिए नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि उस टाइम कानून के हाथ लंबे नहीं हुआ करते थे। वाह, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी ऑन टॉप नॉच। मतलब ठीक ठाक मैंने सवाल पूछा था लेकिन उसके जवाब इतने खूबसूरत आएंगे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। फिलहाल आपने बहुत ही कमाल का जवाब दिया, वो अलग बात है कि जवाब इनमें से एक भी सही नहीं है। तो जरा और कोशिश कीजिए और बताइए कि डॉन को पकड़ना मुश्किल क्यों था, क्यों मुश्किल था इतना ज़्यादा। और हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर, बढ़ेंगे आपके अपने कॉलर ट्यून गोना में। अगली फरमाइश हमारी देवी प्रसाद जी की आई है और वो सुनना चाहते हैं आज अचानक हम पे है। अब क्या है ये तो आपको सुन के ही पता चलेगा। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कॉलर ट्यून गोना विद राज 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली पर और ये है आपका सैटरडे वाला स्पेशल शो।

0: और भैया मुझे लग रहा है देवी प्रसाद जी ने जो गाने की फरमाइश की थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना बदलाव आ चुका है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक दूसरी कॉल आई है, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: नमस्कार मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? ओके जी, आनंद जी आपसे मिलकर हमें बड़ा आनंद आया। फिलहाल ये बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, तब आप लोगों का आशीर्वाद है। और आप कैसी हैं?
0: मेरा आशीर्वाद है तब तो आप बहुत मस्त होंगे, और आपका आशीर्वाद है इसलिए हम भी बहुत मस्त हैं।
1: जी, यदि आपने एक क्वेश्चन किया था दान वाला।
0: जी जी जी, किया तो था। चलिए, आपके पास जवाब आ गया क्या?
1: अब गेस लगा रहे हैं, जो स्टोरी बनाने वाला है ना मैं फिल्म का,
0: जी
1: वो जैसा चाहे वैसा कर दे, चाहे मुमकिन करे चाहे नामुमकिन कर दे।
0: जी जी जी, चलिए बताइए क्या जवाब हो सकता है।
1: जी,
0: क्या जवाब हो सकता है? क्यों डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं था? मतलब मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। वैसे मानना पड़ेगा मेरे लिसनर्स मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है इस मामले में। हर एक का जवाब बहुत ही अलग हो रहा है, बहुत अलग का मतलब क्या बताएं इस वक्त हम, हमारी अवधि भी चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका? ओके, मैं हूँ डॉन,
1: जिसका मुझे था इंतजार,
0: जिसका मुझे था। मुझे लगा आप कहने वाले हैं मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। एंजॉय कीजिए आप अपनी फरमाइश, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: थैंक यू मैम।
0: तो भाई लिसनर्स, ये थी हमारी फरमाइश आनंद जी की, एंजॉय करते रहिए। और जो उसके बाद की फरमाइशें होने वाली हैं वो हैं आपकी अपनी, गुलफ्शा जी की, समरीन जी की, निशा जी की, जानवी जी की। सुनते रहिए कॉल ट्यून गुन। और मुझे लगता है आज वक्त थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी भागने वाला है, आपको क्या लगता है?

0: और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारी गुलाब शाह जी की आई है और वो सुनना चाहती हैं, तू लड़की नंबर वन है, तो हमको पहले से ही पता था, आपकी तारीफ कर दी आपने और इस चीज़ को और भी कंफर्म कर दिया। फिलहाल ये गाना मेरे लिए डेडिकेटेड नहीं था, बट कोई भी गाना जो मुझे अच्छा लग जाता है मैं खुद को डेडिकेट कर लिया करती हूँ। फिलहाल आपके चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं कि क्या नज़ारे हैं चैट बॉक्स के, और हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था वो नाजिया अंसारी जी से पहले धर्मेंद्र मोहन जी का था। एंड इसी के बाद हमारे पास एक कॉल भी आई है, आइए इनसे बात करते हैं पहले। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: मैं मंजू यादव।
0: जी मंजू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ, और ये बताइए बारिश के मौसम में आप क्या बना रही है?
1: मैम घर पे कोई है ही नहीं तो बनाए क्या।
0: चलिए हम आते हैं, आप बना के रखिए, बस आप बताइए आप बनाए क्या रही है।
1: मैम पकौड़े बना लेंगे।
0: किसके?
1: पनीर है मैम इसमें, घर में पनीर का
0: बना लेंगे। अच्छा जी, मुझे लगा आप बेसन का बनाने वाली है। चलिए मंजू जी, कौन सा गाना है आपका, बता दीजिए प्लीज।
1: मैम सुनना है जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम।
0: सच में?
1: यस।
0: झूठ तो नहीं बोल रही है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मंजू जी।

और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। और जबरदस्ती हमने गुलफ्शा जी से अपने लिए गाना डेडिकेट करा ही लिया। इसको कहते हैं एक हिडन टैलेंट जो मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भर दिया गया है, इतना कूटा गया है कि अब निकल ही नहीं रहा था बाहर। फिलहाल हमारे साथ जो लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, हमने जो मैसेज पढ़े थे वो महेंद्र दीपन जी का था, जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं और लिख रहे हैं 11 देशों की पुलिस में आपस में ही बहस चल रही थी कि पीछा करते वक्त गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा कौन सा देश भरेगा, और इसीलिए 11 मुल्कों की पुलिस मिलकर भी डॉन को पकड़ नहीं पा रही थी। क्या बात है, राइटर ने ऐसा दूर दूर तक नहीं सोचा था, लेकिन आप कमाल का सोच लेते हैं। इसके बाद मैसेज आया था हमारे पास सबलू जी का, अमिताभ बच्चन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि वह बहुत चालाक थे और हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहते थे। उसे केवल एक ही इंसान पकड़ सकता था और वह डॉन खुद था, यानी उसका हाम शक्ल। क्या बात है, मूछ हो तो नथुलाल जैसी। वैसे आपने एक बात तो सही कही है, जो पॉइंट था मेरा कि डॉन को पकड़ना मुश्किल क्यों था, वो इसीलिए था क्योंकि डॉन का एक हाम शक्ल भी था और पुलिस दोनों में कंफ्यूज थी असल वाला कौन सा है। इसके बाद हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून माई स्वीट हार्ट मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं उस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए डॉन को पकड़ना मुश्किल था। ओ माय गॉड, ओके थैंक यू सो मच। एंड उस्मान जी लिख रहे हैं शुभ संध्या आरजे मैम, वैसे तो अभी दोपहर हो रही है लेकिन मौसम को देखते हुए मैं इवनिंग मान लेती हूँ, और गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू यू, बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश पर, जो कि हमारी समरीन जी की आ चुकी है। समरीन जी जो सुनना चाहती हैं वो है अखिया मिलावंगा। तो आइए इंजॉय करते हैं, गुनगुनाते हैं और मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी निशा जी की और जानवी जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

सबरी जी की फरमाइश के बाद आइए ट्यून कर लेते हैं अपनी मंजू जी की फरमाइश को, जिधर देखती हूँ तुम्हें देखती हूँ, और ये गाना उन्होंने हमें कॉल करके बताया था। तो भैया इनकी फरमाइश को एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुना में। और अगली फरमाइश है हमारी निशा जी की, याद याद याद बस याद रह जाती है। लेकिन मिलते हैं इस गाने के उस पार, और हमारे साथ जुड़े हैं राजू जी फ्रॉम सीतापुर, और आपका स्वागत कर लेते हैं कॉल ट्यून गुना में। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है कॉल ट्यून गुना में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये है आपका रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गुना शहर की धड़कन।

प्यार से। मंजू जी की फरमाइश के बाद आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, और ये फरमाइश है हमारे निशा जी की। बेवफा फिल्म से आप इंजॉय करने जा रहे हैं, गुलाम अली की आवाज़ में तेरी याद याद याद बस याद रह जाती है। समीर साहब ने दिया है इस गाने को बोल, और बहुत ही खूबसूरत गाना रिलीज़ किया गया था 2005 में। आपकी अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस इसमें नज़र आई हैं, जिसमें एक तो हैं आपकी करीना कपूर, अनिल कपूर, और इसके अलावा एक और है जिनका नाम आप बताने वाले हैं चैट बॉक्स में। फिलहाल मेल एक्टर जो है वो है अक्षय कुमार, और एक फीमेल एक्टर जिनकी याद में ये गाना गाया गया है वो कौन है आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Stay tuned.

0: ये था भैया आपकी अपनी पसंदीदा निशा जी का गाना, और हमारे बीच में आ गए हैं महेंद्र जी। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, आपका नाम?
1: महेंद्र जयपन बोल रहा हूँ, राजस्थान से।
0: चलिए, हमारे दिमाग में एक सवाल आ ही रहा था, अब आप आ ही गए हैं तो नेकी और पूछ ना करते हुए हम आपसे सवाल कर लेते हैं।
1: लेकिन सवाल तो ज्यादा आता नहीं, लेकिन पूछिए।
0: आपको सवाल करना भी नहीं है, सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिएगा। सवाल मुझे बहुत आता है, जवाब आपको आता होगा।
1: ठीक है ठीक है, पूछिए।
0: ये जितने भी भूत होते हैं ये हमेशा सफेद कपड़े में क्यों दिखते हैं?
1: क्योंकि इनको वैसे देखेंगे तो डर जाएंगे ना।
0: मतलब सफेद कपड़ों में देख के आप डर जाओगे, काहे काले कपड़े में नहीं डरोगे?
1: नहीं, काले में कैसे डरेंगे, दिखेंगे नहीं तो।
0: तो क्या मतलब, सफेद कपड़े पहन लेंगे तभी खतरनाक दिखेंगे, काले कपड़ों में भी तो खतरनाक दिखा जा सकता है। देखो, हमारे जितने भी राक्षस लोग हैं वो काले कपड़े पहनते कि नहीं पहनते?
1: पहनते, लेकिन काले में दिखते नहीं, अंधेरे में आएंगे ना फिर। और दिन में हमको डर भी नहीं लगेगा।
0: चलिए, बहुत शुक्रिया। वैसे जवाब बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन मजा आया। और राइट, आपका गाना कौन सा है भाई? दबे
1: मेरा गाना है, मेरा यार दिलदार।
0: ओके, तो आपका गाना हमने नोट डाउन कर लिया है। आप थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए और हम आपका गाना बहुत जल्द प्ले करते हैं।
1: ठीक है मैम, गुड बाय।
0: गुड बाय। और ये गाना आप एंजॉय कर रहे हैं जानवी जी की फरमाइश पर, आपकी आ जाने से।

और इस गाने को बीच में ही रोकना पड़ेगा क्योंकि भैया वक्त होता जा रहा है कि आपका कॉलर ट्यून खत्म होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कुमार जी, सचिव विभाग से मैं माफी चाहूंगी, मैं कॉलिंग से ही आपके गाने को ले सकती हूँ, आपकी फरमाइश को ले सकती हूँ, लेकिन आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं, हेलो मैम एंड एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, ये बताओ कि सब डॉन पकड़ा गया कि नहीं। अब ये तुम्हारे लिस्टनर ही बताएंगे कि हमने डॉन पकड़ लिया कि अभी भी नामुमकिन है। मिश्रा ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम डॉट ए डॉट एम, गुड आफ्टरनून टू यू एंड कास उस टाइम 112 डायल होता डॉन तो क्या सब पकड़े जाते। ऑल राइट, ये डायलॉग मैं अभी देकर आती हूँ, उस राइटर को कहूँगी थोड़ा सा बदलाव किया जाए फिल्म के अंदर। एंड नाजिया जी कह रहे हैं ये फंस गया बेटा क्योंकि कफन सफ़ेद कपड़े का होता है इसीलिए, बट ये तो ओढ़ना होता है ना। और हमें जो भूतनियाँ दिखती हैं या फिर जो भूत दिखते हैं वो हमें एक्चुअली या तो सफ़ेद कलर की फ्रॉक में दिखते हैं तो साड़ी में दिखते हैं। सोचिए इसका इन्वेंशन किसने किया, क्यों हमेशा कपड़े सफ़ेद ही होते हैं भूत की तरह, आप सोचिए। और हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना जो हमारे पास आया है वो आया है तिरछी टोपी वाले हमारे रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी फ्रॉम महाराष्ट्र से। और मेरा दिमाग भी आजकल डाउन में चला गया है, आप एंजॉय करते रहिए। जिस स्पीड से वक्त गुजर रहा है ना, उस स्पीड से लग रहा है मैं सबके गाने प्ले नहीं कर पाऊंगी, तो आपसे माफी चाहूंगी अगर किसी का गाना बच जाता है तो। नागेश्वर दाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम, नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू एंड नमस्कार, ऐसी जमाई लेते हुए अभी आई है। भूत हमेशा सफ़ेद कपड़ों में ही क्यों दिखते हैं, कभी जीन्स टी शर्ट में क्यों नहीं होते? सेम सवाल सब्दू सावंत जी, मेरा भी यही था, आपने भी बस थोड़ा सा उसको बदल के तोड़ के मरोड़ के पेश कर दिया है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

भैया गानों की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और माफी चाहेंगे आपसे आपका गाना बीच में ही रोकने के लिए रमेश कुमार जी। और हम चलेंगे अगले गाने की तरफ जो किसी और का नहीं, हमारी सबलू जी का आया है और वो कह रहे हैं जब तक रहेगा समोसे में आलू। समोसे की याद दिला दी आपने, चलिए आप समोसे में आलू और सुनते रहिए इस गाने को। हम थोड़ा सा चाय पानी समोसा आलू करके आते हैं, मतलब देख कर आते हैं, बना पा रहा है क्या कोई इस मौसम में।

और इस गाने को बीच में रोकने के लिए इसलिए माफी चाहेंगे क्योंकि भैया इतना गाने में खाना हो गया है कि हमको भूख लगाई है। हालांकि घर से खाना खा के आए थे लेकिन डोसा चटनी समोसा आलू सुन सुन के ना मेरे कानों में लग रहा है कि नीचे से आवाज़ आ रही, मतलब मेरे पेट से आवाज़ आ रही कि भैया कुछ मिल ही जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये गाना लिखा पता किसने है? देव कोहली साहब ने। और शायद वो उस दिन होटल पर ही बैठे थे और ढाबे वाले भैया से पूछ रहे थे आपके मेनू में क्या क्या है, और उस मेनू में जो जो गिनाया गया था देव कोहली साहब ने अपने पूरे गाने में लिख डाला है। आपको क्या लगता है फिलहाल? ये फरमाइश थी हमारी सबलू जी की। और अगली फरमाइश आई है रईस साहब की, और हमारे नागेश्वर जी कह रहे हैं हमको भी किसी गाने में लटका दो। चलिए जी आपको लटका देते हैं हम करिश्मा कपूर और गोविंदा पर फिल्माया गया गाना हीरो नंबर वन से सोना कितना सोना है, या वैसे मुझे भी सोना है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गो डस्ट ट्यून्ड।

भैया रईस साहब की फरमाइश थी हमारे पास सोना कितना सोना है, और हमारे नागेश्वर जी कह रहे हैं सोना तो हमको भी है लेकिन हमारे पास तकिया नहीं है। यही तो हमारे पास भी है कि हमारे पास ना तकिया है ना गद्दा है ना कुछ भी है, और हम चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे बैठे सो सकते हैं लेकिन मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी इसलिए हम सो नहीं रहे हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारी शालिनी जी का है और ये थी फरमाइश हमारे रईस साहब की, जो अपने आप में बहुत रईस हैं फिलहाल के लिए, दिल के बड़े रईस इंसान हैं। और आप सुनिए शालिनी जी की फरमाइश इश्क़ावे, और मिलते हैं अपने चार गानों के साथ। आई होप मैं इनको कंप्लीट कर ले जाऊं। बेस्ट ऑफ लक टू मी।

रहे हैं कि आज एक्सप्रेस बहुत फास्ट चल रही है, देखो पीछे सवारी तो नहीं गिर गई। नहीं नहीं नहीं माई सवारी नहीं गिरी है, क्योंकि सबने सीट बेल्ट अच्छे से लगा रखी है। और अगली पर माई संतोष कुमार जी की जो सुनना चाहते हैं, रिमझिम गिरे सावन। ओके, तो स्पीड को थोड़ा धीमा करते हैं क्योंकि ये गाना एंजॉय करने लायक है और बहुत स्लो मोशन में है। और हम आपको बता दें, ये वो गाना है जो बिना परमिशन शूट किया गया था। जहां पर ये शूट किया गया है वहां डायरेक्टर ने परमिशन ले ही नहीं थी कि हम शूट करें, और अमिताभ बच्चन और किसी को एक्सेप्ट भी नहीं मिला था। बस इतना पता चला था कि आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते चलते ही हम शूट कर लेंगे। बिल्कुल आपको ऐसे नेचुरल दिखाना कि आप आपस में मस्ती कर रहे हैं, बस इतना सा डायरेक्शन था लोगों के पास, और पूरा गाना मुंबई की सड़कों पर शूट कर दिया गया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे संतोष कुमार जी की, रिमझिम गिरे सावन। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पर, और हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग उस्मान खान और राम नरेश जी की फरमाइश पर, एकदम नया नवेला गाना, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आखिरी फरमाइश को लेकर के, और आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस को भी देखेंगे। उन्नति जी, भूतों के बारे में आप ही बता सकती हैं क्योंकि सस्पेंड कहानियां आप ही लेकर आती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बताएंगे लेकिन आज नहीं, ये राज हम किसी और दिन खोलेंगे कि भूत हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं। बताते हैं बस थोड़ा इंतजार कीजिए।

हां जी, और ये थी हमारी फरमाइश उस्मान खान और राम नरेश जी की तरफ से, और हमने आपको सुनाया कह दूं तुम्हें, और ये हमारे शो की आखिरी फरमाइश, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना महेंद्र जी की फरमाइश। और महेंद्र जी जो आप कह रहे थे कि आगे से कभी कॉल नहीं करेंगे क्योंकि ऑडियर ले लिया गया था, फिलहाल आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। और आप सुन रहे थे कॉल ट्यून गोदा विद राजनती, सैटरडे का स्पेशल वाला सॉन्ग आखिरी फरमाइश, आप सभी को डेडिकेटेड मेरी तरफ से, जिन्होंने भी फरमाइश नहीं की है ना।

जी लिख रही है सुपर से भी ऊपर प्रोग्राम रति मैम, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मरने के बाद कफन सफ़ेद होता है, हमारी आत्मा वही सफ़ेद कपड़ा धारण करती है जो हमें भूत बन के डराती है। और ये लॉजिकल आंसर दिया हमारे नागेश्वर जी ने। फिलहाल इसकी इन्वेंशन हुआ था किसी बॉलीवुड फिल्म से, बताएंगे, लेकिन आज नहीं किसी और दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260960।

0: 81 9 81 9 7 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
6: नाउ लिसनिंग ज्ञानस्थली 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और जैसा कि हर रोज गोधूली में एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में हम जानते हैं, जिनके काम को जानते हैं, और उनसे न जाने कितनी सारी चीजों को समझने को और सीखने को मिलता है। पर आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो कई मानों में स्पेशल है। जी हाँ, वो अक्सर आपके अखबार की हेडलाइंस में आप उनको देखते हैं, उनका नाम काफी आप सुना करते हैं, अक्सर सेवा कार्यों में भी आप उनको आगे पाते हैं, और बेहद उम्दा अखलाक है। जी हाँ, हस्पेंस आपसे क्रिएट नहीं करेंगे, हम सीधे बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेखा शर्मा मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी LVSPG कॉलेज, और साथ ही साथ नगर पालिका गोंडा की स्वच्छता एम्बेसडर हैं। इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर हैं जिला विज्ञान क्लब की। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने शो में। नमस्कार मैम। तो जैसा कि अभी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आपके काम तो देखिए अखबार ही बोल देते हैं, और आपका ऐसा इतना नाम है कि लगभग हर गोंडावासी जानता है आपको, जो भी स्पेशली पढ़ाई के क्षेत्र में है, विज्ञान से जुड़ा तो हर शख्स जानता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा पहले आपके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में हर इंसान नहीं जानता है, और हमारा उद्देश्य है कि हम जीरो से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका बचपना कैसा रहा।
7: जी, मेरी पैदाइश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई, और मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ही बीहड़ इलाके, बहुत ही पिछड़े इलाके से है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाली लेडी और इतने पिछड़े क्षेत्र से वो आ सकती है। मैं अपने बगल पड़ोसी जनपद बहराइच डिस्ट्रिक्ट के, आपने नाम सुना होगा, कतरनिया घाट सेंचुरी, जहां लोग टाइगर देखने जाते हैं, जंगली जानवरों को देखने जाते हैं, जहां जंगली फ्लोरा और फाउना को संरक्षण दिया जाता है, आज के 40 साल पहले मैं वहां, मेरे पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मैंने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई स्कूल तक का एजुकेशन वहीं से प्राप्त किया है। और जैसा मुझे आप आते हुए हर्ष हो रहा है कि आज मैं वहाँ से निकलकर आपके पास तक पहुँच गई हूँ और आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका बचपन कहाँ बीता। और मैं अपने जाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और मैं 6 भाई बहन थे हम, बड़ा भाई और छोटा भाई, बीच में हम 4 बहनें थे। मेरे पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट टाइप के और धार्मिक व्यक्ति थे, तो कभी भी उनकी एक आदत थी कि जो भी वो कमाते थे वो खर्च कर देते थे, चाहे अपने परिवार पर और चाहे किसी नीडी व्यक्ति की सहायता में। अक्सर मम्मी से मैं पापा के बीच में सुना करती थी, दोनों के बीच में कभी कभी मतभेद होता था कि 4 बेटियां हैं और आप कुछ भी बैंक में जमा नहीं करते हैं और कैसे इनकी शादियाँ होंगी। मेरा भाई पिताजी ये कहते थे कि सब ऊपर वाला करता है, सबको ऊपर वाले ने भेजा है और सबकी व्यवस्था वही करता है। और पिताजी डरते थे समाज से, क्योंकि उस समय कोई भी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता था। और मैं तो ऐसी जगह से थी जहां लोगों ने ट्रेन नहीं देखा था, बहुत से लोगों ने तो ट्रेन भी नहीं देखा था। और जब आज कतरनिया घाट सेंचुरी या आप घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ का पिछड़ापन दिखाई देगा, और मैं 40 साल पहले की बात कह रही हूँ,
6: बहुत फर्क होगा।
7: मेरे भाई ने मम्मी को समझाया कि मम्मी, एक ही चीज़ है जो सबके लिए दहेज का काम करेगी, वो है तालीम, वो है शिक्षा, तुम मेरी सब बहनों को पढ़ा दो। तो मम्मी के मन में ये बात घर कर गई और मम्मी ने सोचा कि नहीं, मैं सभी बच्चियों को अपने पढ़ाऊंगी। और मोहल्ले के सभी बच्चियों को मम्मी ने इकट्ठा किया। हम बिछिया, एक लास्ट रेलवे स्टेशन भारत का हुआ करता था, तो वहाँ ही हम रहते थे। और मम्मी ने पूरे मोहल्ले की बच्चियों को इकट्ठा किया और गिरजापुरी कॉलोनी, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है कैलाशपुरी ब्रिज बन रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना। और उसी समय की बात है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए वहाँ जो गवर्नमेंट थी उसने एक कॉलोनी बनाई और एक स्कूल बनाया लोगों को शिक्षा देने के लिए, और उसी का फ़ायदा मुझे भी मिल पाया। मेरे पिताजी पहले प्रतापगढ़ में थे और बाद में उन्होंने वहाँ जा कर के अपनी क्लिनिक खोली थी। तो पी ने सभी से ये कहा कि देखो, बच्चियाँ हैं हम लोगों की, हमारे पास दहेज का पैसा नहीं है कि हम शादी के समय बहुत दहेज दे सकेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम अपनी बच्चियों को तालीम दे दें, शिक्षा दे दें और वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएं। और मम्मी मेरी सभी घर जाके यही समझाती थी कि किसी को खाना अगर परोसो और बिल्कुल बेकार से परोस दो तो उसकी भूख 2 रोटी कम हो जाएगी, और अगर बहुत सजा के तुमने थाली परोसी है तो 1 रोटी वो ज़्यादा खा लेगा। इसी तरह अपनी बच्ची के व्यक्तित्व को निखार के ससुराल भेजोगी तो फिर वो वहाँ सम्मानित होगी और उसको सभी लोग प्यार करेंगे, वो अपने पैर पर खड़ी होगी, वो कुछ करने लायक बन जाएगी। और मम्मी अक्सर कहा करती थी कि अगर भगवान को दहेज से बचाना होगा तो 2 ही काम भगवान करेंगे, या तो जंगली जानवर खा जाएगा तो भी मुक्ति पा जाएंगे, और अगर बच गई तो कुछ नाम कर लेगी।
6: क्या बात है।
7: तो ऐसे ही हमारी 4 बहनें सभी अपने पैर पर खड़े हुए। मेरी बड़ी दीदी बंगलौर में रहती हैं, जिन्होंने एक भी दिन क्लास में कैसे बैठते हैं नहीं जाना, और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने डॉक्टरेट किया, घर ही में रहकर पढ़ा। और मेरी सेकंड दीदी जो हैं, उनके हस्बैंड पीसीएस अधिकारी थे, तो उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण कहीं भी नौकरी नहीं की। तीसरे नंबर पर मैं थी और मैं आपके सामने हूँ, एलबीएस की सेवा शिक्षिका के रूप में कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन बनारस में है, जो जूनियर हाई स्कूल में है। तो इस तरह सभी भाई बहनों को, मेरे बड़े भैया वन क्षेत्र अधिकारी रहे और छोटा भाई मेरा हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो इतने पिछड़े इलाके में हमने शिक्षा प्राप्त किया। जब हम नाइन्थ में आए तो वहाँ पर साइंस और आर्ट लिया जाता था। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, साइंस साइड पढ़ो, और बचपन से मोटिवेट करती थी मेरी मम्मी कि हर एक कंपटीशन में भाग लो। तो घर का माहौल बहुत स्थान रखता है आपके व्यक्तित्व के निखार में। लोग सोचते हैं कि अच्छे स्कूलों में हम एडमिशन करा देंगे बच्चे का, उसके बाद मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती है। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे आपके धरोहर हैं। अगर आप उनके साथ समय नहीं देंगे, स्कूल और घर का माहौल या घर का कंट्रीब्यूशन, माँ बाप का सहयोग और स्कूल में शिक्षक का सहयोग, ये रथ के दो पहिए की तरह है। अगर दोनों जगह सपोर्ट मिलता है अच्छा, तभी बच्चे का विकास होता है। और हमारे घर में मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। मेरी माँ बहुत ही डायनेमिक थी, मेरे भैया हमारे मोटिवेटर हुआ करते थे। और एक रोचक बात बताने में आपको मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कक्षा 6 में हमने पहली बार ABCD सीखा था, क्योंकि कक्षा 5 तक हमें अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल में नहीं सिखाया गया था। जब हम ABCD सीखने लगे तो मेरी मम्मी को अक्षर का ज्ञान था। मम्मी, माँ का क्या रोल है बताना चाहती हूँ। मम्मी मेरे साथ ABCD सीखने लगी, हम बहनों के साथ। और चूंकि उनका माइंड तो मुझसे परिपक्व था, हम तो बच्चे थे, वो जल्दी याद कर लेती थी और धीरे धीरे वर्ड याद करने लगी और धीरे धीरे सेंटेंस बनाने लगी। और आपको आश्चर्य होगा, मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई और अंग्रेजी का पेपर पढ़ने लगी थी। और जब वो रोटी बनाती थी तो हम लोगों को बैठा देती थी जमीन में बोरे पर, और फिर कहती थी कि बेटा देखो, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, और सभी लोग रटते हैं, देखते हैं जब तक ये चूल्हे में एक रोटी सिकती है तब तक हमको ये स्पेलिंग याद होती है कि नहीं। और ऐसे ही हमने पूरा मतलब मम्मी से ही, मम्मी के साथ अंग्रेजी पढ़ा। तो ये एक बहुत रोचक बात थी कि माँ का क्या कंट्रीब्यूशन है। और मेरी मम्मी कभी साइंस नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ी थी, लेकिन स्कूल से ज़्यादा अनुशासन घर का था। 7 बजे लालटेन जलाकर हम लोग मेज कुर्सी पर बैठ जाते थे और मेरी मम्मी किचन में काम करती रहती थी, लेकिन निगाहें उसकी सदैव देखती रहती थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर 5 मिनट में हमारा पन्ना नहीं पलटा तो उधर से आवाज़ आ जाती थी कि तुमने पन्ना ही नहीं पलटा, इतनी देर हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से मैं समाज में एक शिक्षा देना चाहती हूँ, प्रेरणा देना चाहती हूँ कि कोई भी माँ ये ना सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो हम उसको क्या पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ते हुए देख सकते हैं, आप उसके साथ बैठ सकते हैं, आप उसके साथ एक दोस्ताना संबंध बना सकते हैं जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपसे शेयर करे। तो मैंने बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से पढ़ाई किया, फिर मैंने इंटर GGIC अयोध्या फैजाबाद से किया, और फैजाबाद से ही मैंने BSc MSc किया। PhD की डिग्री मैंने MLKPG कॉलेज से प्राप्त किया। और शिक्षिका के रूप में मैं 1991 से मैं अपने महाविद्यालय की सेवा कर रही हूँ। साथ ही साथ क्योंकि साइंस की मैं स्टूडेंट थी और साइंस की ही टीचर बन गई, तो मुझे लगा कि समाज में जन जन के लिए साइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ नहीं चलेंगे, इसको नहीं अपनाएंगे, इसे नहीं समझेंगे, तो शायद विकास के दौर में हम बहुत पीछे हो जाएंगे।
6: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम वक्त के साथ चलेंगे नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी जैसे कि आप एक शिक्षिका के रूप में LBS PG कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे थे, क्या आपका ये एम्बिशन था या आपकी माता का एम्बिशन था, या बाय डिफॉल्ट आप इसमें आ गए?
7: नहीं, मेरे भैया चाहते थे कि मैं UPSC की तैयारी करूं, और मैंने 5-6 महीना तैयारी किया भी, और 1996 और 7 में मैंने PES की परीक्षा भी दी थी, प्री और मेंस भी क्वालिफाई किया था। लेकिन इंटरव्यू के समय मैं डिलीवरी केस था मेरा, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो भाई मेरा चाहता था मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी ये चाहती थी कि नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, पढ़ लिख गई हो, और तुम समाज को एक दिशा दो। तो समाज को दिशा देने के लिए मुझे ऐसा लगा कि टीचर होना सबसे अच्छा है, और मुझे लगता है जो लोग पिछले जन्म में बहुत पुण्य करते हैं उन्हीं को ऊपर वाला शिक्षक बनाता है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक चाहे तो देश उन्नति के शिखर पर पहुंच जाए, और शिक्षक चाहे तो देश गर्त में चला जाएगा।
6: बिल्कुल, तो अभी कितना सेटिस्फाइड हैं अभी के काम से, पीसीएस या प्रशासनिक सेवा में?
7: मुझे तो लगता है कि मैं पीसीएस अधिकारी नहीं बनी तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने बहुतों को बनाया। मेरे बहुत से शिष्य प्रक सेवा में हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई शिष्य मेरा मुझे ज़रूर मिल जाता है, और विविधता के रूप में, कहीं मेरे शिष्य साइंटिस्ट हैं तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखती हूँ, कहीं टीचर के रूप में देखती हूँ। विविध रूपों में मैं अपने बच्चों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और टीचिंग मेरा पैशन है।
6: क्या बात है, यानी आप एक सुनार हैं जो सोने को गढ़ते हैं और उसकी कीमत फिर तय होती है, अच्छे से अच्छे उसको तराशते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर खुद नहीं है आप तो सोना, सुनार जो है वो कई सोने बनाता है, तो वही वाला आपका भी काम है कि बच्चों के जीवन को तराशना, उनको एक दिशा देना, फिर वो कामयाबी का जब शिखर चूम लेते हैं तो उसका एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता होगा कि हाँ यही तो हम चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात आपने कही। बात हुई शिक्षिका के रूप में, एक लाइफ को जब आप देखते हैं कि आजकल अगर समाज की बात किया जाए तो प्रशासनिक सेवा हो गया या इंजीनियर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, तीन ऐसी लाइन्स हैं जहां ज़्यादा पेरेंट्स प्रेशराइज भी करते हैं या कहते हैं कि ये करो। आपको क्या लगता है इसके अलावा भी जो बाकी डेजिग्नेशंस होते हैं या प्रोफेशंस होते हैं उसमें कितना जाना सक्सेस होता है या नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को देखा है कि प्रेशर इसी चीज़ का दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि रुचि उनकी अलग होती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर ही बन जाए। बन भी गया तो शायद उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कभी मन ही नहीं था। इसको लेके आपका क्या मानना है?
7: मैं तो यही कहूँगी कि जो छात्र है या छात्रा, स्टूडेंट जो चाहता है, जिधर की ओर बढ़ना चाहता है, पेरेंट्स को और टीचर्स को सपोर्ट उसी दिशा में करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन ही उसी क्षेत्र में जाने के लिए बना है। और अगर हम उसे डाइवर्ट कर देते हैं तो शायद वो अपनी बुलंदियों को कभी नहीं छू पाता है, उसका काम अलग हो जाता है और पैशन अलग हो जाता है।
6: ठीक है मैम, ये बात हमने समझ ली कि बाकी प्रोफेशंस के लिए, मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहता है तो आपको क्या लगता है फिर भी बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए क्या? क्योंकि एक अच्छा इंसान भी बनना होता है, तो बेसिक पढ़ाई कितना माने रखती है किसी भी काम को करने में?
7: मुझे तो लगता है कि शिक्षा ही हमारे जीवन का निर्माण करती है, और बिना शिक्षा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम बिजनेस में भी जा रहे हैं तो अगर हमने शिक्षा प्राप्त कर रखी है तो बिजनेस को भी हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से उसे करेंगे, एक सिस्टम से करेंगे, तो शायद बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के बिना तो किसी भी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता। और शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि कक्षीय ज्ञान, हम जीवन की शिक्षा है। बहुत से लोग पांचवी पास हैं लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया, बिल्कुल। तो मैं तो उनको भी मानती हूँ कि वो अपने क्षेत्र के हैं, उसके वो मतलब वो शिक्षित है उस क्षेत्र में, मास्टर है।
6: सही बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कम पढ़े लिखे या उस तरह से पढ़े भी नहीं होते, जैसे कि आपने अपनी माताजी का एग्जांपल दिया।
7: जी जी,
6: वो कक्षा तो कभी नहीं गई लेकिन सोचिए कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगी।
7: हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ती थी और 17-18 पोयम उनको याद हो गई थी।
6: अब बताइए, ये एफर्ट ही है और क्या है कि रुचि है, एफर्ट लगाना होता है और वो चीजें कामयाब आप हो जाते हैं। बिल्कुल,
7: मतलब जीवन ही एक पाठशाला है, और वो कहती थी कि हर पल व्यक्ति सीखता रहता है, और जब तक हम परमानेंट ना सो जाएं मृत्यु के पहले तक, तब तक हमको सीखते रहना चाहिए, स्टूडेंट बनना चाहिए।
6: बिल्कुल,
7: आज भी मैं टीचर के रूप में हूँ लेकिन फिर भी कहीं अगर मेरा कोई शिष्य या कहीं भी कोई व्यक्ति मुझसे कम उम्र का है और ज़्यादा ज्ञान रखता है तो मैं तुरंत कहती हूँ कि मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ और मुझे ये बता दीजिए।
6: ये एक अच्छा अप्रोच होता है लर्निंग का, और शायद लर्निंग प्रोसेस जो बताया आपने कि ये लाइफ टाइम चलता है। बिल्कुल, सो अभी आपसे चूंकि बातचीत इतनी अच्छी हो रही है और आपकी स्टोरी सुनने के बाद हम इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और न जाने हमारे कितने श्रोतागण जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होंगे। लेकिन इसी बीच चूंकि अभी एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर रेखा शर्मा मैम से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी LBSPG कॉलेज। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
8: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
9: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे बीच में डॉक्टर रेखा शर्मा मैम मौजूद हैं, जो कि बातचीत का दौर हमारा उनसे जारी है। अभी बात हुई आपके जीवन के बारे में, आपने अपनी माँ के बारे में बताया, बड़े भाई बड़ी बहन के बारे में बताया। एक परिवार का जो माहौल होता है वो सच में अगर ऐसा है तो ये आपने जैसा कि बताया कि आप इस इलाके में थी जहाँ पे लोगों ने ट्रेन तक नहीं देखी थी, और अगर आप आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं, इतने बड़े डिग्री कॉलेज में आप सेवारत हैं, तो जाहिर सी बात है ये माहौल से और इच्छा शक्ति से और फैमिली सपोर्ट से मुमकिन होता है। अब बात करते हैं, चूँकि आप हमने बताया था अपने श्रोताओं के स्टार्टिंग में कि आप जिला विज्ञान क्लब की कोऑर्डिनेटर हैं, इसके बारे में बताया।
1: देखिए अभी पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आज का युग पूर्णतः साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी केवल शिक्षक के लिए और साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए नहीं ज़रूरी है, जन जन के लिए वैज्ञानिक चेतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक किसान एक मजदूर जिसने कभी अक्षर का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उसके हाथ में भी आप मोबाइल रूपी विज्ञान देखते हैं। तो आज हम चारों ओर से विज्ञान के इक्विपमेंट से हुए हैं। अगर किचन को देखें तो देखिए गैस सिलेंडर से हम आज गैस से खाना बना रहे हैं। तो यदि हम सावधानियों को बरतना नहीं जानेंगे, उसके नियम को हम नहीं समझेंगे और साइंटिफिक टेंपर को डेवलप नहीं करेंगे तो हम विकास की दौड़ में भी पीछे रहेंगे और बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजडी के भी हम शिकार हो सकते हैं। आपने सुना होगा भोपाल में गैस ट्रेजडी हुई थी, मेथिल आइसोसाइनाइड फैक्ट्री से रिलीज हुई थी और हजारों लोग मारे गए थे। अगर साइंटिफिक टेंपर को सोच रखा होता लोगों ने तो इतनी मौत ना हुई होती, क्योंकि जो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस फैक्ट्री से रिलीज हुई तो लोगों को जमीन में लेट जाना चाहिए था, क्योंकि भारी गैसें नीचे होती हैं, हल्की गैसें ऊपर होती हैं और वो गैस गर्म थी, गर्म गैस ऊपर की ओर जाती है। लोगों ने गलती क्या की कि अपने घर की छत पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़कर देख रहे थे कि फैक्ट्री से रिलीज हुई, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी ग्रिप में आ गए। ये घटना ये साफ बताती है कि समाज का जो सोचने का तरीका है उसे बदलना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक चिंतन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उत्प्रेरित करना और जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे 2002 में डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के कोऑर्डिनेटर के रूप में नॉमिनेट किया था। और डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब एक गवर्नमेंट का क्लब होता है। इस क्लब के मुखिया अध्यक्ष जिला अधिकारी महोदय होते हैं, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, नोडल अधिकारी के रूप में जिला विकास अधिकारी देखते हैं, सचिव इसके जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं और मैंने कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ। और जितने जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं इसके मेंबर होते हैं।
0: जी, तो आपने जैसा कि बताया कि जिला विज्ञान क्लब है तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है, तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जिले में कोई इनोवेशन करता है, कोई अच्छा काम करता है साइंस के क्षेत्र में, तो क्या उसको प्रमोट करने का काम या उसको रिसर्च में हेल्प करने का काम भी करता है?
1: जी, जिला विज्ञान क्लब का उद्देश्य है जन जन को वैज्ञानिक चेतना वैज्ञानिक चिंतन के साथ जोड़ना। इसमें स्टूडेंट भी आते हैं, किसान भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बेरोजगार भी आते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो लोग जिनके जिनका ब्रेन तेज है लेकिन उनको फॉर्म नहीं मिला, वो नवाचार कर सकते हैं, कुछ नया अन्वेषण कर सकते हैं, उन सभी को हम मुख्य धारा से जोड़ते हुए एक प्लेटफॉर्म दिलाने का प्रयास करते हैं जिससे वो विज्ञान की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके राष्ट्र की सेवा कर सकें।
0: तो इसका कोई एग्जांपल बताइए कि गोंडा से कोई ऐसा इनोवेशन हुआ हो।
1: जी जी, नव अन्वेषण के क्षेत्र में या नवाचार के क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र के नवाचारी होते हैं उनको ढूंढने का काम जिला विज्ञान क्लब करता है, और इस क्लब के माध्यम से हमने जनपद के दर्जनों नवाचार करने वाले, जो असंगठित क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बुद्धि तो थी लेकिन कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिला, और वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ही जो मेरी खोज रही, राम सजीवन विश्वकर्मा जी हैं, इनका नाम मेरे ख्याल से बहुत लोग जानते होंगे। और राम सजीवन विश्वकर्मा जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे इनोवेटर हैं, और अब तो सोचिए वो खुद आत्मनिर्भर बने, और उनके यहाँ करीबन 20 से 25 वर्कर काम करते हैं। आए दिन वो नए नए आइडियाज के साथ कुछ नया इक्विपमेंट बनाते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक स्प्रिंकलर बनाया, और स्प्रिंकलर से कम पानी में ज़्यादा दूर तक सिंचाई हम कर सकते हैं। जैसे बारिश में आप देखते होंगे, बारिश के जस्ट बाद पौधे बिल्कुल ऐसा दिखता है कि चमकते हुए दिखते हैं और प्रसन्न हो गए हैं, जैसे उन्हें नहला दिया गया,
0: नहला दिया।
1: तो स्प्रिंकलर के माध्यम से जब हम सिंचाई करते हैं तो पौधों को वही महसूस होता है कि जैसे नेचुरल रेन हमारे ऊपर आ रही है, बारिश हो रही है। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक बनाया था स्प्रिंकलर, जिसमें कम पानी और ज़्यादा दूर तक सिंचाई हो सके, और वो राष्ट्रपति की बगिया में लगा है उनका स्प्रिंकलर। ये गोंडा जनपद के डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब की उपलब्धि है। इसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि छात्र छात्राओं के लिए डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से हम प्रयास करते रहे कि बच्चों का, सभी का वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक चिंतन उनका मैं बढ़ाऊं और विज्ञान की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करूं। संदीप कुमार द्विवेदी जी हमारे गोंडा जिले रहने वाले हैं। हमारे गोंडा जनपद में उन्होंने एक साइंटिफिक प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, अल्टरनेटिव ह्यूमन फूड के रूप में साइनोडॉन डिक्टिलॉन, यानी दूरबा घास वैकल्पिक भोजन के रूप में। उस बच्चे ने यह शोध किया था कि राणा प्रताप 1.5 से 2 महीने जंगलों में रहे और घास की रोटी खाकर रहे, लेकिन उनकी ताकत में कोई कमी नहीं आई। तो क्या कभी आवश्यकता आने पर हम दूरबा घास को खाने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं? इस पर उसने काम किया था और हम लोगों ने उसका मार्गदर्शन किया था। हकीम के पास उसे भेजा, डॉक्टर के पास भेजा, पंडित के पास भेजा, विभिन्न होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेजा, और सभी से उस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कि दूरबा घास का क्या उपयोग है। तो उसके इस रिसर्च ने, जो उसका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ, उसने लड्डू बनाए थे दूरबा घास के, उसने बहुत सारे अच्छी अच्छी डिशेस तैयार की थी, और ये बताया था कि दूरबा घास हाईली न्यूट्रिटिव है, और उसका प्रोजेक्ट नेशनल लेवल तक सेलेक्ट हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस में, जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने शोध को हैं और बताते हैं। हमारे जनपद का संदीप कुमार द्विवेदी इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए भी चयनित हुआ था, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश से 2 बच्चे चयनित होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के पे भी एक परीक्षा कराई गई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी गोंडा जनपद बहुत पिछड़ा था पहले, और 2nd प्राइज प्राप्त करने में हमारा क्लब सफल रहा था। इसी तरह राजकुमार मिश्रा जी हैं परसपुर में, उन्होंने एक कबाड़ में खड़ी हुई गाड़ी को उपयोग में लाया और उस पर धान कूटने वाली मशीन, धान वो चावल को साफ करने वाली मशीन, ऐसे बहुत सारी मशीनें उस पर उन्होंने लगाया, और घर घर जाकर वो, मतलब किसी को मिल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो घर पर आकर सेवा देते हैं। तो ऐसे इनोवेटर्स को ढूंढने का प्रयास जिला विज्ञान क्लब करता है।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और 3 ऐसे शख्सियत का आपने नाम बताया जो नेशनल लेवल पे जिनकी इनोवेशंस पहुंचे हैं और उसको यूज भी किया जा रहा, सराहा जा रहा, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बात रही, एक लफ्ज मैं आपसे इस्तेमाल करना चाहूंगा, जादूगर। ठीक है, आपने कहा क्लब काम करता है स्टूडेंट्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम है। विज्ञान से चूंकि जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें डेली लाइफ में होती है, और लोगों के बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जादूगर को लेके, या तांत्रिक को लेके, या बाबाओं को लेके, उसके विषय में साइंस का क्या रोल है और आप कैसे लोगों को जागरूक करती हैं?
1: देखिए, साइंस बिहाइंड मिरेकल, हर एक चमत्कार के पीछे कहीं ना कहीं साइंस का कोई नियम जरूर होता है। डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से मैंने समाज से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता या ढोंगी बाबा लोग जो लोगों को ठग लेते हैं, उनका धन ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बचाने का प्रयास किया है और मोट एरियाज में जाके ऐसे कार्यक्रम मैंने कराए हैं। आपने नरेंद्र नायक जी का नाम सुना होगा और देश की बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, जो दक्षिणी भारत में किसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्होंने कहीं यात्रा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि किसी लड़की का बाल पकड़ के और लोग बार बार आग की ओर उसे कर रहे हो और पूछ रहे हैं, बताओ तुम कौन हो, कौन सी चुड़ैल पकड़ी है ये। तो उस दिन उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि नहीं ऐसा मत करो, इसको ब्रेन में प्रॉब्लम है, कोई चुड़ैल इसके अंदर नहीं है, लेकिन लोगों ने नहीं माना और उसके साथ जो भी जितना प्रताड़ित किया कि उसकी शायद डेथ हो गई थी। उसी दिन नरेंद्र नायक जी ने सोच लिया कि मुझे केवल मेडिकल के छात्रों को ही नहीं पढ़ाना है, मुझे समाज को पढ़ाना है, और उन्होंने पूरे विश्व में साइंस बिहाइंड मिरेकल का अभियान उठाया और उनको मैंने अपने गोंडा जनपद में बुलाया था। जिला प्रशासन मुझे सदैव इस काम के लिए मदद करता रहा, मेरे कॉलेज के प्राचार्य, मेरे साथ पढ़ाने वाले सहयोगी, सभी ने मेरा सपोर्ट किया। जितने भी स्कूल्स होते हैं वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, सभी ने मिल करके मेरे साथ काम किया और इस काम को सराहा, इसीलिए हम बहुत बृहद स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों को कर सके। जैसे तो अगर हम विजुअल होते तो हम आपको भी दिखा सकते थे कि हम खौलती कढ़ाई में बिना किसी चमचे के हाथ से पूड़ियों को मैं सेंक सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, या आग पर चल के दिखा सकती हूँ। तो इन सभी के पीछे विज्ञान का कहीं ना कहीं कोई नियम छिपा होता है। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के बहुत से ऐसे प्रोग्राम कराए जिस ग्रामीणों को बता सकूँ कि ये कोई चमत्कार नहीं है, दुनिया में कोई चमत्कार ऐसे नहीं कर सकता है, जो भी करता है वो उसके हाथ की सफाई होती है या उसके पीछे विज्ञान का कोई ना कोई नियम होता है।
0: तो जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया है कि अंगारों पे जो लोग चलते हैं
1: जी,
0: वो उसमें, या आपने खोलते हुए पानी में पूड़ी छानने का एक एग्जांपल दिया
1: जी, जी,
0: उसके पीछे का लॉजिक बताइए क्या है।
1: जी देखिए, उसमें जो लोग ऐसा करके चमत्कार दिखाते हैं वो क्या करते हैं, सरसों का तेल लेते हैं और सरसों के तेल में नींबू का रस मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन भाग तेल लिया तो एक भाग पानी ले, नींबू का पानी ले लिया
0: जी,
1: और दोनों को मिक्सअप कर दिया। अब दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है, तेल बाद में गर्म होगा और नींबू पहले गर्म हो जाएगा, जल्दी खोलने लगेगा। तो वो उतना गर्म भी नहीं हुआ लेकिन ऊपर बुलबुले दिखाई देने लगेंगे क्योंकि नींबू के रस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो वो जल्दी खोलने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। और करते क्या है कि सामने कढ़ाई रखते हैं और नीचे ठंडा तेल रखते हैं अपने बगल, और ठंडे तेल में अपनी उंगलियों को डुबाए रखते हैं, पब्लिक सामने होती है, तो वो क्या करते हैं अपनी बातों में लोगों को उलझाए रखते हैं और ठंडे तेल से अपना हाथ निकालते हैं, स्पीड में पूड़ी को खोलते कढ़ाई में पलट देते हैं। तो जब तक हम ठंडे तेल का, चूंकि हमारी उंगलियों पर एक लेप लगा हुआ है
0: बिल्कुल,
1: और जब तक हम उसमें जाते हैं और एक पूड़ी को पलटते हैं और एक हाथ से दूसरी पूड़ी डाल देते हैं, तो दूसरी पूड़ी को बनाने के लिए भी तेल को अपने टेम्परेचर खर्च होता है, तो टेम्परेचर उस समय डाउन हो जाता है थोड़ा। तो ये केवल हाथ की सफाई।
0: क्या बात है, मतलब इतने ऐसा इसके पीछे साइंस था। और आपने बताया अक्सर ऐसे जादू दिखाए जाते हैं, एक बहुत फेमस है ये अंगारे पे चलने वाला
1: जी जी,
0: इसके पीछे का रीजन बताइए।
1: देखिए जो अंगारे पे चलने वाली बात है उसमें ये भी हमने यहाँ जिला प्रशासन की मदद से इस कार्यक्रम को बृहद स्तर पर कराया था, ट्रेनिंग दिया था मैंने करीबन 80 बच्चों को।
0: ओके,
1: रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं तैयार कर रही थी कि गांव-गांव जाके बच्चे ऐसा संदेश दें जिससे अंधविश्वास दूर हो। तो इसमें होता क्या है कि हम 1 से 1.5 क्विंटल लकड़ी को जलाते हैं और कोयला बना देते हैं, जब वो कोयले में हो जाता है और दहकने लगता है, उस पर राख नहीं होनी चाहिए, दहकता हुआ हो, तो जब थोड़ा सा उसका क्या टेम्परेचर डाउन होता है और पंखे से दोनों ओर से हम हाँकते रहते हैं उसे कि उस पर राख ना जमने पाए। अब ऐसे में हम केवल तीन कदम रखते हैं, 1, 2 and 3 के बाद 4 हम पार कर जाते हैं। होता क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और दहकते हुए कोयले का 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जब हम पैर रखते हैं, तुरंत दूसरा पैर रख देते हैं, पहला पैर रखा और तुरंत ही दूसरा पैर रख देते हैं, 1/10 सेकंड के अंदर दूसरा पैर रख देते हैं, फिर तीसरा पैर रखते हैं, तो हमारा जो ये पैर का तलवा है वहाँ जब तक वो हीट जलाना चाहती है, तो सबसे पहले जो हमारी मतलब स्किन है, हमारे पैर की जो स्किन है वहाँ पर जल, चूंकि नीचे का टेम्परेचर हाई है तो वो टेम्परेचर उसको प्रभावित करेगा, तो तुरंत भाप बनेगी, तो वो भाप इंसुलेटर का काम करने लगती है कुछ क्षण के लिए बस। ज्यादा देर रखेंगे तो जल ही जाएंगे। हम पैर बदलते रहते हैं और ऐसा ही ढोंगी बाबा लोग करते हैं, और जबकि इसके पीछे ये विज्ञान का नियम है। चूंकि मैं फिजिक्स की नहीं हूँ, थोड़ा भूल रही हूँ, मुझे लगता है ये फ्रेडरिक का नियम था जैसा बताया गया।
0: क्या बात है, मतलब आपने दो ऐसी बातों को बताया जो अक्सर जादूगर दिखाते हैं या फिर तांत्रिक या बाबा लोग ऐसा करके दिखाते हैं, और आपने उसका रीजन बताया कि क्या है। और देखिए ना, डेली लाइफ में कितना साइंस काम आता है, ये अभी आपकी बातों से समझ में आ रहा है। अभी चूंकि वक्त हो चला एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, इसके बाद आते हैं वापस से आपके बातचीत का दौर जारी रखेंगे आपसे। तब तक के लिए अपने श्रोताओं से कहेंगे कि सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: अरे सुना
5: क्या,
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ,
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: अरे रे रे रे रे, घबराइए नहीं
7: डॉक्टर साहब,
6: आज मैं आपको ऐसी दवा दूंगी कि आप फिर से जवान हो जाएंगे।
7: ऐसी दवा मत दीजिएगा डॉक्टर साहब, वरना मेरी पेंशन बंद हो जाएगी।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत जारी है डॉक्टर रेखा शर्मा मैम से। मैम, आपने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, उसके बाद हमने जाना साइंस के बारे में, आपका विज्ञान क्लब के बारे में। अभी चूंकि हमने अपने श्रोताओं से स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था, तो मैंने बताया था कि आप गोंडा नगर पालिका की स्वच्छता एम्बेसडर भी हैं, इसको लेके बताइए आप।
1: मैं बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते मैंने बहुत से प्रोग्राम स्वच्छता पर भी कराए, और आपको पता होगा कि 3-4 साल पहले हमारा गोंडा जनपद निचले पायदान पर था।
0: जी, देश के सबसे नीचे।
1: सबसे निचले पायदान पर था, मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद फिर स्वच्छता पर आधारित मैंने कई कार्यक्रम जिला प्रशासन की मदद से और बहुत से विभाग जब कराते थे स्वच्छता का कार्यक्रम, तो भी मुझे हमारे क्लब का सहयोग लेते थे, और ऐसा कार्यक्रम हमने कई किया है स्वच्छता के ऊपर। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि ये सगरा तालाब आप देख रहे हैं,
0: जी जी,
1: इस तालाब की भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए कि हमको कचरा फेंकने का ये सिंक नहीं बना देना है सगरा तालाब को, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें बचा कर रखना है। दीपदान एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसी के बाद मुझे नगर पालिका का ये स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया था।
0: क्या बात है, और ये स्वच्छता भी एक समाज सेवा है। समाज सेवा से याद आया, कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपको अपनी मम्मी कहते हैं।
1: जी जी जी, बहुत से लोग कहते हैं, और मैंने जन्म तो केवल दो बच्चों को दिया है
0: जी,
1: लेकिन माँ मैं पता नहीं हजारों बच्चों की हूँ। बहुत से बच्चे मुझे टीचर ना कह करके माँ कहना ही पसंद करते हैं, या गुरुदेव कह के मुझे पुकारते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में जन्म दो बार होता है, शारीरिक जन्म एक बार होता है और एक बार बौद्धिक जन्म होता है। शारीरिक जन्म माँ बाप देते हैं और बौद्धिक जन्म गुरु देता है। तो ऐसा गुरु बनने का मुझे ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मौका दिया। बहुत से स्टूडेंट मेरे संपर्क में आए, और मैं ये किसी धर्म के नाम पर नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे किसी को खेलने का पैशन है, किसी को पेंटिंग का पैशन होता है, मुझे नीडी लोगों की सहायता करने का पैशन है। मैं सदैव चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहा है, संसाधन भी है, तो उसकी सहायता करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और ये मैं अपने नाम के लिए नहीं करना चाहती हूँ, ये बस मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत नज़दीक रहती हूँ। फिर
0: क्या बात है, ऐसा भी सुना है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बताते हैं कि आपने उनको स्टार्ट से लेके उनके कामयाब होने तक पूरा का पूरा सपोर्ट किया है।
1: जी जी, करीबन 27-28 बच्चे मेरे घर पर रहे हैं, और मैंने उनको अपने जो दो बच्चे हैं उन्हीं की तरह रखा, कोई डिफ्रेंसिएशन उनके बीच में नहीं किया। और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बने, तब तक मैं उनके लिए माता पिता की तरह उनके साथ लगी रही, क्योंकि मैं भी गुरु भी एक माता पिता के जैसे होते हैं, क्योंकि वो बौद्धिक जन्म देते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हर एक शिक्षक अगर ये सोच ले कि कुछ परिवार को, कुछ बच्चों को अगर हम गोद ले लें, उनके जीवन का निर्माण करें, तो शायद हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे।
0: क्या बात है, बिल्कुल। और ये भी आप बताइए कि जो बच्चे आपने, जिनको रखा था अपने पास में, वो आज जो उस एज में आ गए हैं, या जो जिन्होंने अपने मंजिल को पा लिया है, वो आज क्या क्या कर रहा है?
1: जी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कुछ का उदाहरण देना चाहूंगी
0: जी,
1: क्योंकि एक साथ बहुत से नाम याद नहीं आएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत से बच्चे मेरे जीवन में आए, जैसे एक संजय कुमार मिश्रा बच्चा था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था
0: जी,
1: और वही मेरे जीवन का पहला बच्चा था जिसे मैंने अपने साथ रखा। उसने मुझे एक पत्र लिख के दिया था कि मैं बहुत वीक हूँ पढ़ने में, लेकिन सपना है कुछ करने का। तो मैंने उसको अपने पास रखा था, और उसके अंदर भी, मतलब टीचर ही किसी को नहीं बनाता है, टीचर सिर्फ मार्गदर्शन देता है, कुवत अपने अंदर भी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इंटरेस्ट अपने अंदर भी होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, उस बच्चे को मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, कि अगर मैं सब्जी काट रही होती थी तो वो कहता था, मैम आप सब्जी मत काटिए, मैं सब्जी काटूंगा, और आप मुझे बताइए सोशल फॉरेस्ट्री आ जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, अगर एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाएगी तो क्या लिखूंगा। तो वो हर समय मुझसे जैसे गुरुकुल में पढ़ाई होती होगी प्राचीन काल में, उस तरह उसने पढ़ा मुझसे, और बहुत अच्छे अंक से प्राप्त किया। आज वो किसी फार्मास्यूटिकल में रीजनल मैनेजर से भी शायद ऊपर पद पर है। और जो बच्चा कभी एक, मतलब आर्थिक क्राइसिस को झेल रहा था, आज वो भी मेरी तरह लोगों की बहुत मदद करता है।
0: क्या बात।
1: इसी तरह अभी एक दूसरा बच्चा हमारा दुर्गेश कुमार तिवारी, वो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर सेलेक्ट हुआ है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो, मतलब मेरे संपर्क में आए और आज अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर बैठे हुए हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया भी कि किस तरह बच्चे सक्सेस हुए, एक गुरुकुल की शिक्षा, सही बात है। उस अगर पद्धति को देखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव पद्धति थी सीखने की, सिखाने की, हर वक्त आप हर चीज़ों से सीखते हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज के बारे में भी सुना है, और लगातार टॉपर्स की लिस्ट में
1: जी,
0: सबसे ज्यादा आप ही अपने बच्चों को देते हैं बलरामपुर से।
1: अच्छा अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं, उत्तरौला में मेरा एक मतलब एक स्कूल खोला गया था जिसके मैनेजमेंट में मैं हूँ
0: जी।
1: और क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे, मेरे हस्बैंड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, MSc वहीं से किया था, BSc वहीं से किया था और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मैं क्लब की कोऑर्डिनेटर के रूप में अक्सर जिला प्रशासन DM साहब से मार्गदर्शन लेने मुझे जाना होता था। तो जिला अधिकारी महोदय ने एक बार मुझे कहा कि आप दोनों लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर की नहीं है तो आप दोनों को समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और ये कहा था डॉक्टर MAA खान साहब जो उस समय DM थे। उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम हो और हम तालीम देने के लिए लोगों के लिए प्रयास करेंगे। तो उत्तरौला वो जगह समझ में आई क्योंकि वहाँ के SDM साहब ने ये कहा था कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग व्यापार से जल्दी जुड़ जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए मतलब ये कितना भी पैसा बैंक से निकालते तो अंगूठा लगाते। तो हमने सोचा यही वो जगह है जहाँ हम लोगों को तालीम दें, लोगों को शिक्षा दें। और स्कॉलर एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से वो विद्यालय है, मैं उस विद्यालय की मैनेजर हूँ और असलम शेर खान जी उस विद्यालय के डायरेक्टर हैं और हम पूरे मैनेजमेंट की जो टीम है हमारी सभी लोग सकारात्मक सोचते हैं। मेरे हस्बैंड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के प्रोडक्ट थे तो उन्होंने रूल रेगुलेशन वहाँ से वैसा ही किया और नकल विहीन शिक्षा के लिए मेरा विद्यालय जाना जाता है। और जब से नकल अब नहीं होती है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा में, तब से मेरा विद्यालय प्रतिवर्ष मेरिट लिस्ट में होता है। इस बार हाई स्कूल में हमारे 6 बच्चे 10 टॉपर्स में अपना स्थान बनाने में सफल रहे और इंटरमीडिएट में 10 में से 5 हमारे स्कूल से हैं।
0: क्या बात है, मतलब रिपोर्ट कार्ड तो आपका बहुत इम्प्रेसिव है।
1: जी जी जी। और अभी हमने अपने स्कूल में एक सम्मान समारोह किया था और उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया और सभी पेरेंट्स को हमने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और उन माता पिता के अंदर एक ललक जगाई कि आपका बच्चा हीरा है देश के लिए और इसी तरह उसका सपोर्ट कीजिए, आगे वो देश की सेवा में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: क्या बात है। तो माँ बाप को सम्मानित करना कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना होता है कि आपसे 4 कदम आपका बच्चा आगे जाने वाला है और
1: जी जी।
0: उनको भी खुशी होती है कि हाँ उन्होंने सच में सपोर्ट किया तो उनकी जो सपोर्ट था उसको भी पहचाना जा रहा है
1: जी जी जी।
0: स्कूल के जरिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। एक चीज जो मुझे मैम लगती है बहुत जरूरी, वो होता है आपका डे फ्लो, एक दिन में आप करते क्या क्या है, इस तरह से होता है। और जैसा कि आप स्टूडियो आई थी, आपने बातचीत में कहा था कि आप जब अपना अध्यापन का कार्य कर लेती हैं तो उसके बाद आप खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ ऐसे कामों में लगी रहती हैं जिससे कुछ ना कुछ इनोवेटिव रहता है, सीखने को मिलता है या समाज सेवा रहती है। एक डे फ्लो आपका कैसा है, मैं ये जानना चाहूंगा।
1: जी मैं हूं तो साइंस की और साइंस पर ही जीवन आधारित है हमारा
0: जी।
1: तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और 5 बजे से 6:30 बजे तक फ्रेश होने के बाद मैं और मुझसे जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं सभी हम छत पर जाते हैं और एक साथ करीबन घंटे भर मैं योग सिखाती हूँ सबको, निरोगी हम कैसे रहें और किस योग से कौन सा फ़ायदा होता है, माइंड का कंसंट्रेशन हमारा कैसे बढ़ेगा, हम कैसे अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे, इस तरह उन्हें मैं मार्गदर्शन देती हूँ। और मुझे अपने पिछले 25 साल से याद नहीं है कि कभी मैं दोपहर में सोई। अध्यापन के बाद मैंने यही सोचा कि मैं किसी के काम आऊँ, कहाँ किसको आवश्यकता है, चाहे वो मेरे मोहल्ले की कोई बात हो या मेरे किसी गोंडा जनपद के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति की बात हो, कहीं किसी को मेरे ज्ञान की ज़रूरत है तो उपलब्ध हूँ, कहीं किसी को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है और मेरी हैसियत में वो अगर है तो मैं वो करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जीवन जब तक है, मैं जिंदा जब तक रहूं, तब तक कुछ न कुछ समाज के लिए मैं करती रहूं, सबके लिए करती रहूं, क्योंकि अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, इतनी छोटी सोच किसी की भी नहीं होनी चाहिए। सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा समाज के लिए सोचना शुरू कर दें तो मुझे लगता है समाज से आधी बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी।
0: बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने बोली कि अगर थोड़ा थोड़ा और आदमी सोचने लग जाए और अपने घर से बाहर निकल के लोगों के लिए भी सोचे, तो शायद आपने सही कहा कि आधे से ज्यादा तो बुराई चली जाएगी। और मुझे लगता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं जिसे लोग कहते हैं कि सोसाइटी को पे करना, यानी आपसे आपने जो सोसाइटी से लिया है, जहाँ पे आज स्टैंड करती हैं, कहीं ना कहीं उसको पे करने की आप कोशिश करती हैं कि जितना हो सके सोसाइटी को बेहतर किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। और आपसे लगातार बातचीत के दौरान हर एक ऐसे लफ्ज आ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसी घटनाओं का आप जिक्र कर रही हैं जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिल रही है। और हमारे श्रोताओं को आज आपका टॉक शो सुनने के बाद ज़रूर कई सारी चीज़ें उनके जहन में रहेगी और शायद आज वो भी कहीं ना कहीं प्रण लेंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का और कुछ एक अच्छी दिनचर्या बनाने का। जैसा कि हमने बताया, दिनचर्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। ये तो हुई आज की बात और बहुत ही सरलता से आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। अब चूंकि जाने से पहले एक और बात, एक मैसेज एक शिक्षक के रूप में आप क्या देना चाहेंगी, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं।
1: मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, शिक्षक ही देश का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं और हम केवल कक्षीय ज्ञान, 45 मिनट मेरा पीरियड है, हम केवल अपने विषय का ज्ञान दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाइए, 45 मिनट का अगर है तो 5-7 मिनट आप मोरल साइंस की बात जरूर कीजिए, नैतिकता की बात जरूर कीजिए, क्योंकि हम एक आज का इंसान मशीन होकर रह गया है और जब मशीन होकर रह गया तो उसके अंदर संवेदना शून्य होता जा रहा है।
0: सही बात है।
1: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, संवेदनशील बनिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, सबके लिए। यदि हम संवेदनशील होंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, तो निश्चित हम बढ़ेंगे, हमारा जनपद बढ़ेगा, हमारा राज्य बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र बढ़ेगा और विश्व में हम सभी एक स्थान बना सकेंगे।
0: क्या बात है, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है और आपकी बातों का असर इसलिए होगा क्योंकि आप इसमें हद तक, काफ़ी हद तक आप इसको खुद अमल में ला रही हैं, आप खुद सोसाइटी को पे कर रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हैं, आप शिक्षा के मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, काउंसलिंग करना हो, यानी जैसे भी आपसे मुमकिन होता है आप करती
1: हैं। मैं 10-90 की काउंसलर भी हूँ।
0: अरे वाह, देखिए लगातार निकलता जा रहा हूँ मैं तो शायद अपने श्रोताओं से।
1: पुलिस डिपार्टमेंट

0: जनरेशन गैप है, जो वृद्ध है वो उपेक्षित है। मैं यही चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है हमारी, अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का, उनको भी समय दे, क्योंकि आज हर व्यक्ति मशीन की तरह हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक वो काम ही काम में रहता है और बुजुर्ग अपने घर में सिर्फ दीवार को देखता रहता है। तो इससे बाहर निकालने की ज़रूरत है। हर युवा को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने माँ बाप के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। यह भी एक शिक्षक के रूप में संदेश देना चाहती हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा संदेश है। और ये कटु सत्य है जो आपने बताया कि जिस तरह से बुजुर्ग उपेक्षित हो जाते हैं, उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हर गेस्ट से जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो आपसे आज के टॉक शो का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली, गोंडा शहर की धड़कन, इसके आने से गोंडा वासी या जो भी इसके सुनने वाले हैं, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में ये शहर या जिला या जो भी सुनने वाले, उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा होगा, क्या नवाचार कर रहा होगा?
0: मैं अगर ये कहूँ कि आई हैव नो वर्ड्स, इतना अप्रिसिएट करती हूँ, इतना अच्छा ये FM चैनल यहाँ स्टार्ट हुआ। कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है एक बार अगर सुन लेता है आपके ये 89.6 FM को, तो फिर वो बार बार सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। और आपने हमारा स्टेटस बढ़ा दिया है, जैसे हम सुनते थे आकाशवाणी लखनऊ से, तो आज हम गोंडा वासी भी 89.6 FM के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम आप विविध कार्यक्रम करते रहते हैं, तो मैं गौरवान्वित होती हूँ कि मेरा गोंडा विकास कर रहा है।
1: क्या बात है। और आपकी ये लफ्ज़ ना, एक एक लफ्ज़ हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आप सच में एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि
0: और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुला लिया। मैं यही सोचती थी कि मैं धन्यवाद देने जाऊंगी कि आपने गोंडा में ये FM चैनल अपना चला करके हम पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और गोंडा जनपद के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा।
1: क्या बात है, इतनी जो बात आपने बोली है ये शायद सुनने में लोगों को बड़ी भरी लगे, लेकिन ये सच आपने कहा। क्योंकि कोशिश, जब आपका विजन होता है, मिशन एक होता है, तो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होता है। उसका पूरा जो श्रेय है वो स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा सिन्हा मैम को जाता है, और साथ ही साथ उनके बेटे यानी इस रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के डायरेक्टर डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा सर को जाता है, जिनका ये मिशन और विजन है कि गोंडा वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को इससे लाभान्वित किया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुनहरा उनका ये चिंतन है, और निश्चित उनकी अपेक्षा पर ये 89.6 FM चैनल मतलब बिल्कुल खरा उतरेगा। कहना ये चाहती हूँ, बिल्कुल खरा उतरेगा, और खरा ही नहीं, 100% जैसे सोना उस तरीके से ये जन जन तक पहुँचेगा, और एक एक व्यक्ति के दिल में 89.6 FM आपको सुनाई देगा।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपकी हर एक लफ्ज हमको कह रहे हैं कि मतलब लबरेज कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन लफ्ज़ों का, क्योंकि आपके ये लफ्ज़ ही हमको आगे अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरणादायी होते हैं। और अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि आज हमारी जो बातचीत हो रही थी वो डॉक्टर रेखा शर्मा मैम से हो रही थी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है बॉटनी LBS PG कॉलेज, साथ ही साथ नगर पालिका परिषद गोंडा की स्वच्छता एम्बेसडर हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर हैं जिला विज्ञान क्लब की। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद की मेंबर भी रही हूँ 3 साल।
1: क्या बात है जी। तो मैम के बारे में तो हमने पहले ही बताया था कि आप अखबारों में जरूर सुर्खियों में आप देखते होंगे, और आज मैम से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने स्टूडियो में।
0: मुझे तो लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 89.6 FM चैनल पे अपनी बातों को आपके माध्यम से समाज में पहुंचा रही हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम। अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को जानेंगे, उनके कार्यक्षेत्र को जानेंगे। तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

सभी भैया और बहनी लोगन के प्रणाम और सावन के जुन भींजल भींजल नमस्कार सबका कहे के समय है वो सांझे के होत है। तो सबका भाई नमस्कार है और हमरे जितना सखी सहेली सहेला सब लोग हैं सब तनी आए जाएं और एक एक कप चाय लेके बैठ जाएं। कहे कि देखा मौसम जब होत है सुहाना तब संगीत के साथ याद आवत है आपन जमाना, और आपन जमाना मतलब आपन कल्चर, आपन लोकगीत, आपन संगीत और आपन अंदाज और आपन लोग। और ऐसे आपन लोगन के साथ है आज हम आपका सुनाए वाली हन हमरे गोंडा शहर के बहुत सारी ऐसी सखियन ही, और जेमा मसे आप सबका मतलब अगर बताई तो आप सब पोस्टर पे देखे भी होगो कि कौन कौन सखी आज हमरे स्टूडियो में है हमरे साथ है। और आप सबका अपने आवाज़ में सुंदर सुंदर कजरी और आज अपने अवधी भाषा के गीत सुनाए वाली हैं। तो सबसे पहले तो सबके भाई स्वागत है, और जैसा कि बाहर बादल घिर आए हैं, कहूँ रिमझिम फुहार पड़त है, तो कहूँ आम के डार जोन है तो झुलवा झुलावत है, लेकिन का करी सावन जोन है ना ये बड़ा परेशान करत है। और कहा है ना कि सावन के महीना माँ अगर कजरी गीत ना गवाए तो सावन अधूरा रह जाए। कहा है ना कि बरस

झूम के बरसन लागे बदरिया रूम झूम के। तज बरसत है बदरिया रूम झूम के, ता बस आपन भाषा अपन गीत और का नहीं याद आवत है। और जब का याद आवत है तो अपने पिया के तो याद जरूर आवत है, और प्रेम के जब बरसात होती तब सब कुछ भुलाए जात है। तो देखा पहले तो कजरी के बारे में बगर बताई, तो कजरी कोनो गीत ना होए, ई एहसास है जो उनकी मौसम और इंसान के बीच के जो नेगो दूरी है उका दूर करते है। लेकिन आज जो उन सावन है वो खाली न जाए दे, अब हम आज पकड़ ले बकाते ना, आज लपट जाए तो हमें ना बच्चे जोन भी है जैसन भी है, आज सावन का लपट के कजरी गीत गावक है, बस यह सोच लिया। और लोक सुर के साथे जब सावन के बूंद भी थिरके लागत थी ना, आपन जोन थाप दिए थी, तो बड़ा मजेदार होते। कजरी केवल गीत नहीं है सखी, और कजरी ता बिटिया के मायके के याद है, सखियन के संग झूला के वो एहसास है, ननन भौजाई के ठिठोली है, पिया से बियोह के दर्द है, और गांव के मिट्टी से जुड़ल एगो पूरा सांस्कृतिक जोन संसार है। और आप सबको बताएगी सावन औते मान जोन है, सबसे पहले जोन काम होत रहा पहले के जमाना में तो झूला पड़त रहा, और झूला पे बैठ के सब सखी लोग खूब बढ़िया से कजरी गाएं और एक दूसरे का छेड़ें, एक दूसरे वाले के नाव से छेड़ें, और क्योंकि हु का रास्ता बिरस्ता डगरिया केहू का देख लिए अपने पिया का आवत जात। मतलब पहले बड़ी मतलब वो रही, एक नज़र भी केहू से नज़र मिल जाए तो उसका बड़ा माना जात रहा, उसका बड़ा तवज्जो रहा, और कहत रहन कि वो प्यार के एहसास भी बड़ा खास रहा। तो कहते हैं कि एगो गाना हम सुने रहें,

0: रे हम तपिया से नैना लड़ाई रे।
1: अब सबसे पहले अब आपका बताई कि कजरी जोन है एकर गायक है कहाँ से शुरुआत है। कजरी उत्तर भारत के प्रमुख लोक गायन के परंपरा में से एक है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और बिहार के कुछ क्षेत्रन में सावन भादो में मौसम जोन लागत है तब कजरी गायन के परंपरा शुरू हो जाता है। खाद खेते में धान बैठावत के संगे संग जब नागपंचमी होते सब त्योहारन में ये सब गीत गाय के शुभ मंगल की इनका जात रहा। कजरी नाम के जोन अलग अलग लोग मानता है। लोग कहते हैं कजरा यानी कि आँख के काजल से जोड़ा जात है। सावन के जोन बादल है करिया होत है यही से एक नाम कजरी रखा गया कि अखिया के जैसे कजरा करिया होत है वैसे मेघ आवत है करिया करिया और हमें सबका जुड़वाए के जात है। और सबके गांव के अगर बात करी तो कुछ लोग कहा थी कि उनके सबके यहाँ जब कजरी गावत हिन तो गांव के औरत लोग सब टोली बनाए लेते रहीन और एक सुर उठावत रही और बाकी सब संगत के निहायत पीछे पीछे गावत रही। और सबसे मजेदार बात ये होत रही कि गीत माँ घर परिवार के पूरी कहानी भी आ जात रही केहू के जेठ केहू के जेठानी केहू के देवर केहू के जाई सब चीज। और जैसे लागत रहा कि कजरी के खासियत तो सबसे खास तबे है जब पिया से मिलन के आस लागत है। कबो ससुराल मा केलापन तो कबो मायके के याद आवत है। कबो सावन के झूला तो कबो सखियन के नोक छोक सतावत है। यह है कजरी के सौगात जोन हम सबका एक दूसरे के पास बुलावत है। सावन प्रकृति के त्योहार है। हमारे सबके त्योहार नहीं है प्रकृति अपन त्योहार मनावत है। बारिश होती पेड़ पौधा सज जाते हैं हरे हरे रंग मा सबके एकदम जैसे कहते ना श्रृंगार हो जाते हैं। तो भाई त्योहार जैसे हमारे सबके वैसे प्रकृति के धरती भींजत ही पेड़ पौधा हरियर होते हैं नदिया में पानी बढ़त है आकाश में बदरा छाए जाते हैं। गांव के बिटिया मन में सावन का लेके एगो अलग जो कहते ना आस लगाए रहा थी। पहले के जमाने में बिटियन का गांव में शादी होत रही लड़कियन के तो उन्हें कहा सावन में मौका। अब तो किसी भी समय हम सब उठाई थे बैग पहुंच जाए थे अपने घर लेकिन पहले कहा रहा सावन एक ऐसा मौका होता रहा जब एक इंतजार होता रहा साल भर सावन गवा फिर सावन में जाए का मिली। तो यही से सावन और कजरी ये दोनों स्त्री के जैसे लागत है कि श्रृंगार है। तो चलिए अभी एगो तनी भर मतलब कहा जाए ना अपने संगीत से सज ली जाए तनी कजरी सुन ली जाए। तो हंसत रहा मुस्कुरावत रहा बजावत रहा अपन वाला फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सी 89.6 FM या गोंडा शहर की धड़कन। आप सुबह सुनत हो अपने आरजे पीना के संगे भोजपुरिया शाम आपके नाम।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: सो वापस से सभिन का भाई ए बूंदन भरा राम राम और नमस्कार प्रणाम, का हाल है भाई? और ई कजरी गीत सुने के बाद मन तो करत है कि जाई झूला पे बैठ के कुछ देर ई कजरी सुनी और ई सावन गाना अपने बचपन वाले अंदाज में जिए के कोशिश करी। वैसे आप लोग बताई हैं कि आप लोगन के का मन की ही ई कजरी सुने के बाद। और सबसे खास बात है कि हमारे सबके जब अपन चौपाल लागत है ना, तब अपने खास लोगन के संगे बात, पंचायत, हंसी ठिठोली और ये सब गीत और गाना जैसे लागत है कि एक दुनिया बसाए दिया थे। सखी सहेलिन के लोग गीतन के जो किताब होत रही उनो पैदा नहीं होत रही, ओका जैसे कहा था ना कि लोगन के जीवन से लिखा जात रहा। कजरी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का सिखाई जात रही, दादी से, नानी से, और दादी नानी से अम्मा का, और अम्मा से उनके बिटिया का। ये मौखिक परंपरा रही। कबो भी आपका कोनो स्कूल या कॉलेज में कजरी लिखी पढ़ी नहीं सुनवत मिली हुई। अब तो भाई परंपरा बदल गई ही, जैसन की लुप्त होती कुछ कला तो का किताबन में संजोवा जाए लाग है। लेकिन पहले ये सिर्फ मौखिक परंपरा रही, लोग अपने सुन सुन के जैसे खिस्सा कहानी होतरा पहले अपने पिता और अपने दादी दादा इन सब से सुन के हम सब सीखत रहे, वैसे ही कजरी के भी रहा। पहले ना तो मोबाइल रहा, ना गीत सिखाए के लिए दादी नानी पास बैठे रही, मैं सुनावत रही और हम सब सीख लेते रहे। दादी के पास बैठे के टाइम अब आज के जमाना में मोबाइल हमें देते नहीं है। अब यह बात है कि तकनीक बुरी तो नहीं है, लेकिन अपनी जो जड़ है उसे जुड़ब बहुत जरूरी है। और आज सिर्फ कजरी का मनोरंजन के रूप में ना देखें, एक लोक स्मृति और अपन बचपन के रूप में देखें। फिलहाल सावन के महीना है, पकौड़ी पर चर्चा ना हो एक ऐसे हो सकत है, तब गरम पकौड़ी और चाय और कजरी हमारे साथ है, मतलब कजरी गाय वाली हमारे सखी है और हम भी थोड़ा बहुत सुर लगाए लिप्स के साथ है। वैसे हमें ज्यादा कजरी वजरी तो नहीं होते, लेकिन हाँ कोशिश तो हम करे से पीछे नहीं हटे, ये तो हमारे ये है। और हमारे सखी एक जनी हमसे पूछिन कि अगर आपके पिया आपका बहरे से फोन कह दिए तो आप क्या करिए, उनका पकौड़ी बनाए के भेजने हैं? तो हम कहें कि ना, पकौड़ी बनाए भेजब तो ना, लेकिन हाँ वीडियो कॉल कही के हम बनाए के खाब और दिखाई। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी के जमाना है, पहले के जमाना में इंसान दुखी होता रहा, लेकिन अभी दुखी होए के मौके नहीं मिलते कि कजरी गाए। तो मोबाइल का कर जैसे ना कि कजरी से दूर करे के लिए हमें सबका वीडियो कॉल दे जैसे कि भाई कजरी ना गाओ, वीडियो कॉल पर बात कर लो। और बादर देखो गरजे लागे जोर से, और सखी कहा थी कि चाय बनाओ। अब चाय बन के आ चुकी है, फिर भी चाय बनावे कहती कहे कि कहा थी कि इतना चाय कम पड़ जाए, मतलब दो बार चाय पिए के मूड लागत है। तो ये मूड जोन है वो बरकरार रही, और कजरी का जोन सौगात है वो चलत रही। और जिसन की एगो कजरी हमका भी याद आवत थी, आपका सुनाई इतनी भर सुन के बताई है कि कैसन है ये कजरी। और प्रयास करी थे अगर आपका अच्छा लगे तो जरूर, जैसे कहा था ना कि सबके कोशिश है कि मन मोह लिए, ऐसा कजरी सुनाई सुनी कई।

0: वो सावन में कजरिया बदरिया घेरे आइल ननदी।
1: तो बताई कैसन लाग आप सबका ई गीत। वैसे हमें तो थोड़ा बहुत आवत रहा जोन हम अपन प्रयास करके आप सबका सुनाए दिए ने, लेकिन अब आप सबके बारी है कि आप चैट रूम में अपन अपन कजरी जरूर लिख के भेजें कि कौन आप सबका बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे पसंद ना पसंद के बातें नहीं, लोकगीत अपन पसंद बना ही लिए थे अपने आप। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे सबके यूपी बिहार में जो अलग अलग स्थान है वहाँ के शैली और गायन सब जगह अलग अलग है। पूर्वांचल में कजरी विशेष तौर पर गाई जाती है, जिसमें मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, आसपास के क्षेत्र और लोक संस्कृति एमन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और यह नहीं, कजरी केवल महिलाएं के गीत सीमित नहीं है, एमन पुरुष कलाकार भी मंच पर एक गीत गाय के एक शोभा बढ़ावत है। यानी कि मतलब कजरी सिर्फ गाँव मनाई है, आज बड़े बड़े मंच पर गाई जाए थी। कहते न कि ई लोक कला का यात्रा है, पहले आंगन, फिर चौपाल, फिर मेला और मंच, और देखा आए वाले समय कहाँ पहुँच जाए। तो चली फिर सुना जाए गो और कजरी अपने सखी लोगन से पूरा म्यूजिक के साथ। कहूँ जाई है ना, सुनत रहें आपन फेवरेट वाला कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला अपने आरजे बीना के संग।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकमिंग योर शो गुंडा मैसेज मसाला विद आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक। और आज है सैटरडे नाइट स्पेशल, और सैटरडे नाइट स्पेशल में जैसा कि हम सब के सब जानते हैं कि आज के दिन हम लोग के बीच में होते हैं हम सब के पसंदीदा, हम सब के चहीते दिल, लीवर, किडनी, हर एक मर्ज की दवा रखने वाले डॉक्टर लव। सो क्यों ना हम लोग तहे हुए दिल से वेलकम करें हमारे डॉक्टर लव का। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो डॉक्टर लव। क्या हाल चाल है आपका।
1: एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: अच्छा जी, आप ये बताइए कि आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इसके अलावा कुछ और भी बोल सकते हैं? आपको नहीं लगता कि ये बहुत आउटडेटेड हो गया, हर बार रिपीट एंड रिपीट रिपीट
1: आउटडेटेड हो गया? आपका नाम
0: सिंपल,
1: आपके पिताजी का नाम।
0: अब पिताजी का नाम बताऊंगी तो बहुत सारे लिसनर्स मुझे पहचान जाएंगे।
1: नहीं, वो बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि आउटडेटेड हो गया तो बदल देना चाहिए?
0: नहीं, मेरे पिताजी का नाम तो आउटडेटेड नहीं है। एक्चुअली मेरे पिताजी का नाम राम जी के एक नाम के ऊपर है।
1: हाँ, तो सोचिए कलयुग चल रहा है, वो
0: आउटडेटेड। बस इतना आसान सा काम है, अगर कोई भी चीज आपको आउटडेटेड लग रहा है, अगर आपका नाम आपको आउटडेटेड लग रहा है, आपको बस इतना करना है कि जिसमें नाम है सिंपल उपाध्याय, तो मैं लिख सकती हूँ S.U।
1: हो गया जंजीज वाले तो परेशान करके हमारे पेशेंट एक आध जंजीज आ गए हैं, उनको भी परेशान किया रखे।
0: हाँ, क्या पेशेंट भी हैं आपके जंजीज? मुझे तो मिल रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, मैं इधर बीच नहीं आ रही थी तो इसलिए आपने मेरे लेवल वाले लोगों को बुला लिया।
1: एकदम बुला लिया, उन लोग का इलाज करा दिया, उनको मिलेनियर वालों की तरफ शिफ्ट भी कर दिया।
0: ऐसा क्या? और क्यों और कैसे शिफ्ट हो गए? मुझे तो आज तक आप नहीं कर पाए डॉक्टर।
1: नहीं तो हम क्यों करेंगे, हम जानते हुए पके हुए घड़े पर पानी नहीं, रंग नहीं चढ़ता है।
0: ओ अच्छा, तो मैं पक चुकी हूँ।
1: नहीं, ये मैं कहा कह रही, तो आप कह रही है, ये तो आपके कहने मानने का तरीका है, हम कहाँ कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी हैं।
0: मैं अच्छा जी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सबलू सावंत मुंबई से, और इसी के साथ में नाजिया अंसारी आपका भी स्वागत है, अरविंद मनकापुर से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इसी के साथ में सुरेश कुमार जी चौक से, नहीं बजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबिया गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, और अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला में आपके डॉक्टर लव के साथ में। धर्मेंद्र मोहन का कहना है डॉक्टर लव कि डॉक्टर लव बेस्ट ऑफ लक, आप सही से लिखिए ना, डॉक्टर लव बेस्ट ऑफ लक, आपका स्वागत है और मुझे कुछ क्वेश्चन करना है। आओ सिंपल की बेस्ट ऑफ लक, आपका भी स्वागत है। तो पहले तो आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लिया करो, क्योंकि फिर मैं पढ़ने लगती हूँ, फिर आप लोग को ऐसा लगता होगा कि हाय हाय कैसी आरजे, इसको हिंदी में पढ़ना नहीं आता। अब जब हिंदी सही से लिखा नहीं होगा तो मैं इसे हिंदी सही से पढ़ूंगी कहाँ से, है ना डॉक्टर लव?
1: भावनाओं को समझिए।
0: इतना भावना समझने लगूंगी ना तो जितनी दुनिया में भावना होंगी सब मेरे पास ही आ जाएंगी कि अब मुझे भी समझ ले बहन।
1: तो सब सबकी भावनाएं तो आप समझती हैं।
0: बस वही ना डॉक्टर लव, आपकी भी भावनाएं समझती हूँ, सबकी भावनाएं समझती हूँ, बस इस जालिम दिल की भावनाएं ये जालिम दुनिया नहीं समझती।
1: मतलब एक हम ही है जो आपकी भावनाएं समझते हैं।
0: ऐसा क्या? तो बताइए आज मेरी भावना क्या है?
1: आज आपकी भावना ये है कि आज आप मुझे पार्टी देने वाली हैं।
0: ऐसा क्या? क्यों पार्टी? कैसी पार्टी?
1: सुना है कल आपने बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिवस मनाया है।
0: ओहो, सो कल था ना मेरा जन्मदिवस।
1: तो कल था तो क्या हुआ पार्टी? जब खुशियाँ दिन की मोहताज नहीं होती, उन्हें कभी भी मना लेना चाहिए।
0: इतना ही अगर आपको सेलिब्रेशन करना था, इतना ही आपको अपनी आर जो सिंपल नॉट सो सिंपल के आने पे खुशी मिली थी। हाँ? तो आपको ना कल फ्राइडे वीक ऑफ नहीं लेना था। नहीं? आपको बोलना था कि आज सिंपल का हैप्पी बर्थडे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे सिंपल के साथ में स्टूडियो होना चाहिए, वो बहुत अकेला फील करेंगे।
1: अकेला नहीं फील करने की बात है, शुक्रवार हम खैर शनिवार को ही आते हैं, हफ्ते में एक दिन हमको बुलाया जाता है।
0: अच्छा?
1: हम कल आए और बाहर से हमको यहाँ से बाहर भेज दिया गया।
0: किसने भेजा?
1: अब जो नीचे जो है वो आपके डोर कीपर्स खड़े रहते हैं।
0: अरे बस एक बार कहना था कि अरे मैं तो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल से मिलने आया हूँ, उनका है हैप्पी वाला बर्थडे।
1: हाँ?
0: तो इतना आसान था, सारे भैया जी आपको एक हाथ पकड़ते, एक दूसरा हाथ पकड़ते, एक दूसरा पैर पकड़ते, एक दूसरा पैर पकड़ते और आपको ऐसे रथ यात्रा करवाते हुए मेरे पास लेके आते, कितनी अच्छी बात थी ना। So, मेरे पास में एक लिसनर का कॉल आ चुका है, चलिए देखते हैं कि अब इस मरीज को अपने मर्ज की दवा चाहिए, और फिलहाल अगर मरीज की दवा चाहिए भी तो आखिर कौन सा मर्ज है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, आपका शुभ नाम।
2: हेलो
0: जी, आपके हाँ आपका नाम, नमस्कार।
2: मैं अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: ओहो अनूप मिश्रा फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। सो डॉक्टर लव से आपको करनी है बात और ढेर सारी बात, तो चलते हैं डॉक्टर लव की तरफ।
1: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: फिर वही घिसा पिटा डायलॉग। अनूप जी आपको समझा।

0: फ्रेश आम कहाँ
1: मिले? गंदे आम आ रहे हैं,
0: है ना? मेरे घर में आम आना बंद हो गया, मेरे घर में आम आना बंद
1: तो
0: हो गया। अच्छे
1: तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब,
2: जी जी जी,
1: कि आप कब
2: जी
1: आपका
0: हाँ पहले नेटवर्क में जाइए अनूप जी, अगर फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा तो दिल में कैसे नेटवर्क रहेगा।
1: हेलो
2: जी,
1: ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपका पुराना कंपाउंडर छुट्टी पे है क्या आज?
2: हाँ, पुराना कंपाउंडर हमारा छुट्टी पर है, हमने उसको कुछ दिन की छुट्टी दे दी है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए, वर्कलोड ज्यादा, आप काम भी ज्यादा दे देते हैं ना, तो इसीलिए वो तंग आके चला गया होगा।
2: नहीं नहीं, वर्कलोड नहीं भाई, उनको जो है रक्षा बंधन से रिलेट करना था, तो हमने कहा कर लो भाई।
0: कुछ नहीं है, बहाने बना रहे हैं ये आपके डॉक्टर लव। दरअसल बात ये है, डॉक्टर लव को एडवेंचर करने की आदत है, कुछ नया नया ट्राई करने की आदत है, तो एक ही कंपाउंडर के साथ में ये हो जाते हैं बोर, इसीलिए हर दूसरे तीसरे हफ्ते इनको दूसरी नई कंपाउंडर चाहिए होती है, तो नई कंपाउंडर हर दूसरे तीसरे हफ्ते मिलना मुश्किल है, इसीलिए ये मुझे ही कॉल कर लेते हैं और मैं ही चली आती हूँ। और एक दिन के कंपाउंडर बनने में अच्छा खासा पैसा भी हो जाता है।
1: That's the reason behind it.
2: That is the real reason. अभी जान लीजिए।
1: तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब।
2: जी साहब।
1: कि पिछले साल 18 फरवरी को मेरा पैर टूट गया था। उसके बाद फिर इधर 24 जुलाई को फिर टूट गया।
0: क्या टूट
1: गया? ये चीजें बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं?
0: 24 जुलाई को आपका दिल टूटा है?
2: पैर टूटा?
1: दिल नहीं टूटा है, पैर टूट गया था फिर से, वही पैर टूटा था, उसी पैर ने प्लास्टर फिर से चढ़ा था। तो अभी तो हमने 19 तारीख को
0: तो हुआ कैसे, इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: मेरे पैर पे सिलेंडर गिर गया था। ये जो पेट्रोल पंप पे सिलेंडर जो रखे जाते हैं बड़े वाले 9 kg के, नोजल के किनारे रखे रहते हैं, वो गिरा था और वो टूट गया था।
0: सिलेंडर टूट गया था?
2: नहीं,
1: सिलेंडर नहीं टूट गया था, पैर टूट गया था।
0: ओके ओके, आपने बोला वो गिरा था और वो टूट गया था, तो वो
1: वही गिरा था तो वो टूट गया था पैर।
2: ये देखिए, तो इतने नादान जो है वो कंपाउंडर्स को अपने साथ रखकर हमको वेल ट्रेंड कर।
1: हाँ, धीरे धीरे सिखा देंगे, कोई बात नहीं, जैसे गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, धीरे धीरे सीख जाएंगे।
0: जी, अब बताइए, इतनी इनोसेंस बात करने के बाद में अगर मेरे डॉक्टर लव के चेहरे पे स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई, तो फिर ऐसी इनोसेंस बात तो बार बार करनी चाहिए, रिपीट एंड रिपीट, है ना? जिसके
2: मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट। सिलेंडर गिरा और सिलेंडर टूट गया।
1: सिलेंडर गिरा, सिलेंडर टूट गया,
2: साथ में मेरा पैर भी टूट गया।
1: तो डॉक्टर साहब, ये चीजें रिपीट क्यों हो रही
0: हैं?
2: मुझे भी आंसर चाहिए। हमको लगता है
1: इंसिडेंट है,
2: हम सिंपल,
1: या एक्सीडेंट है, या कोइंसिडेंस है, या फिर किस्मत का लेखा जोखा।
0: वही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने तो ऐसा बोया भी नहीं है अनूप मिश्रा जी, हम काट क्यों रहे हैं?
1: पता नहीं,
0: आई थिंक कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज हम लोग के पास में।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपको अपनी ईमानदारी से बताऊं, मैंने अभी तक अपने इस जीवन काल में जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जेलों में से नहीं भी जुड़े हैं, मैंने किसी का अहित नहीं चाहा, जहाँ तक मुझसे हो सके मैंने लोगों की मदद की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे ही चुन रखा है।
0: आपको पता है, भगवान परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो उनके सबसे प्यारे शिष्य होते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने?
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: ऐसा ना हो कि परीक्षा लेते लेते परीक्षा देने वाला ही ना रह जाए।
0: अरे चलिए, कोई बात नहीं, अरे आपका पैर ही टूटा है ना, कोई देखने थोड़ी जा रहा है, पैर में और पैर मजबूत हो जाता है भाई, इधर उधर की चीजें लग जाती है जब।
2: हाँ, ये हुआ कि चलिए आपका पैर अब मजबूत हो गया पहले से, और अच्छी बात यह है कि भारी नहीं हुआ।
1: भारी नहीं हुआ, ये बात आपने सही कही। एक्सीडेंटल कहीं पैर भारी हो जाता
2: है। मजबूत हुआ है, ईश्वर की विशेष कृपा है कि वो सब्जी को उन्होंने बहुत मजबूत कर दिया, आपका पैर मजबूत हो गया, और ऊपर वाले का शुक्रिया इस बात पैदा करना चाहिए कि आपने भारी होने से बचा लिया।
1: भारी होने से बचा लिया, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पाँव भारी होने से बचा लिया। चलिए, तो अच्छा ये रीजन था इसका।
0: जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है डॉक्टर, सच में।
2: मतलब आपका भी?
0: हाँ, अब आप ये पैर भारी नहीं हो रहा, अरे क्या
2: हम ये कहाँ गए थे?
0: अब बताइए, ये ऐसे इशारे कर देते हैं कि मैं शॉक्ड हो जाती हूँ।
2: हमने कहा कि मतलब इन्होंने कहा एकदम मेरे भी साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने एक चौंक कर देखा।
0: उधर बीच मेरा 2021 में एक्सीडेंट हुआ, फिर 21-22 में, फिर उसके बाद में मेरा ये 24-25 में कब हुआ था आप लोग को याद होगा, फरवरी में अनूप जी का भी।
1: लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर।

0: 2025 में फरवरी में, फरवरी में मेरा हुआ था, फरवरी में एक हफ्ते के बाद मेरे आपका भी हुआ था,
1: है ना? तो
0: मुझे याद है जी।
1: पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे माथे में इतने टाके आए, फिर उसके बाद में दोबारा आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तो मेरे होठों में इतने टाके आए, फिर उसके बाद में अब मेरा अभी रिसेंटली 10 दिन पहले शायद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे चिन को क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे ठुड्डी पे अब टाके आ गए हैं। तो करी अरे चलिए गनीमत है कि आपका पैर ही है, कौन देखने जा रहा है, मेरी तो शक्ल है, जो भी मुझे देखता है रास्ते में आते जाते वो एक बार मेरी शक्ल देखता है, पहले मेरे होंठ को देखता है, फिर मेरे माथे को देखता है, फिर मेरी चिन को देखता है, और फिर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, सबको तरस आ जाता है।
2: नहीं, और फिर वो कंफर्म हो जाता है कि अभी तक हमने सिर्फ सुना था कि होती है लेकिन अब सिद्ध हो गया।
0: सिंपल जी, हेलमेट लगा के निकला करिए आप,
1: है ना? अरे नहीं, मेरे डॉक्टर्स ने तो मुझे बोल दिया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, डोंट ड्राइव, है ना? तो
0: डोंट ट्राई हेलमेट, डोंट ट्राई टू ड्राइव।
1: हाँ, तो अब मैं, अब मेरे को अगर कोई लेके आने जाने वाला होगा तो देट इज ओके, नहीं तो फिर उसके बाद में मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लूंगी, वो भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन अब दोबारा अपने रिस्क पे तो मैं नहीं चलने वाली हूँ। सत्यवचन, लेकिन आपको पता है क्या अनुपेश, दो चार दिन की बातें हैं, अभी स्कूटी मेरी बनके तैयार होने दो ना, मैं फिर से अपनी स्कूटियों से गाड़ियां मारने लगूं तो।
0: मैंने 19 तारीख को ही मेरा प्लास्टर कटा है, 19 तारीख को ही मैं बाइक से श्रावस्ती गया था।
1: नाइस, यही तो होता है, बस यही चीज है, भगवान जब देखते हैं कि भाई अभी तक नहीं टूटे, अच्छा और तोड़ना है तो थोड़े बाद समय बाद और तोड़ देते हैं, लेकिन हम जैसे इंसान नहीं टूटेंगे अनूप जी, बस दो चार दिन की बात होती है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे साथ में चार दिन अंधेरी रात और जिंदगी भर चांदनी है।
0: इसी को फॉलो करते हुए
2: जी, और फिर
0: चलते चलते
2: वही, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़
1: दे बंदे,
2: खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया,
1: वो भगवान करेगा,
0: भगवान करेगा, वाह वाह वाह वाह।
2: तो अंतिम विकल्प उन्हीं पर छोड़ करके जिंदगी को आगे बढ़ाने का नाम ही जिंदगी है। और आप निश्चिंत रहिए, अब आपके पैर में चोट नहीं आएगी।
1: हाँ, आपके हिस्से की चोट मुझे आ जाए लेकिन आपको ना आए, जब साथ
0: नहीं, नहीं आपको ना आए भाई, आपको ना आए, मैं ये कभी नहीं कामना करता कि मेरे हिस्से का तो किसी और को मिले, किसी को भी ना मिले, जो हमको झेलना है हम अकेले झेलें। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए,
1: आपको पता है ये मेरा टोना टोटका भी झाड़ा करते हैं। इनफैक्ट अगर डॉक्टर लव आ गए सैटरडे को, अगर इनको थोड़ी सी भी स्मेल आ गई परफ्यूम डिओड्रेंट या फिर इत्र की, तो भैया डॉक्टर लव ऐसा डांटते हैं मुझे, ऐसा डांटते हैं कि काय को, इसीलिए तो तेरा बार बार एक्सीडेंट होता है, इतनी महकती हुई चलती है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तेरे साथ में फिर तिल्ले। तो क्या ये बात
0: नहीं, नहीं, नहीं, ईश्वर, ईश्वर आपको सही रखे भाई।
1: ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल डॉक्टर लव आपने समाधान दिया कि नहीं?
2: जी बिल्कुल दे दिया, मतलब आप कनेक्ट कीजिए।
0: नहीं बचा लिया, ये मुझे ऐसे ही समाधान की, मतलब मेरा मतलब नहीं
1: हुआ,
2: नहीं पैर टूटा, भारी नहीं हुआ ये।
0: हाँ ये आपने बताया ना कि एक्सीडेंटली मतलब पैर टूटा, पांव भारी नहीं हुआ।
2: हाँ मतलब पैर प्लास्टर लगने पर भी सोचिए, जबकि इतना बड़ा वाला प्लास्टर था, मम्मी इलाज किए हैं इनका,
1: है
2: पूछिए हमारी दवा,
1: जब आप डॉक्टर लव से पर्सनली मिलते हैं तब यहाँ फोन करके काहे को, फिर अब एक एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट चला जाएगा।
2: नहीं तो वो एक्चुअली कंपाउंडर से बात करना चाहते हैं।
1: Oh, really?
0: आज हमने कंपाउंडर से बात करने के लिए फोन किया था भाई।
2: देखिए हम कह रहे हैं,
1: कौन से वाले
2: कंपाउंडर,
0: जो कंपाउंडर मिल जाए,
1: है ना? बस बात करने को मिले, कंपाउंडर मिले हैं, एक्स वाई जेड,
0: एक्स वाई जेड।
1: सब बहुत बहुत शुक्रिया
0: लेकिन
1: आप ज्ञान की थोड़ी सी बात करने लगते हैं, थोड़ी सी लॉजिकल बातें करने लगते हैं तो आपका नेटवर्क ही चला जाता है।
0: कि मैं मतलब सरप्राइज मैं देने वाला था आपको, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो गया कि आप मिल गए।
1: अच्छा ऐसा क्या, वैसे मेरा काम है लोगों को सरप्राइज देते रहना, इनफैक्ट मैं अपने आप को ही दिन भर में एक सरप्राइज देती हूँ, तो लोगों को तो दूंगी ही दूंगी।
0: वेरी गुड,
1: बहुत बहुत शुक्रिया अनुप मिश्रा जी हमें कॉल करने के लिए। सो हमारे डॉक्टर हमारे एक कस्टमर का तो समाधान कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू अगले, हमारे पास जो भी कॉल आ रही है उसकी तरफ, और देखते हैं आखिर इन भाई साहब की दिक्कत क्या है, और इनके भी दिक्कत कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ खास होने वाली है, क्योंकि अगर इलाज करेंगे हमारे डॉक्टर लव तो भाई दिक्कत भी मर्ज भी बड़ा ही होने वाला है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नमस्ते, आपका नाम?
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम
1: जी। नमस्ते, गुड इवनिंग, आपका नाम?
3: अनु पांडे।
1: ओह, अनु पांडे फ्रॉम बेलसर जी। नमस्ते, क्या हाल
3: है? थोड़ा आगे।
1: क्या हाल है बेलसर से थोड़ा आगे? कितनी दूर? एग्जैक्ट एड्रेस बताओ ना।
3: विजयनगर
1: में रहते हो? विजयनगर तो मैं जानती हूँ, ये विजयनगर कहाँ पड़ता है बस मुझे ये बता दो, मतलब लाइक आजाद नगर के बाद में कि पहले, कैसे पड़ता है?
3: आजाद नगर के पास में पड़ता है, आजाद नगर, उसके बाद में जंगल में है समय माता मंदिर, उसके बाद विजयनगर।
1: ओह अच्छा, तब ठीक है, आऊंगी विजयनगर तो आपसे बात करूंगी। चलिए दुलाल मोबाइल आपसे बात करवाते हैं आपकी, और आपके हर एक समस्या का समाधान है हमारे प्यारे से स्वीट से लविंग डविंग डॉक्टर लव के पास में स्टेडियम।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्ते सर, कैसे हो?
2: जी बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
3: मुझे लग रहा है आपकी आवाज से।
2: जी एकदम,
1: इनके आवाज से और भी बहुत कुछ लगता है। मैं सुनूं?
2: नहीं, लगने का काम डिटाल का है। ये डिटाल
3: मैं भी अनु, सिर्फ अनु, मिस नहीं हूँ।
1: अरे कोई बात नहीं, अरे मैंने मिस लगा दिया, गलत किया क्या?
2: हाँ, कहीं मिस्टर्स थोड़ी लगाया है, मिसेस नहीं,
1: मिसेस थोड़ी लगाया है।
3: नहीं, अच्छा है,
1: अच्छा है ना,
2: अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है।
1: श्रीमती देवी इन सब से तो अच्छा है भाई।
2: हाँ, बहुत अच्छा है ना,
1: मुझे नहीं अच्छा लगता श्रीमती सिंपल उपाध्याय, व्हाट इज दिस श्रीमती, इससे अच्छा मैं सिंपल उपाध्याय। लेकिन श्रीमती इसमें लगाया जाता है ना, जिनकी शादी हो जाती है कि सब में लगाया जाता
2: है श्रीमती का,
3: शादी वाले
2: छोटा ही श्रीमती क्यों लगाया जाता है?
1: वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिनकी शादी हो गई लगाना होता है, या फिर जिनकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो?
2: नहीं नहीं, जिनका विवाह हो जाता है उन्हीं के आगे श्रीमती लगाया।
1: जिनका विवाह नहीं होता, जैसे हम मिस बोल रहे हैं, मिस को हिंदी में क्या कहते?
2: कुमारी, कुमारी सिंपल उपाध्याय।
1: ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं प्लीज। सो मैं सिंपल उपाध्याय ही बहुत खुश हूँ, और आप लोग चाहे तो सिंपल ही बोल।
2: नहीं, जैसे आपने पूछा मिस सिंपल, तो हमने कहा भाई उसे मिस सन।
1: नहीं, मेरा यही ठीक है, नॉट सिंपल।
2: मतलब सुनने आया कि शादी के बाद श्रीमती क्यों लगा देते हैं, पता है?
1: कि सबको पता चल जाए कि लाइसेंस बन चुका है,
2: श्री
1: की मती है ये।
2: नहीं, श्री मने होता है लक्ष्मी, और मती मने होता है बुद्धि, यानी जिसके पास लक्ष्मी और बुद्धि दोनों आ जाए वही श्रीमती।
1: तो मेरे पास ना लक्ष्मी है ना बुद्धि है, इसलिए मैं श्रीमती नहीं हूँ।
2: हाँ, तो अभी आप
1: कहना चाह रहे हो? नहीं,
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी आप लक्ष्मी और सरस्वती कहाँ है? अभी तो भगवान ने चाहा तो कुछ वर्षों में।
1: आय हाय, मतलब कैसी गंदी बात है ना, ब्याह हो जाए तो हम देवी हैं, ब्याह ना हो तो हम देवी नहीं है, ये तो गलत बात है।
2: ये तो परंपरा चली आ रही
1: है, ब्याह होने के बाद में ऐसी शक्ति आ जाती है क्या?
2: और क्या, मतलब शादी होने के बाद पत्नी को एक गर्व महसूस होता है कि उसने एक शेर को चूहा बनाया है।
1: हाँ, सही है, और उस शेर को चूहा बनाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है।
2: हाँ, नहीं, जिंदगी नहीं बर्बाद की, शादी हो जाती है फिर शेर चूहा हो जाता है।
1: हाँ? इतनी आसानी से कोई शेर चूहा नहीं होता, मेरे घर में भी दो चार मर्द हैं। हाँ? डॉक्टर लव, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत।
2: अच्छा,
1: मेरे भी घर में श्रीमतियाँ भी बहुत है, तो मैं हर एक जोड़े को देखती हूँ, हर एक जोड़े को देख देख के अंदाजा लगाती हूँ कि दुनिया भर में जितने जोड़े हैं वो कैसे होंगे।
2: अच्छा, तो हो सकता है एक्सेप्शन, जगह होते हैं आपका।
1: अब या तो इनकी तरह हो जो इनकी 16, 20, 30, 35 जितनी भी पत्नियां हैं कि चलो कोई बात नहीं, 10-10 मिनट सबको समय देते रहेंगे, ना इनसे गिला ना इनसे शिकवा, जब जहाँ ज्यादा देर रुकेंगे ही नहीं वहाँ गिला शिकवा कैसे?
2: न गीला करेंगे न सूखा करेंगे।
1: अच्छा, अब मैं चुप रहूंगी। सो फिलहाल बात करते हैं हम अनु जी से।
2: जी अनु जी, अब अपनी समस्या बताइए।
3: पहली बात तो नहीं, अभी इसको पहली बात हटा ही देते हैं, दूसरी बात करते हैं इसका।
2: जी
3: सर, मेरी सवाल ये है कि जब हम ना खाना बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हम गैस पे चला देते हैं और गैस को जला भी देते हैं, कुछ जल रहा है, कुछ जो कुछ भी बना रहे हैं वो बन रहा है और हम देखते हैं कि हाँ हम जो कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं ये सब बन रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मन होता है कि मैं सिलेंडर से गैस बंद कर दूँ।
1: क्या कर दूँ?
3: सिलेंडर से गैस ही बंद कर दूँ। पता नहीं ये तो प्रॉब्लम आ रही है, मजाक की बात नहीं, सच में मेरा मन करता है मैं खाना बना रही हूँ या चाय बना रही हूँ मैं उसको रख देती हूँ होने के लिए होता है और गैस ऑन कर देती हूँ, चला देती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद दो तीन चार मिनट बाद मेरा मन करेगा मैं सिलेंडर से गैस बंद कर दूँ, फिर तो ध्यान उधर चला जाता है।
2: ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक, ये एकदम अच्छी बात है। असलियत में हम लोग जो है वो जानवर से फिर इंसान बने थे, आपको पता ही होगा, और जानवर कच्चा खाना ही खाते हैं।
1: वैसे इंसानों को भी कच्चा खाना ही खाना चाहिए स्वाद के लिए, जानवर
2: मतलब आप गेहूं कच्चा खा लेंगे हैं।
1: अरे गेहूं पीस के आटा आ रहा है तो ठीक है उतना ही, लेकिन कम से कम ये जो हरी सब्जियां,
2: हरी सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं,
1: करेंगे ओवर कुक करने के बाद में उसमें अच्छी स्मेल आएगी, उसमें झउआ भर का मसाला डालेंगे फिर उसको जीभ के स्वाद के
2: हम मैं आटे की बात कर रहा हूं कि जानवर कच्चा आटा खाता है। कभी आपने किसी देखा कि कोई गधा ले गया हो घास काटा हो फिर उसको बाला हो फिर खाया हो?
1: अब वो क्या है ना उसके पास वो सुख सुविधा नहीं, जैसे इंसानों के पास है उसके पास होता है सब्जी, वो भी घास पहले काटता फिर उसको उबालता पकाता साग बनाता है फिर सूप बनाता।
2: मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम पशु से मनुष्य हुए हैं और यही पशु प्रवृत्ति कहीं कहीं जाग जाती है तो इंसान सोचता है लाओ गैस सिलेंडर बंद कर दे।
3: जो मैम कह रही वो सही है, जो हरी सब्जियाँ है ना उसको ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज्यादा मसाले नहीं डालना चाहिए।
2: कच्चा खाने का मन करता होगा, उसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि हम नहीं उसके अंदर का जानवर जागता होगा कि नहीं आज कच्चा।
3: मैं जो कुछ भी बनाती हूँ वो कच्चा नहीं रहता है, आधा अधूरा तो बन ही जाता है, तो ना कच्चे में रहता है ना वो
2: पक्के में रहता है,
3: पक्के में रहता है तो उसको ज्यादा रेस्ट कर ले खाते हैं,
2: ऐसे बिल्कुल नहीं खाते हैं। जानवरों के बारे में आपसे अंदर कौन जानता है?
3: आप जानते हैं ना, अभी आप बता रहे थे तो ये भी बताइए।
2: हम तो खाने के बारे में बताए थे कि जानवर कच्चा खाना खाते हैं तो वो कई
3: कई तो आपको ना पता है सब कुछ जानवर के बारे में, आपको मतलब सारी चीजें पता है बहुत अच्छे से विस्तार से, आपका अनुभव है ना ज्यादा जानवरों के बारे में,
2: आप ही से सीखा है मतलब तीस है
3: सर, आपका जितना अनुभव ना उतना मेरा नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपका बहुत अनुभव है तभी आप इतने विस्तार से तो बता रहे हो।
1: तो और आप में हमारी उम्र में बहुत अंतर है ना,
3: सही है
1: पहुँचेंगे उनसे ज्यादा क्या पता तजुर्बा हो जाए, क्योंकि इतना घोर कलयुग है कि डबल तजुर्बा लेके तो इस दुनिया से जाएंगे।
3: लेकिन मैम हम लोगों का तजुर्बा उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सर को कुछ ज्यादा ही पता है जानवरों के बारे में, इनकी दोस्ती मत है ना,
1: पत्नियाँ होंगी यहाँ इंसान एक औरत झेल नहीं पाता, ये महाशय हमारे डॉक्टर ये 30-30, 32-32 पत्नियाँ झेलते हैं तो इनको तो भाई इनके लिए सच में एक सम्मानित अवार्ड इनको
2: मिलना चाहिए। इस बार 15 अगस्त को आपको घोषणा करनी चाहिए कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।
1: हाँ हाँ मुझे 15 अगस्त को अगर कोई घोषणा करनी होती तो मैं आपकी 30-32 पत्नियाँ जितनी भी है उनको इकट्ठा करती फिर उसके बाद में मैं बोलती जो इनमें से सबसे ज्यादा प्यार डॉक्टर लव को करता है वो एक कोई डॉक्टर लव के साथ में रह सकता है और आप सबको तलाक देना पड़ेगा। कितनी ना इंसाफी है, एक मर्द के पास 30-30 पत्नियाँ है और एक बेचारा कोई कुंवारा ऐसे बैठा होगा कि कोई मेरे भी नसीब में लिखी होगी मुझे।
2: जान लीजिए कि उन 29 का दुख हमने हर लिया है, ये हमने दुख हरने के लिए विवाह किया है, क्योंकि वो जाती तो उस बेचारे को दुख देती, अब वो दुख हम सह रहे हैं।
1: इतने अच्छे हैं हमारे
2: और क्या, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे तो बहुत।
3: ओके सर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए अनु जी, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो देवी प्रसाद जी, क्योंकि गुप्ता गंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका भी स्वागत है। इसी के साथ में दोस्तों हमारे एक लिस्टर हैं धर्मेंद्र मोहन, उनका कहना है डॉक्टर हमारा सवाल है कि बाल झड़ते हैं लेकिन दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं झड़ते, मैं सोच सोच के परेशान हूँ, इसका कोई उपाय बताइए
2: जी। बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि बाल पुरुष और स्त्री दोनों के पास होते हैं।
1: अच्छा।
2: और दाढ़ी मूंछ इसलिए नहीं झड़ती क्योंकि वो सिर्फ पुरुष के पास होती है।
1: क्या?
2: तो जो कॉमन चीजें होती हैं वो झड़ती हैं, जो अनकॉमन चीजें होती हैं वो नहीं झड़ती हैं। मतलब अगर दाढ़ी मोच जो है वो महिलाओं के पास भी होती तो दाढ़ी मोच भी झड़ती। अब बाल पुरुष के भी पास है, महिला के भी पास, तो बाल दोनों का झड़ेगा।
4: सही कहा।
2: हाँ, और दाढ़ी मोच चूंकि पुरुषों के पास है इसलिए दाढ़ी मोच नहीं झड़ता। कुछ किसी किसी को दाढ़ी निकलती नहीं है, जिसको दाढ़ी नहीं निकलती है उसका बाल कभी नहीं झड़ता है।
4: ऐसा क्या?
2: ऐसा बिल्कुल ऐसा।
4: हाँ, मेरा छोटा भाई है ना, तो उसके साथ में क्या है डॉक्टर, उसको बहुत थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है।
2: हाँ।
4: लाइक मेरे पापा को भी शायद थोड़ी थोड़ी आती रही होगी, या फिर वो दाढ़ी में अच्छे नहीं लगते रहेंगे, तो हमेशा से उन्होंने क्लीन शेव करके रखा। हुँ? तो स्टार्टिंग से उनको वैसे ही देखने की आदत है। और मेरा छोटा भाई भी उन्हीं पे गया है शायद, तो उसको भी बेचारे को बहुत थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है। वो बेचारा इतना परेशान रहता है कि थोड़ी और दाढ़ी आ जाए, थोड़ी और दाढ़ी आ जाए, लेकिन इतना जतन कर लिया लेकिन उसको दाढ़ी ढंग से नहीं आ रही। बस यही पे, किसको क्या कहते हैं, चिन पे, यही पे खाली दाढ़ी आएगी, हल्की सी मूछ आ जाएगी, बस लग जाएगा कि बेचारा लड़का है, गोरा चिट्टा लड़का।
2: नहीं, वो ठीक है, मतलब ये जान लीजिए खर्चा बच रहा है, नहीं तो 50 रुपए एक दाढ़ी बनवाने की कीमत है।
4: ऐसा नहीं, वो जाते हैं उस तरह क्या होता है, लगवा क्या आता है कि मेरी ग्रोथ हो, मेरी दाढ़ी है, बियर्डो एंड ऑल सब कुछ यूज करता है।
2: अच्छा, ये बात है, हम तो चाहते हैं कि न जमे तो अच्छा है,
4: है ना। वैसे कुछ लोग होते हैं सर जी कि जिनके दाढ़ी नहीं आती ना, भगवान जानबूझ के उनको दाढ़ी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग बिना दाढ़ी के
2: ज्यादा अच्छे लगते हैं।
4: और जिनको दाढ़ी बहुत ज्यादा आती है वो बिना दाढ़ी के बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते, दाढ़ी के साथ ही अच्छे लगते।
2: कितना गौर से देखती हो तुम पुरुषों को,
4: पुरुषों को नहीं देखते, मेरे घर में इतने पुरुष है कि मैं उन्हीं को देख लेते हैं। मेरे पापा क्लीन शेव रहते हैं, मेरा छोटा भाई वो दाढ़ी के लिए परेशान रहता है बेचारे के, थोड़े थोड़े आते हैं। और फिर उसके बाद में मेरा जो बीच वाला भाई जिसके भी शादी हुई थी, उसके तो भाई इतनी दाढ़ी है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी दाढ़ी के सारे बाल निकाल लिए जाए तो जो इंसान टकला होगा उसके टकले पे बाल आ जाएगा अगर लगवा दिया जाए।
2: क्या बात है, मतलब उसके ये दाढ़ी दान कर दें।
4: हाँ, उससे मैं तो कह सकती हूँ कि भाई दाढ़ी दान कर दे, उससे बाल, उसके बाल से ज्यादा तो उसकी दाढ़ी बढ़ती है।
2: क्या बात है।
4: हाँ, और बहुत स्मार्ट लगता है, और बिना दाढ़ी के बेचारा छोटा सा कटोरा सा मुंह लगता है उसका।
2: क्या
4: मैं तो नहीं चाहती हूँ कि वो बिना दाढ़ी के रहे। तो ऐसा होता है, भगवान सबको अपने हिसाब से बना के भेजते हैं, भगवान अपने तरफ से परफेक्ट बना के भेजते हैं, बस हम उस परफेक्ट को और परफेक्ट करने के चक्कर में एकदम कबाड़ा कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल राइट।
4: अब देखिए, मेरे को भगवान ने एकदम मूर की परी बना दिया।
2: क्या क्या,
4: अब कौन सी परी बन गई भगवान?
2: अभी आप नजर न लगे आप।
4: ओ माय गॉड, देख रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं। फिलहाल ये डोरे डाले या ना डाले मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोगों का कॉल आना चाहिए कि आज चलें डॉक्टर लव एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरह।
2: बिल्कुल चलें।
4: अब अगर आपने रोमांटिक सा कुछ ऐसा डोरा वोरा डाल दिया तो क्यों ना रोमांटिक गाना भी बजा लिया जाए।
2: बिल्कुल बजा लिया जाए।
4: कौन सा गाना सुनेंगे?
2: जो सुना दीजिए।
4: अच्छा, आप बताइए ना, मेरा टेस्ट और आपका टेस्ट बहुत अलग है।
2: क्या बताए, हमको तो कुछ भी मिल जाए सब पसंद है।
4: अच्छा, घर का चाहे दाल चावल हो, चाहे बाहर का चाउमीन हो, डोसा। भाई
2: हम तो गेस्ट हैं, अब आप मेजबानी आपको करनी है, तो जो आप मेजबानी कर लें।
4: अब इस तरह करके तो आप कंफ्यूज कर देंगे, मेजबानी कर दें, गेस्ट है, मेजबानी सुन के फिर मेरे को ये हो रहा है कि आप पुराने गाने बजाऊं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। म्यूजिकल ब्रेक के बाद में फिर से मिलेंगे, तब तक आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 91.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल, और ये हैं आपके अपने पसंदीदा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर लव। तो चलते हैं, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: प्यारा है वो चेहरा जिसपे हम मरते हैं और ये ना जाने हम इसे कितना प्यार करते हैं। वैसे हर एक चेहरे को नहीं पता होता है कि सामने वाला चेहरा उसको कितना प्यार करता है, क्यों? सही कहा ना मैंने डॉक्टर लव?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: वैसे मैं हमेशा सही रहती हूँ, ऐसा मेरे लिसनर्स का भी कहना है और ऐसा हमारे डॉक्टर लव का भी कहना है, और बस मेरे घर वालों का नहीं कहना है, उनका कहना है कि हमेशा तू गलत रहती है, हमेशा हमेशा तू गलत रहती है, तेरी सोच ही दुनिया से अलग है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या ऐसा सही है?
1: नहीं बिल्कुल, अपने अंदाज से, मतलब जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है।
0: इसी के साथ में दादा यादव ने बजाज चीनी मिल से हम लोग को ज्वाइन किया है और इनका कहना है पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज तो आप स्टूडियो आने वाले थे दादा यादव, हम सभी, मैं और हमारे डॉक्टर लव, हम दोनों आपका वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो क्या हाल चाल है मुझे जरूर बताना, और अगर डॉक्टर लव से आपको कोई भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर। सो डॉक्टर लव बोलो ना
1: जी,
0: इतने प्यार से बुला रहे, इतने प्यार से तो आसमान से भी कोई आवाज लगा।
1: मतलब हमको लगा कि मतलब आप उनसे बात कर रही हैं।
0: हाँ सबलू जी का कॉल आ रहा है, नाउ लेट्स गॉसिप। हेलो नमस्कार सबलू सावंत जी, क्या हाल चाल है आपका? आप तो बोल ही नहीं रहे, नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार
0: जी, सबलू जी क्या हाल चाल है?
2: बस बढ़िया है, जगाश बवाल बिंदास।
0: तो ये बताइए पहले कि बिहार में है कि मुंबई में?
2: अभी तो लंबा समय के लिए बिहार में ही ठहरे हुए हैं, इसी सोमवार को बाबा के नगरी में पधारेंगे।
0: ओहो, कौन से बाबा की नगरी में?
2: यही आपको बगल में क्या बोलते हैं, सुल्तानगंज, बाबा धाम।
0: ओ बाबा धाम बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं आज तक कभी गई नहीं
2: हूँ। जैसे हम लोग देवघर फेमस से जानते हैं।
0: अच्छा तो चलिए अब आप बताइए कि आपके पास में क्या समस्या है, उसका समाधान करेंगे डॉक्टर लोग, ले चलते हैं कॉल को, डाइवर्ट कर दें डॉक्टर।
2: सिंपल मैम, मेरा तो लाइफ है, कभी इंसान को जिंदगी में चढ़ाव उतराव तो होती रहती है, लेकिन यह नहीं है कि जिंदगी से थक हार कर बैठ जाना, गम हो या खुशी उसमें मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी है।
0: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
1: बिल्कुल क्या खुल रहा है
2: दुनिया में, देखिए सिंपल जी, दुनिया में वही सफल है जिनके उनका परिवार सबसे पहले आगे आता है,
0: है ना? अच्छी बात है, इसीलिए परिवार, और सफल परिवार तभी आगे आता है जब हम परिवार को प्रायोरिटी पे रखते हैं, प्राथमिकता देते हैं। अगर हमने अपनी जिंदगी में परिवार को प्राथमिकता दी है तो परिवार भी हमेशा प्राथमिकता हमें देगा।
2: जी जी बिल्कुल, घर ही एक मंदिर है और उसका परिवार ही एक।
0: ऑब्वियसली मैं क्यों मंदिर मस्जिद जाऊँ, घर में मेरे भगवान है।
2: तो जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: कहते हैं ना कि भगवान सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ पापा को बुलाया है।
2: कहते हैं सिंपल जी, क्यों जाए काशी, क्यों जाए हरिद्वार, पूजना ही है तो पूज दो अपने माँ बाप की चरणों के, वही है सच्चा एक भगवान,
0: है ना? लेकिन पता नहीं क्यों आजकल की दुनिया शायद सब नहीं समझती ना डॉक्टर
1: लोग,
0: एवरीवन इज लाइक कि अरे नीम करोली जाने से हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा, देखो वो गया था, अरे विराट कोहली गया था, अरे वो फॉरेन से आए थे, ये ऐसा वैसा नहीं। जब तक हम मन में चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक कहीं भी बदलाव नहीं आने वाला है। फिर हम चाहे, सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर चाहे हम नीम करोली जाए, फिर हम चाहे महाकाल जाए, फिर हम चाहे बालाजी जाए, लेकिन हमें अपने मन में तो थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे।
2: एक आनंद होता है ना कि हम यहाँ पे तीर्थ यात्रा करते हैं, दिल के आनंद के लिए इंसान अपना सफर करते हैं,
0: है ना? तो वही सफर करने के लिए ठीक, भगवान के दर्शन करने के लिए भी सब कुछ ठीक, लेकिन जो इस लालच को मन में रख के जाते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा सबका वहाँ जाने से काम हो जाता है, तो क्या पता मेरा भी काम वहाँ जाने से हो जाए, तो इस लालच के साथ तो भगवान के पास नहीं जाना चाहिए ना।
2: ज्यादा लालच भी बुरी भला
0: है
1: नहीं, बिल्कुल आप कह रही हैं तो सही कह रहे हैं।
0: डॉक्टर लव टिप्पणी नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा
1: टिप्पणी किए तो मतलब कि आप शानदार बोल रही हैं, मतलब बढ़िया बोल रहे हैं
2: जी। डॉक्टर लव सर आपको भी नमस्कार
1: जी, आपको नमस्कार,
2: आप से तो हफ्ते में एक बार ही बात होती है।
1: हालांकि
2: आप नाइट में आते हैं बाहर गजल में, हमें मालूम हुई है।
1: नहीं नहीं नहीं, हम बाहर गजल हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन शनिवार को आते हैं, बाकी कभी नहीं आते।
0: नहीं नहीं, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए। अगर हफ्ते में चार शनिवार होंगे तो हफ्ते में चार
2: हमारे पास आएंगे। नहीं नहीं, इतना एक कहावत है ना कि देर का फल अंधेर, देर का ही फल मीठा होता है ना।
1: सब का फल मीठा होता है।
2: जी जी बिल्कुल, सब्र का फल ही मीठा होता है। तो एक हमारे लिसनर जी जो अनु मिश्रा जी हैं, जो जिंदगी से लग रहे हैं कि टूट चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुप रह जाना ही हर बार डरना नहीं होता है। पत्तों का झड़ जाना तो पेड़ को मरना नहीं होता है, जिंदगी से हारना नहीं चाहिए इंसान।
1: तो वो हारे नहीं है, वो जब टंकर खड़े हो गए।
2: वो तो जान रहे ना उनका पैर में डेवर
1: ठीक हो गया, प्लास्टर कट गया है, टनाटन वो दौड़ रहे थे। परसों हम लोगों ने क्रिकेट मैच खेला है एक साथ।
2: नहीं, बोल रहे थे कि बार बार एक ही पैर को डैमेज होना, ये कौन सा है। तो आदमी का जिंदगी है, चढ़ाव उतराव होती रहती है, इसका मतलब नहीं कि हम जिंदगी से थक जाए। वो तो ऊपर वाला के हाथ में है, इंसान के साथ वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे साथ यह गलत हुआ है।
1: जी सर,
2: क्योंकि उनके बिना एक पत्ता तक हिलता नहीं है।
0: हाँ, वो कहते हैं ना कि होता वही है जो वो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम चाहते हैं। होगा वही जो हम चाहते हैं, लेकिन तभी होगा जब वो चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है।
2: उसके पहले फिर भी हमारे अंदर संघर्ष एक चीज होती है ना, संघर्ष हम करेंगे तभी तो संघर्ष। भगवान श्री राम चंद्र जी भी तो किए थे।
0: जी हाँ, सब्र सावंत जी, मान लीजिए कि मैं अपना हस्तरेखा दिखाने गई। अब हस्तरेखा दिखाने के बाद में मुझे बताया गया कि अरे वाह, अभी तो आपकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें चल रही है, लेकिन साल भर बाद आपके पास पैसे भी होंगे, आप हर एक तरफ से खुश रहेंगी, संपन्न रहेंगी, समृद्ध रहेंगी। अब मैं वो सुन के फिर उसके बाद में मैं आऊँ घर पे, चादर उठाऊँ, एसी ऑन करूँ, लाइट ऑफ करूँ, मोबाइल उठाऊँ और फिर सोने लेट जाऊँ कि अरे वाह, मेरे हस्तरेखा में तो लिखा ही हुआ है कि साल भर बाद में एकदम समृद्ध हो जाऊंगी, फाइनेंशियली मैं भरपूर, मतलब एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, है ना, ऐसे ही होगा। लेकिन मैं ऐसा सोच के अगर बैठ जाऊंगी तो क्या साल भर बाद वैसा होगा? जैसी आज सिचुएशन है उससे कई बदतर सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर उसी हस्तरेखा को दिखाने के बाद में मैं और मोटिवेट होके मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी, तो शायद उन्होंने जो कहा है कि हस्तरेखा को लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन उस चीज को मैं हासिल कर लूँ। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, क्यों उसने कहा ना मैंने।
2: जी बिल्कुल सही है बात आपकी, हम भी सहमत है।
1: सहमत है, सहमत होना पड़ेगा, बात सही है।
2: इसी पर कुछ कहना चाहते हैं।
1: जी,
2: जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग जी हमें ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अभी हम सब लोग जी को करते हैं डिस्कनेक्ट और वेट करते हैं कि आखिर और कौन से पेशेंट, कितने पेशेंट लगे हुए हैं लाइन में। एक और कॉल आ रहा है, क्या डॉक्टर लव आपको चाय पानी पीना है या फिर आपके कस्टमर को लेके आया जाए, आपके पेशेंट को लेके
1: पेशेंट ले आया जाए।
0: ये बस इसी फिराक में रहते हैं कि कब कौन सी फीमेल पेशेंट का कॉल आ जाएगा।
1: नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
0: अरे मैं टांग की चाय कर रही हूँ डॉक्टर लव, आप इतनी अच्छी, अगर कंपाउंडर पा गए तो थोड़ा तो हंसी मजाक चलता है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, संदीप कुमार आपका स्वागत है।
2: राधे राधे मैडम जी, राधे राधे सर
1: जी, राधे राधे
0: जी, राधे राधे।
2: हाँ बताइए सर, कैसे हैं मैडम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
2: मेरी शुभकामनाएं सर आपके लिस्नर पूरी गोंडा सब कोई जैसे ही हंसते रहे और आपका गुरु गुलाम सुनते रहे।
1: जी, और आप भी लोगों को उम्मीद की एक नई दिशा देते रहे।
2: जी सर, जी सर, कोई जिंदगी जीना हो तो सर थोड़ा बहुत मुझसे सीख ले।
1: सही बात, बहुत कुछ सीख लिया आपसे।
0: मुझे भी थोड़ा सा सिखा दीजिए, कुछ बताइए अपने बारे में।
2: मैडम जी सारे मुझसे मुलाकात कर चुके हैं, सर से पूछिए मेरे बारे में। मगर मैडम जी आप उस दिन अपने जीवन के बारे में कुछ बता रही थी, इनिंग का तो था कि आप किस संघर्ष से लड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, कभी धूप कभी छाँव,
0: नहीं, मैंने तो जस्ट आप लोग को लाइक मेरी क्या आदत है ना कि मेरी जो दिन भर की दिनचर्या होती है या फिर जैसा भी होता है मेरे अंदर के जो भी जज्बात होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब मैं कुछ ऐसा बटरिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। ऑल्दो आप लोग जब तक मेरे साथ हैं, ये ज्ञानस्थली परिवार मेरे साथ है, मेरा अपना परिवार मेरे साथ है, तब तक कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, कोई भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन मेरा कुछ भी बिगाड़
2: मगर मैडम जी आपकी समस्या मेरे आगे बहुत ही कम है, अगर मेरी जगह आप होती तो सर से पूछे मेरे बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर आपसे कह रहे हैं कि कोई जीवन सीखना हो तो थोड़ा बहुत मुझसे मिल ले हम उसको जीवन सीख अपनी कमियां दिखा के या जो भी बता के समझा सकते हैं कि अगर हम उसको ऊपर वाले बनाए तो मैं हर दिन ऊपर वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं इस कंडीशन से या जो भी हूँ अच्छा हूँ, क्यों सर?
1: जी जी बिल्कुल, आपके बारे में इनको जरूर बताएंगे, बहुत अच्छा लगा कि आपने काम किया। और आप ठीक हैं?
2: जी सर हम ठीक हैं, आप ठीक हैं सर?
1: हाँ बस आप ठीक हैं।
2: मैडम जी
1: ऐसा घूमना
2: सर मैडम जी अभी राशि फल के ऊपर बात कर रहे थे, क्या मैडम जी राशि फल पे विश्वास करती हैं आप?
0: देखिए मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास है मुझे, और मैं नहीं कह सकती वो जो पंडित झाड़ फूक करते हैं या फिर ये कर लो वो कर, मुझे इन सब पे विश्वास नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में लिखा हुआ है, जो मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, उस पे मुझे विश्वास है।
2: मगर मैडम जी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, रावण की जो है और राम की एक ही राशि फल है।
0: तो एक मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिनका सेम ही मूलांक है, लेकिन तीन चार लोग ऐसे हैं जिनका सेम मूलांक है लेकिन तीनों चारों का व्यक्तित्व अलग है ना, तो डिपेंड करता है कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, आपकी राशि क्या है ना, और आपने किस नक्षत्र में जन्म लिया है, ये ओवरऑल जब मिला के जब एक कुंडली बनेगी और फिर आपके हस्त रेखा को भी देखा जाएगा, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको क्लियर चीजें मिल जाएंगी, और अगर आपका सब कुछ एक्यूरेट है तो आपके व्यक्तित्व की पूरी परछाई आपकी कुंडली में दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि
2: मैडम जी मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से कम विश्वास है, तो मैं ये कहता हूँ जो है आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करो,
0: कर्म है मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर अपने बारे में जानने को मिल जाए, दूसरा क्या पता हम इतने अच्छे से ना बता पाए हमारे बारे में, और क्या पता हम अपने बारे में उतना अच्छे से ना जानते हो, हम लिटरली कंफ्यूज्ड हो, टोटली कंफ्यूज्ड हो, तो हम तो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढेंगे, और सहारा ढूंढने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिसर्च पे ही जाना चाहिए, मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं
2: है। नहीं, ये तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मैडम जी आपको हर घर में जो है अरे नमक तो मिल जाएगा मगर दवा बहुत कमी मिलेगा, तो मैं तो कहूँगा सामने वाले से अपनी दुख नहीं कहना चाहिए,
0: है ना, वही मैं कहती हूँ कि अभी मुझे डॉक्टर लग कितना तजुर्बा नहीं है, मुझे आप कितना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने दुनिया नहीं देखी है, मुझे
2: मैडम जी आप मुझसे ज्यादा दुनिया देखी, दुनिया मैंने नहीं देखा है, मैं एक ब्लाइंड पर्सन मैडम जी।
0: जी हाँ मेरी उम्र बहुत कम है, उस हिसाब से मैंने जितनी भी दुनिया देखी है ना, इस एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से मैंने ठीक ठाक दुनिया देखी है।
2: जी जी जी,
0: मतलब
2: मैं तो मैडम जी एक ब्लाइंड,
0: दुनिया तो बहुत बड़ी,
2: मैं तो मैडम जी एक मैडम जी तो मैं तो एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मगर लोगों की थिंकिंग और लोग बातें करते करते मालूम चल जाता है कि दुनिया में क्या चीज नहीं, क्या नहीं, क्या है,
0: हम लोग इन सब विषयों पे बात करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे, तो मुझे ऐसा लग
2: रहा है। मैडम जी थैंक यू, मगर मैडम जी एक बात है, गुस्सा मत, आप तो कभी मैं कॉल करता तो आप अपने शो में फोन नहीं उठाती हैं।
0: मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आप सभी मेरे लिसनर्स को पता हो,
2: क्योंकि मैडम जी मैं चेक नहीं कर सकता हूँ जो है, तो मैंने आपको कभी कॉल करता हूँ तो आप अपने शो में फोन नहीं उठाती हैं।
0: हाँ तो एक्चुअली मेरा चैट बॉक्स का ही कॉलिंग होता है, जैसे आप सभी को पता है कि कॉलिंग गुंडा में
2: नहीं
0: तो मैडम परमिशन ली जाती है, ऐसे चैट बॉक्स से ली जाती है, जब मेरे पास परमिशन कम होती है
2: नहीं मैडम जी, जैसे कि मैं चैट है तो सब कुछ चलता है, मगर बस मैं चैट नहीं करता हूँ, इन चला नहीं करते हैं जो है सर, वैसे तो आप कभी कभी मैं सोचता हूँ चलो मैडम जी से बात कर लें, आप चली नहीं खाती है, चलिए कोई बात नहीं।
0: और फिलहाल मुझे अब ऐसा लगता है कि अब वक्त हो चला है हमारे अलविदा लेने का। क्यों डॉक्टर लब सही कहा ना मैंने?
1: जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने भाई, और आसमान वाले ने चाहा तो फिर शनिवार को फिर मिलेंगे आपसे आप ही के कार्यक्रम गुंडा मिश्र मसाला
0: विद डॉक्टर लव एंड योर आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल।
1: जी बिल्कुल।
0: सो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल मींस आपकी हैशटैग कंपाउंडर आपकी हैशटैग न्यू कंपाउंडर और डॉक्टर लव का साथ? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़ एंड जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से सोनिया तिवारी गोंडा से स्टे ट्यून्ड। सो आप लोगों को कैसा लगा आज का गोंडा मैसेज मसाला आज का डॉक्टर लव का सैटरडे नाइट स्पेशल प्रोग्राम? मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी लेना चाहेंगे अलविदा चंद शब्द अगर डॉक्टर लव अपने लिसनर्स से अपने श्रोताओं से अपने कस्टमर से अपने पेशेंट से करना चाहे तो बिल्कुल बेशक।
1: जी बिल्कुल बेशक। और अगले शनिवार को जब उम्मीद है कि रक्षाबंधन शुक्रवार को है सब सभी अपने श्रोताओं को सभी पेशेंट्स को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई और बहन के प्यार का ये पवित्र त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और कोई भी दुख तकलीफ चिंता परेशानी कष्ट मुसीबत गिला शिकवा शिकायत तमन्ना इच्छा ख्वाहिश झटका कुछ भी होगा हफ्ते भर में तो तैयार रखिएगा आसमान मिलने चाहे तो शनिवार को फिर आएंगे और करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी को।
0: सो इसी के साथ में डॉक्टर लव लेना चाहेंगे इजाजत और आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आपके गुंडा मैसेज मसाला प्रोग्राम से लेना चाहेंगे इजाजत। मिलते हैं आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, तब तक के लिए चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। म्यूजिकल ब्रेक के बाद में फिर से वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बिन सशकल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने शो फरमाइश में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक? हाँ, इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं। ऐसा क्या? वक्त के साथ भी लोग भी बदल जाते हैं, जो कभी अपने थे वही दूर निकल जाते हैं। हम तो आज भी वही खड़े हैं उनके इंतजार में, बस अफसोस है कि वो अब किसी और के हो जाते हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एवरीवन। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, एकदम सैटरडे नाइट स्पेशल प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट से मैच खाती हुई एकदम चकाचक सी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, दिल को खुश करना है, दिमाग को खुश करना है और अपने आप को भी खुश करना है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, नागेश्वर धाकड़ और महेंद्र राजस्थान से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सबलू सामंत मुंबई से, सोनिया तिवारी गोंडा से, के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, बबीता जी गोंडा से, राजू सीतापुर से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी आपका भी स्वागत है, सुरेश कुमार जी चौक से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से आपका भी स्वागत है, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, रितेश साहू गोंडा से, रितिक साहू गोंडा से, निधि सीतापुर से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। आवास विकास गोंडा से रवि, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफा जी साउदी से, नाजिया अंसारी। और चले चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में? पहली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना एतबार नहीं करना और हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। ये मैं बार बार रिपीट एंड रिपीट बोलती हूँ और आज एक गाना भी बोल रहा है कयामत पिक्चर का, और इसकी फरमाइश आई हुई मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी की तरफ से, विच मीन्स अजय मिश्रा जी भी चिल्ला चिल्ला के इस गाने के जरिए कहना चाहते हैं कि हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, क्योंकि जहां हद पार हो जाती है वहां सब पार हो जाता है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM का ये बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट फरमाइशी, जहां गीत तो बचते हैं लेकिन सिर्फ सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड

जी हाँ दोस्तों, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, एतबार नहीं करना और इंतजार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट दर्द भरा सन्नंग मन्ने हदुपिया का हमारे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, क्या आप सभी तैयार है? उसके पहले शिव शर्मा गोंडा से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की, राजस्थान से। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा, वो भी सपना अवस्थी की आवाज में। अंश पिक्चर का ये गाना हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया है सपना अवस्थी का ये आइटम सॉन्ग से पॉजिटिव महेंद्र की फरमाइश पे जो की है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू वाले डिमांड की तरफ से, क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने के लिए? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई नो आई डेफिनेटली नो। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अमरीश शुक्ला आपका स्वागत है, शिवा शर्मा आपका भी स्वागत है, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना जिसके सपने हमें रोज आते रहे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु जी की फरमाइश में जो की

जिसके सपने हमें रोज आते रहे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं हमने एंजॉय किया। आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गदर का गाना मैं निकला गड्डी लेके। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी से भरपूर नगमा। अगर जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी गाने में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल से ज्यादा एनर्जी है तो सिर्फ और सिर्फ वो यही गाना है मैं निकला गड्डी लेके। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में गदर पिक्चर का सनी देओल का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बढ़ाया हमने एंजॉय किया है सनी देओल का ये गाना गदर पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है दोस्तों, आपकी आवाज दिल को छू जाती है, आपकी आवाज दिल को छू जाती है, हर बात आपकी दिल में उतर जाती है, आपको सुनने की आदत सी हो गई है, आरजे सिंपल जी आपकी आवाज से मोहब्बत हो जाती है, और बाकी सॉन्ग प्ले करने के लिए थैंक यू मैम, आपका फैन है, आपके फैन है और हमेशा रहेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आप सभी से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है सबलू सावंत की मुंबई से, उनको सुनना है मीत मेरे मन के पिक्चर का गाना चले आओ। सो एंजॉय करते हैं सबलू सावंत जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया है ये नगमा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और के गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना तुम मानो या ना मानो। तो खुददार का ये गाना कुमार सानो अलका याग्निक की आवाज में हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश पर जो की है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: मिलता।
1: प्यार ही है खुदा प्यार देवता, हमने माना और हमने एंजॉय किया ये गाना हमारे केके गुप्ता जी की फरमाइश पर जो कि है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। चले चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया। सो एंजॉय करेंगे अनुराधा जी की और उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में हमारे लिसनर का बहुत खूब कहना है, तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी आंखों की भाषा समझ लेता हूँ, तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी आंखों की भाषा समझ लेता हूँ। मोहब्बत का असर कुछ ऐसा है तुम पर, मोहब्बत का असर कुछ ऐसा है तुम पर कि तुम कुछ कहो ना कहो मैं सब समझ लेता हूँ। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया सोनिया तिवारी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। जुगल किशोर वर्मा जी को जग्गू दादा को एमपी से सुनना है गाना इतना तो याद है मुझे। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो की है एमपी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

इतना तो याद है मुझे। जग्गू दादा की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। अगली फरमाइश हमारे पास में है बबीता की गोंडा से। बबीता को गोंडा से सुनना है गाना, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो ना जाएं और दूर तुमसे हो ना जाएं, पास आओ गले से लगा लो। मोहब्बतें का ये बहुत ही खूबसूरत सा

हमको हमें से चुरा लो। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बबीता जी की फरमाइश पर। इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कुछ कहना है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल से। आई डोंट थिंक कि आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगी धर्मेश त्रिपाठी जी। तो मैं अपने सभी लिसनर्स से भी कहना चाहूँगी कि इनके क्वेश्चंस क्या है मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन जवाब मुझे आपसे चाहिए, आप सभी से चाहिए। धर्मेश त्रिपाठी का गोंडा से कहना है कि आरजे सिंपल जी, अगर कोई अपना अचानक बदल जाए तो हम क्या करें? क्या उसे रोकने की कोशिश करें या खामोशी से उसे दूर जाने दें या फिर उससे दूर हो जाएं? आप बताइए, दिल को समझाएं या उसके बदलने का इंतजार करें? अब कोई अगर दूर जा रहा है, मैं बस, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी धर्मेश त्रिपाठी जी, कोई अगर दूर जा रहा है ना, तो उसको जाने देना चाहिए, है ना? आजाद पंछी जो रहेगा ना, वो जाएगा आसमान में घूम के, तैर के, फिर के, इधर उधर की सैर सपाटे करके, उसका मन होगा तो वो हमारे पास में वापस आ जाएगा, वो परिंदा जो आसमान में हम जिसको उड़ा देंगे। लेकिन अगर उसी परिंदे को हम कैद करके रखेंगे कि कहीं वो उड़ ना जाए, कहीं वो उड़ ना जाए, तो जिस दिन भी हमने कोई गलती कर दी, जिस दिन भी हमने उसके पिंजरे को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा, उसी दिन वो उड़ जाएगा और शायद दोबारा आना उसका मुश्किल होगा, है ना? इसीलिए मेरा ये कहना है कि किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान को बंध के नहीं रहना चाहिए, ना फिर किसी को बांध के रखना चाहिए। जब तक है तब तक खुशी खुशी है, नहीं हो रहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इधर उधर हट जाओ ना, मूव ऑन कर लो ना, है ना? मुझे ऐसा लगता है। अब लोग बोलते होंगे कि अरे हमने तो एक ही प्यार किया है, पहला प्यार आखिरी प्यार। अरे वो आपका पहला प्यार प्यार होता तो वो आपको छोड़ के थोड़ी चला जाता, वो तो जिंदगी भर आपके पास होता, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा, ये है मेरा फैसला। एंजॉय करेंगे जमाना दीवाना का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इसी के साथ लेना चाहूंगी मैं अलविदा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, बिल्कुल भी नहीं, न्यूज वाले ब्रेक की तरफ चलेंगे दोस्तों। रूबरू होंगे देश दुनिया की खबरों से, और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है भाई, पेट की तो सुध ले लिया करो, क्योंकि इस दुनिया में अगर हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में से अगर 100 हमारे हैं, उन 100 में से ना 10 भी शायद मुश्किल से होंगे ऐसे, 10 ही शायद मुश्किल से होंगे ऐसे जो पेट की सुध लेते होंगे यार। दिमाग की सुध, दिल की सुध, फोन की सुध, जेब की सुध, पैसे की सुध, सबकी सुध ले लेते हैं, लेकिन पेट का सुध ना रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही कोई लेता है। तो एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी कड़वी आरजे सिंपल के साथ में, हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।

0: में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉक्टर सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
4: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के

0: गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is our

वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो पर माय शिवी दिवार जो सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, तो अब वक्त हो चला है हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ने का। बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशु मिश्रा जी लखनऊ से एंड मनी शर्मा फ्रॉम खोरासा गोंडा स्टेट ह्यूम। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार की सिंचाई विभाग से, और राजेश कुमार को सिंचाई विभाग से सुनना है गाना हाय रे तेरी पायल रहे दीवानी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजेश कुमार की फरमाइश पर जो की है सिंचाई विभाग से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आप सभी को पता है क्या, हमारे पास में अगली फरमाइश है दोस्तों, दादा यादव की बजाज मिल गोंडा से, और बजाज मिल गोंडा से दादा यादव को सुनना है गाना प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है। तो दादा यादव की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कच्चे धागे मूवी का, अलका याग्निक जी की आवाज़ में और कुमार सानू की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा दादा यादव की फरमाइश पे जो की है बजाज मिल गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना एक फूल सा चेहरा। सो प्यार का साया मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: जिंदगानी का मोल किसी के हंसने के मोल से तो शायद थोड़ा ज्यादा क्या पता, जो खुशी जिस खुशी के लिए आप अपनी जिंदगानी दांव पे लगा रहे हैं, आपकी जिंदगी गाने के बाद में खुशी न रह जाए, इसीलिए कल क्या किसने देखा है, यू नेवर नो। सो ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराई, जिससे उनको सुनना है गाना पत्थर की सनम जब प्यार किया। सो एंजॉय करेंगे मोहम्मद अजीज और अनुराधा जी की आवाज में वतन के रखवाले पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा, हमारी बहुत ही खूबसूरत सी प्रीति जी की फरमाइश।
1: सुर में गाना

वाओ, पत्थर के सनम को मोहब्बत का खुदा जानना बहुत ही बेवकूफी की बात होती है, आई नो, लेकिन अब पछताए हो उसका जब चिड़िया चुप देखी। दोस्तों सबने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बहुत ही खूबसूरत सी प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर, जो कि है बहराइच से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की गोंडा से, उनको सुनना है गाना 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही चुलबुला सा गाना हमारे बहुत ही चुलबुले से, किसकी फरमाइश पर? रितेश साहू की फरमाइश पर, जो कि गोंडा।

इतना फंदा है सबके गले में, लेकिन ये वाला धंधा मुझे तो किसी से नहीं सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि मोह माया का धंधा इंसान को अपने दिल से सीखना चाहिए, अपने दिमाग से सीखना चाहिए। और सबके सब अपने दिल और दिमाग से ही सीखते हैं, किसी और से तो मोह माया का धंधा बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से। उनको सुनना है गाना धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मुकेश जी और लता जी की आवाज में। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत बहुत बहुत सारा मिस करना है। क्यों? क्योंकि कल है संडे, संडे मींस फंडे, फंडे मींस हॉलीडे, विच मींस कल है मेरी छुट्टी और मैं रहूंगी घर पे और आपका फरमाइशी शो कवर करेंगे आपके अपने पसंदीदा आरजे मनु। सो फिलहाल बहुत सारा मिस करना, डेडिकेट भी कर देना, दो चार आंसू भी बहा देना। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए अलविदा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंबू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM। ये है गुना शहर की धड़कन और आज कार्यक्रम है खास। जी हाँ, आज है शनिवार। आज के कार्यक्रम का नाम है गजलें हमारी, गीत आपके। तो भाई गजल तो हमने आपको सुना दी है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। और इसकी एक पंक्ति जो हृदय को छूती हुई जाती है वो ये है कि हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। वास्तव में ये सवाल हम सभी की जिंदगी में होता है कि जिस गीत को हम न गुनगुनाना चाहें, वक्त हमसे वो गीत गवा लेता है। मनुष्य ईश्वर के हाथ की कठपुतली मात्र है और हम सोचते कुछ और है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। जी हाँ, वैसा आकाश पंडित जी हैं जी। आप प्रणाम करते हैं आपको। पंडित जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जी तो भाई, आज देखना है कि आज इस कार्यक्रम की आधारशिला, इस कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। गजलें हमारी हो चुकी हैं और अब गीत आपके होने बाकी हैं। तो क्या गीत के लिए हमारे श्रोता तैयार हैं? अगर हैं तो जी, आपका दूरभाष क्रमांक है 63-93-31-64-29 63-93-31-64-29। तो भाई ये आपका नंबर है। और जब तक आपके हमारे साथ क्या बात है भाई। इम्तियाज अहमद जी भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आदाब करते हैं इम्तियाज जी आपको। और भाई आप इतने अच्छे अच्छे गीत लाते हैं, बजवाते हैं, लेकिन कभी कुछ सुनाते नहीं हैं। तो कभी किसी दिन शनिवार को या बुधवार को आपके गले की खूबसूरत आवाज़ हम चाहते हैं कि इन फिजाओं में गूंजे और आपकी आवाज़ का हिस्सा हम सभी बने, ऐसी इच्छा है हमारी। और आइए अब भाई, जब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं, पूरी करते हैं, आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: पलकों से ख्वाब क्यों गिरे क्यों चूर हो गए। जी हाँ, मेरे साथ श्री तेजनारायण शुक्ल जी हैं चरण स्पर्श। आपको शुभ संध्या मनु जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी इम्तियाज अहमद ने लिखा है भाई कि सर जी भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इम्तियाज अहमद जी, जल्दी ही इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सविता शास्त्री जी, क्या बात है भाई, एकदम सीधे अंदाज से गाने वाली और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ के साथ उपस्थित है चरण स्पर्श आपको। और दादा हमारे आ चुके हैं भाई अनिल शास्त्री जी, क्या बात है, शेरों के शेर आ गए हैं चरण स्पर्श। दादा कैसे हैं? और नव्या जी गोना से हमारे साथ उपस्थित हैं, गुड इवनिंग और शुभ संध्या आपको भी। अब जी हाँ, चलते हैं, देखते हैं कोई जुड़ चुका है हमारे साथ, देखते हैं कौन है हमारे साथ।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार मनु जी।
0: अरे दादा चरण स्पर्श, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज गोरखपुर से है।
1: जी हाँ जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी।
0: जी दादा कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: बस आपका आशीर्वाद, जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद,
1: ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे सब पे।
0: हाँ मतलब, लेकिन हमारे यहाँ बड़ों के आशीर्वाद की बड़ी मान्यता है।
1: नहीं बड़ा एक्चुअल क्या है ना कि हम लोग का संस्कार ही ऐसा है कि बड़ा का ही स्टार्ट होता है।
0: जी
1: तो मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ, रवि साहब का गाना है पत्थर कितना।
0: क्या बात है भाई, बहुत पसंद है हमको ये गीत व्यक्तिगत तौर पर।
1: तो मैं कोशिश करूंगा सर।
0: अरे हम, आप जानते हैं आपकी कोशिश बहुत कामयाब होती है।
1: मैं नहीं, आज सिंपल जी ने गाने को बजाया तो मुझे याद पड़ गया, तो मैंने कहा आज यही गाना गाना।
0: क्या बात, चेहरा तेरा दिल के लिए चाहते।
1: तो मैं शुरू करूं सर?
0: जी दादा बिल्कुल बिल्कुल।

जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमसे ये क्या समझा, ये क्या जाना पत्थर के सनम, चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे तुम हो।

था तन्हाइयां, जब बढ़ जाएंगी रातों की रस्ता में, रस्ता में दिखलाएगी शम्मा बापा उन आँखों की ठोकरें लगी।

0: जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमसे ये क्या समझा, ये क्या जाना पत्थर के सनम।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है दादा, क्या बात है, मतलब इस हाई पिच का गाना आप उठाते हैं और हमारी तो हालत खराब हो जाए, मतलब इतने ऊपर जाने में।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोशिश किया होता
2: है। क्या बात है, लेकिन कोशिश कामयाब है सर।
1: थैंक यू।
2: क्या बात है, और वो भाई हम उनसे जरूर मिलेंगे जिनके बिना आप अधूरे हैं।
1: हाँ एकदम एकदम
3: हेलो
2: हेलो, एकदम सीधी आवाज से दिलों में उतरने वाली आपको मेरा चमस्कार।
3: नमस्कार
2: जी, मतलब एकदम कोई मुर्की नहीं, कोई अलाप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गीत और वो एकदम सीधे दिल में उतर जाता है।
3: ये आलोचना भी हो सकती है कि कोई उतार चढ़ाव नहीं और कोई मूर्खी नहीं।
2: नहीं, ये उतार चढ़ाव की बात है, मतलब मैं कहता हूँ कि आप जो गीत चुन लेती हैं, मतलब ऐसा गीत आप चुनती हैं जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है और बहुत ही सिंपल वे में गा करके, मतलब आपके कंठ से लगता है कि मतलब या तो जिसने गाया उसी ने अच्छा गाया या तो फिर आपने गाया।
3: अगर ये
2: मतलब आपका जो सिलेक्शन होता है गीतों का वो बहुत अच्छा होता है।
3: गीतों
2: की तरफ हम लोग निगाह नहीं डालते, जैसे चुपके चुपके का वो गीत सबके सजन सावन में या
3: कोई कोई गाने ऐसे होते हैं कोई भी गाते हो बहुत ही मीठे और अच्छे होते हैं।
2: मतलब आप गाती हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये मतलब ये इसका श्रेय आपको जाता है भाई, आवाज आपकी है तो श्रेय आपको मिलेगा।
3: नहीं तो खुद से खुद की पहचान कराने में आपका तो श्रेय है ना।
2: हाँ मतलब हमने तो वही बोला है जो हमको सच लगा। तो आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे?
3: आज देखिए कविता भी है और एक गीत भी है
2: जी,
3: तो बताइए क्या सुना दें?
2: दोनों सुना
3: एक फिल्म गीत
2: कविता है तो अच्छी बात है।
3: कविता कवि का है हरिवंश राय बच्चन जी का जो गीत गई सो बात गई।
2: हाँ जीवन में एक सितारा था माना
3: मतलब सरबती
2: जी,
3: तो बताइए क्या सुना दें?
2: दोनों सुना देंगे क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं।
3: क्या कविता सुना दें?
2: पहले कविता सुना दीजिए फिर गीत सुना दीजिए।
3: अच्छा, दोनों जी, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है
2: जी।
3: जो बीत गई सो बात गई, तो उसे मैं अपने स्वरबद्ध में इसको सुनाना चाह रही हूँ, सुनाती हूँ ठीक है। और जो

टूटे तारों पर कब अंबर रोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है, जो गीत गई सो बात गई, जो गीत गई सो बात गई, जीवन में मधुका

0: पर कब मदिरा नए बच पाता है गई तो बात गई जो भी गई तो बात गई। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या लयबद्ध किया है आपने। मतलब अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस गीत पर आपने इसको लयबद्ध किया था, क्योंकि ये तो लयबद्ध की हुई मैंने कभी सुनी नहीं है।
0: नहीं कोई गीत तो नहीं है, ये इसे मैंने अपने से ही इसको के राग में ढाला है।
1: क्या बात है, मतलब क्या क्रिएटिविटी है।
0: मतलब दोनों पंक्ति अच्छी
1: जी। मतलब इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, इसे कहते हैं मतलब रचनात्मकता, कि एकदम सिंपल जिसको स्वर में गाया हो, जिस पर कभी किसी ने ये ना सोचा हो कि इसे गाया भी जा सकता है।
0: जी जी,
1: आपने उससे गाया, मतलब ये बहुत शानदार। अब बढ़ते हैं आपके गीत की तरफ।
0: ये एक्चुअली का है, जो शायद लाखों में एक फिल्म है, उसका है चंदा ओ चंदा।
1: क्या गीत सुनाया आपने, क्या वही तो मैं कहता हूँ आपका सॉन्ग सिलेक्शन बड़ा जबरदस्त है।
0: अब देखिए गाने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छा लगता है ये भी। शुरू करते हैं
1: जी निसंदेह।

0: क्या बात है। नहीं बहुत अच्छा गाया, और हम तो क्योंकि इस गीत को पहली बार सुन रहे थे, तो जो शब्द है मतलब आपके गीत के जो शब्द होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। मतलब हमको लगता है आप साहित्य की बहुत अच्छी विद्यार्थी रही होंगी।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब गाना।
0: हाँ, मतलब
1: लेकिन पहले से प्रिपेयर नहीं थी ना, तो तैयारी ठीक से नहीं हो पाई।
0: आपके शब्द मतलब आपके गीत जो होते हैं उनके जो शब्द होते हैं वो बताते हैं कि आप किसी भी चीज को साहित्यिक दृष्टिकोण से देखती हैं।
1: जी,
0: ये बहुत अच्छी बात है, लगती है मुझको, तो बहुत प्यारी बात।
1: चलिए, बहुत ही कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं, उसमें आप समझ पाए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मन की बात आप समझ जाते हैं।
0: नहीं मतलब हम चूंकि हिंदी साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो इसी कोशिश रहती है कि आप लोगों की चरण धूल को ही सर माथे लगा कर कुछ कर पाओ। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: जैसे आपने जिंदगी के बारे में आपने इंस्टाग्राम में डाला है ना,
0: जी
1: उसे भी मैं देखी, बहुत ही गहराई से उसे सोच रही थी।
0: लिखा ऐसा इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही
1: नहीं। बहुत ही मतलब
0: मतलब सच है जीवन का अगर हम देखें तो।
1: तो उसे देख के मेरे मन में भी दो तीन लाइन का ख्याल आया था।
0: जी जी,
1: बाद में मतलब सुनाऊंगी आपको। का कहना चाहिए उसी से संबंधित ही बात है
0: जी।
1: तो कभी मौका मिला तो फिर मैं जरूर सुनाऊंगी आपको।
0: जी हम प्रतीक्षा करेंगे।
1: खुश रहिए।
0: जी हाँ भाई, वास्तव में तो ये भाई साहित्य की बहुत अच्छी पकड़ होने का कारण है कि मतलब अब देखते हैं मेरे साथ फिर कौन जुड़ चुके हैं और बात करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार।
0: अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है भैया।
0: आपके बगैर तो महफिल अधूरी रहती है।
2: कोई फोन लगाया था तो दर्द बता रहा था, तो चलो बने हो।
0: सविता जी गा रही थी और बहुत प्यारा गाया उन्होंने। उसके पहले हरिवंश राय बच्चन की एक कविता को उन्होंने स्वयं स्वरबद्ध करके गाया, मतलब ये बहुत अमेजिंग बात है।
2: इसको लता और किशोर ने, दो गाने हैं, लता की आवाज में, किशोर कुमार की आवाज में।
0: अरे वाह क्या बात है। चंदा और चंदा बहुत प्यारा गीत।
2: अरे क्या बताए, लता की आवाज सुनो तो अलग, किशोर की आवाज़ सुनो तो अलग, दोनों की आवाज है।
0: समझने वालों के लिए गीत मौत है। तो आपसे हम आज क्या सुनने वाले
2: हैं? अरे भाई, पत्थर के सनम तुझे हमने खुदा जाना, ये पत्थर एक दिल्ली तो है जो
0: दिल्ली
2: है, और दिल्ली पे ही अगर चून लगे तो क्या फर्क पड़ता है।
0: सही कहते हैं।
2: ये पत्थर दिल्ली त्योहार करता है।
0: हाँ।
2: है नहीं? हाँ। नाम पत्थर है मगर एक दिल वो भी है, और दिल्ली से जब चून लगती है तब आवाज निकलती है।
0: आवाज निकलती है, क्या बात है।
2: हमने जबान सीखी उनको वफा न आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट

0: बर्बाद हो गए हम। देखो उन्हें कुछ नहीं कहते, खुद अपने आप पर लेते हैं।
1: क्या बात है।
0: अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए हम। इससे करे शिकायत अब किसको दे दोहाई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। हमने जपा न सीखी, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, दुनिया बनाने वाले मैं तुझसे पूछता हूँ, मैं तुझसे पूछता हूँ। क्या प्यार के जाम बदला है बेवफाई, हमने जपा न सीखी, उनको वफा न आई। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, हमने जपा न सीखी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे छोट खाई, और क्या बात है भाई। नब्बे लिखते हैं, वाह वाह दादाजी, क्या गीत गा दिया आपने। वास्तव में मतलब क्या गाना है।
0: हाँ, हमने कहा भाई पत्थर भी तो दिल है,
1: बिल्कुल
0: उसने दिली पे वार किया तो क्या किया है,
1: क्या किया। और हम तो ये चाहेंगे कि आज आपसे वो भी सुन लें। आज
0: क्या
1: ध्यान है।
0: ठीक है। आज कल मिठल गया इन वातमां, तू भी सो जा सो गई रंग भर सो। आज कल निधन गया दिन हुआ तमा, तू भी सो जा सो गई रंग भरी।

चमन चमन सो गई गली गली सो गए सब नगर सो गई गली गली सो गया चमन चमन सो गई गली गली सो गए सब नगर सो गई कली कली नींद कह रही है चल मेरी बाह तू भी सो जा सो गई रंग भरी सो है बुझा बुझा सदिल बोझ सांस सांस पर जी रहे भी हम सिर्फ कल की आस पर है बुझा बुझा सगल बोझ सांस सांस पर की रहे भी हम सिर्फ कल पह रही चांदी देख तेरा नाम तो भी सो जा सो गई रंग भरी सो आज कल मिल गया कौन आएगा इधर किस की राह देख जान किस के कदम कौन आएगा इधर किस की राह देख हम जिनकी राह जान किस के कदम तो भी सो जा सो गई रंग भरी शाम आज कल मिठल गया दिन।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दर्द कुमार जी, इस गीत को वास्तव में या तो रफी ही गाते हैं या तो फिर आपने ही गाया, मतलब ये गीत आपके कंठ से इतना अच्छा लगता है, मतलब आज कल में ढल गया बेटी बेटे का ये गीत, हमको लगता है एकदम सुनील दत्त साहब बैठे हुए हैं और ये गीत चल रहा है, एक एक शब्द मतलब और उसी एहसास से लगता है एकदम सेम दर्द लेकर के आपने वो गीत गाया, और ये बात
0: ये नहीं है।
1: और ये बात मैं ही नहीं, ये बात अनूप मिश्रा जी भी कह रहे हैं भाई कि वाह सुरेश जी बहुत खूब अनबिलेबल संगीत, मतलब जो आपने गाया वो अतुल्य गाया और सविता जी ने आपको बहुत सारे स्टार्स दे दिए भाई, ताली दे दिए, बहुत नव्या ने लिखा है वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गाया।
0: मतलब ये गीत भाई नमस्कार
1: जी, और अनूप भाई से हम भी कहेंगे कि वो खाली सुने ना वो कुछ सुनाए भी है कि नहीं,
0: सही बात है,
1: मतलब हम उनको सुने हुए जमाने
0: हमारा प्रणाम कह दीजिएगा
1: जी। अब वो एकदम ऑनलाइन है और आपका आशीर्वाद पहुँचे, अगर वो आपको मानते हैं तो फिर भाई कुछ सुनाए आपको, ये कहिए।
0: हाँ नहीं जरूर सुनाएंगे, वो इसे जो कुछ है उनके खजाने में बहुत है।
1: अरे उनके
0: वो जो गाएंगे अच्छा है,
1: वो तो गीत एकदम याद है उनको बहुत सारे, बहुत अच्छा
0: तो ये अच्छा
1: जी। अच्छा
0: नमस्कार
1: जी, अच्छा प्रणाम, चरण
0: स्पर्श
1: जी। हाँ भाई, तो ये हमारे दर्द कुमार जी, वास्तव में आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, मतलब कुछ गीत कुछ इंसान के कंठ से बहुत अच्छे लगते हैं, और हम चाहेंगे भाई 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, इस रात को बनना चाहिए, और भाई जब तक आप इस रात को बनाएं तब तक आपको एक प्यारी सी गज़ल रफ़ी साहब की सुना देते हैं, थोड़ा सा गम वाली बात हो गई है तो थोड़ी सी खुशी वाली बात हो जाए, आइए सुनाते हैं गज़ल भाई, तब तक आपका फ़ोन आएगा श्री तेज नारायण शुक्ल, इसे अनुरोध है कि भाई आज के इस अवसर पर, चूँकि जब अगला शनिवार आएगा तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो बीत चुका होगा शुक्रवार को, तो अगर सावन के मौजू पर या भाई बहन के पवित्र रिश्तों पर आपने कुछ लिखा हो तो आपकी भी लेखनी आपके कंठ के माध्यम से यहाँ तक आए तो अच्छा लगेगा हमको। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी गज़ल की ओर और मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.9

जी हाँ भाई, हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं समाप्त। हमको लगता है कि फ़ोन हमारे पास आ चुका है और देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ। जी तो भाई, ये अनूप जिसे कहा गया था कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में, और देखिए हम खुद से मिल ना पाए, एक सच्ची गज़ल वास्तव में, और इंसान अपने आप से नहीं मिल पाता तो कुछ ऐसा ही हश्र होता है। बहुत ही दिल को छू जाने वाली गज़ल हम सुन रहे हैं, और ये बीच में हेलो,

0: हेलो
1: शुभ संध्या मनु जी।
0: अरे नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं।
0: बस बस, प्लास्टर कट गया आपका?
1: हाँ प्लास्टर मेरा कट गया 19 तारीख को।
0: भाई ईश्वर की बहुत बहुत अनुकंपा आपका।
1: प्लास्टर कटा और हमने कूदना फांदना शुरू कर दिया, मतलब चलना फिरना।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो अब आप पूर्णतया स्वस्थ हैं?
1: ठीक है
0: ठीक है। तो हम क्या सुनने वाले हैं आपसे, क्योंकि आपने एकदम अंतिम समय में फोन मिलाया है।
1: जी
0: जी, तो कुछ बहुत प्यारा सा।
1: दो गाने हैं सर
0: जी।
1: एक अनामिका मूवी का है, लता जी की आवाज में
0: जी,
1: और एक है तुम दिन जाऊं कहां
0: दुनिया में आके है
1: जी।
0: अब दो से जो आप पसंद करें उसमें दे
1: सर, एक एक स्टैंजर दोनों का सुना देता हूं।
0: ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक सर।
1: तुम दिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस गली तुमको चाहके। तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम आ ला ला ला ला ला, अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाओ हमारी सज गई महफिल। महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के। तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या गीत सुना आपने जी। और अब दूसरे मुखड़े की ओर चलते हैं।
1: बाहों में चले आ ओ, हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले आ ओ, ओ, ओ, नाम से सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, चले जाना है नजर चुरा के यूं, तीर्थानी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले आओ ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, एकम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, हाँ कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, ए खुल के कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आ ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा। थैंक यू सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने शाम बना दी खड़ी किस्तियों को, हमने 5 मिनट के लिए सारा बढ़ाया, हमने कहा भाई आपको सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने हमारी बात रखी। बहन दीपेन जी नमस्कार, आपको भी नव्या जी ने आपके लिए बहुत गुड लिखा है, नाइस सॉन्ग, अच्छा प्रणाम आपको अनूप जी।
1: और सर अंत में सर भाई बहनों के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा
0: जी।
1: त्योहार आने वाला है और नेक्स्ट कब तक आएगा, तब तक मतलब सैटरडे नहीं आएगा
0: जी,
1: तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा अपनी सभी बहनों के लिए कि मेरी प्यारी बहना तुम जहां भी रहना वहां खुश ही रहना, न पड़े कभी तुम्हें कोई दुख सहना, न कभी भरे आंसुओं से तेरे नैना, तेरी सारी दुख सारी परेशानियों के लिए मैं हूं ना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, इस संदेश की आवश्यकता इस समय इस देश को है
1: जी सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता दी है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार है, 1 बजे आपसे मिलेंगे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में, तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेशलेट 9.6 एफएम में है गुंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: तारीख 16 जुलाई 1994। हरि प्रसाद की आंखें फैल गई, उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान ये खत में। कई लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं और कुछ लोग अपनी अधूरी बातों के साथ जाग रहे होते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें ना कोई खूनी हवेली है, ना कोई चीखती हुई आत्मा, लेकिन यकीन मानिए कहानी समाप्त होने के बाद आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं सिर्फ अपना वादा निभाने लौटती हैं। आज की कहानी का नाम है आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे हरि प्रसाद। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर सादगी और आंखों में बरसों की ईमानदारी, पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने डाकिया बनकर लोगों के घर घर खत पहुंचाए। किसी के बेटे की नौकरी का पत्र, किसी की बेटी की शादी का निमंत्रण, किसी माँ के नाम विदेश से आया संदेश, हर खुशी और हर दुख उनकी इस पुरानी चपड़े की थैली से होकर गुजरता था। रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी एक आदत आज भी नहीं बदली थी। हर शाम वो अपनी पुरानी डाक थैली साफ करते, उसे बड़े प्यार से कपड़े से पोछते और मुस्कुरा के कहते, जब तक ये थैला मेरे पास है, मुझे लगता है मैं अभी भी लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूँ। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डाक बाबू कहते थे। उस दिन भी शाम से बारिश हो रही थी। हरी प्रसाद आराम से बैठ गए, अपनी थैली की फटी हुई सिलाई ठीक करने लगे। फिर अचानक उनके मन में आया, क्यों ना अंदर भी टटोल के देख लें। और फिर अचानक उंगलियां भीतर किसी कागज से टकराई। उन्होंने हैरानी से अंदर हाथ डाला, धीरे धीरे एक पुराना पीला लिफाफा बाहर निकला। धूल जमी हुई थी, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पे लिखा नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था, श्री अर्जुन मिश्र, भेजने वाली मीरा, तारीख 16 जुलाई 1994। हरी प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान, ये खत मेरी थैली में आज तक कैसे रह गया। उनके हाथ कांपने लगे। 40 साल की नौकरी में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं हुई थी। उन्होंने लिफाफा मेज पे रखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा घिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद उन्हें बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रही हो। हरिप्रसाद ने टॉर्च जलाई। कमरा एकदम खाली था। उन्होंने खिड़की की ओर रोशनी डाली। बारिश की बूंदे कांच पे फिसल रही थी। कोई नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद पड़ोस में से कोई आवाज आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेज पे गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेज खाली थी। वो पुराना लिफाफा मेज से उड़के उनकी गोद पे आ गया था। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कभी उठाया भी था। उन्होंने धीरे से हाथ में लिया। लिफाफा बिल्कुल सूखा था, जबकि खिड़की खुली हुई थी और बारिश की फुहारे कमरे में आ रही थी। उसी समय हवा के साथ चमेली की भीनी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हरिप्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, कौन है, कोई है क्या इस कमरे में। कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस रात हरिप्रसाद ने चाह कर भी वो खत नहीं खोला। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक खत नहीं, बल्कि 32 वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी थी, जो अब खुद अपना अंत लिखने के लिए बेताब थी। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हरिप्रसाद को खत की मंजिल तक ले जाना चाहती थी, या ये सब एक बूढ़े डाकिये का भ्रम था। इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुबह हो गई, बाहर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। हरिप्रसाद की आंख में तो नींद थी ही नहीं, बार बार उनकी नजर उसी पुराने लिफाफे पर चली जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खत उन्हें बुला रहा हो। सुबह की पहली चाय पीकर उन्होंने अपना पुराना झूला उठाया, लिफाफा उसके अंदर रखा और निकल पड़े उस पते की तलाश में जहां उन्हें 35 साल पहले पहुंचना था। सड़कें अभी भी कच्ची पक्की थी, लोग आ जा रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी और बूंदाबांदी वो तो हो ही रही थी, मगर किसी ने भी हरिप्रसाद को रोका नहीं। वो अपनी साइकिल पे चलते गए। गांव बहुत बदल चुका था, जहाँ कभी मट्टी के घर थे अब वहाँ पक्की दीवारें थी। पुराने बरगद की जगह एक छोटा सा बाजार बन चुका था। हरिप्रसाद कई लोगों से पूछ रहे थे, बेटा अर्जुन मिश्र का घर किधर है? हर कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा, नाम तो कभी सुना ही नहीं। किसी ने कहा, शायद ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, यहाँ तो कोई इस नाम का रहता ही नहीं। आखिरकार गांव के चौराहे पर एक बूढ़े चाय वाले ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अरे आप तो डाक बाबू है ना? हरिप्रसाद मुस्कुराए, बोले, हाँ भाई, पहचाना तुमने? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी पहली नौकरी का खत भी तो आप ही लाए थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ये चाय की दुकान पे बैठता हूँ। दोनों कुछ पल मुस्कुराए, पुरानी पुरानी बातें अपने मन में याद किया। फिर हरिप्रसाद ने धीरे से पूछा, अर्जुन मिश्र कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही चाय वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, आपको इतने साल बाद उनका नाम किसने याद दिलाया? एक खत, हरिप्रसाद ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। क्या ये वो मीरा का खत है? हरिप्रसाद चौंक पड़े, तुम मीरा को भी जानते थे? चाय वाले ने गहरी सांस ली, पूरा गांव जानता था उनको। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दो दिन पहले मीरा अचानक गायब हो गई। डाकिया बाबू ने पूछा, गायब हो गई? हाँ, 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली, लेकिन मीरा वो तो कभी मिली ही नहीं, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना। हरिप्रसाद ध्यान से सुनते रहे। चाय वाले ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं उसने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं वो नाव में बैठ करके कहीं दूर चली गई और अर्जुन मिश्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। हरिप्रसाद ने अपने झोले को कस कर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो भीतर रखा लिफाफा हल्का सा गर्म हो गया है। उन्होंने झट से झोला खोला, लिफाफा वही था, लेकिन उसमें चमेली की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी जो पिछले रात उनके कमरे में फैली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने रास्ता बताया। गांव के आखिरी छोर पे एक पुराना मकान है, वहीं रहते हैं अर्जुन बाबू अकेले, बिल्कुल अकेले। धीरे धीरे हरिप्रसाद उस मकान के सामने पहुंचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर समय की धूल जमी थी, उन्होंने धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला, फिर अंदर से बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने लगभग 75 वर्ष का एक वृद्ध खड़ा था। चेहरे पे गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। जी कहिए, क्या काम है? हरि प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। क्या आप अर्जुन मिश्र हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। जी मैं ही अर्जुन हूँ। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने झोले से वो पुराना लिफाफा निकाला, दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और बस इतना कहा, अर्जुन जी मैं बहुत देर से आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसी उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थरथरा उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा। उसी क्षण घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक टिक टिक करके चलने लगी। हरि प्रसाद और अर्जुन दोनों एक साथ उस घड़ी की ओर देखने लगे। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया। उसने धीमे स्वर में बोला, डाक बाबू, ये घड़ी तो 30 साल से बंद है। टिक टिक की आवाज और स्पष्ट हो गई और फिर अचानक चमेली की खुशबू उस कमरे में फैलने लगी। श्रोतागण, क्या ये केवल संयोग था या किसी ने सचमुच समय को फिर से चलाना शुरू कर दिया था? क्या मीरा की कहानी अब खुद अपने शब्दों में सुनाई जाएगी? जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सजा मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो इंतजार होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। 32 साल, 384 महीने और 11,000 से भी ज्यादा दिन अगर कोई किसी का इंतजार करे तो क्या प्रेम बचा रहता है या सिर्फ आदत बन जाती है? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। हर शब्द जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। पत्र समाप्त हुआ लेकिन अर्जुन उसी कागज को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ रोते रहे। हरि प्रसाद ने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, बोला, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, नहीं डाक बाबू, आज मुझे बोलने दीजिए। 32 साल से जो शब्द मेरे भीतर कैद हैं, आज उन्हें बाहर आने दीजिए। मीरा, मीरा तुम्हें याद है, तुम कहती थी अगर कभी हम बूढ़े हो गए तो शाम को इसी बरामदे में बैठकर बारिश देखेंगे। मैंने ये बरामदा कभी नहीं बदला। हर साल इसकी टूटी हुई कुर्सी ठीक करवाई क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम आओगी और फिर मुझे बहुत डांटोगी। अर्जुन, तुमने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पता है मीरा, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा दिल हर बार कहता था नहीं, मेरी मीरा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर लौटेगी क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। अर्जुन ने खत को चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने लिखा है तुम मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मीरा, कभी कभी किसी को उसकी सांसों से अलग करके क्या बचाया जा सकता है। मैं जिंदा था लेकिन जिया नहीं। लोग मुझे अकेला कहते रहे, उन्हें क्या पता मैं अकेला था ही नहीं। हर शाम मैं तुमसे बातें करता था, तुम्हारे हिस्से की चाय भी बनाता था। आज भी रसोई में 2 कप रखे हैं। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन ये खत मेरी नजर में आ जाता तो शायद। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं डाक बाबू, आज अपने आप को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। अगर ये खत पहले आ जाता तो शायद मैं मीरा को कभी जाने ही नहीं देता और तब हर दिन वो अपने दर्द के साथ मरती रही। हरि प्रसाद फूट फूट के रो पड़े। लेकिन एक डाकिये की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं हार गया, मैं अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। नहीं, आप हारे नहीं हो, आप तो आज भी एक प्रेम कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। घड़ी में 12 बज गए। 12वीं घंटी बजते ही पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज जैसे किसी ने धीमी कर दी हो। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे कांपने लगी और तभी वही चमेली की भीनी सी खुशबू जो पिछली रात हरि प्रसाद के घर आई थी पूरे कमरे में फैल गई। हरि प्रसाद ने चौक के चारों ओर देखा। अर्जुन, क्या तुमने? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। उनके होंठ कांपे। हाँ, वो आ गई है। हरि प्रसाद ने घबरा के पूछा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? अर्जुन मुस्कुराए, अरे ये तो वो अपना पसंदीदा गीत गा रही है। जब भी बारिश होती थी वो यही गुनगुनाती थी। गुनगुनाहट धीरे धीरे और पास आने लगी। फिर बरामदे में रखी खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्के से हिलने लगी। हरि प्रसाद का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। फिर गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे की ओर दिखाई देने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर आते आते वे निशान सूख नहीं रहे थे, बल्कि हल्की चमेली की पंखड़ियों में बदलते जा रहे थे। हरि प्रसाद ने जीवन में पहली बार डर और शांति दोनों को एक साथ महसूस किया। अर्जुन अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़े। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो बहुत शांत थे। मीरा, अगर सचमुच तुम हो तो प्लीज इस बार छिपना मत। 32 साल से मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूँ। आज एक बार अपनी आवाज सुना दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी अर्जुन के ठीक पीछे एक बहुत धीमी, बहुत परिचित और बहुत ही स्नेह भरी आवाज आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास। इस बार अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोतागण, कहानी अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां शायद प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होने वाला है। क्या सचमुच 32 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है, या रात अभी कोई और रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी खत का सबसे भावुक और सबसे अलौकिक पल अभी बाकी है। सुनते रहिए 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ 32 वर्षों का इंतजार पहली बार आवाज बनकर लौटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में एक युवती खड़ी थी। वही मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी सी प्यारी आंखें, समय जैसे उसके लिए कहीं रुका ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन भागकर उसके पास नहीं गए, वो बस उसे देखते रहे, जैसे डर हो कि पलक झपकते ही फिर वो खो जाएगी काफी समय के लिए। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती रहीं। फिर मीरा मुस्कुराई, इतने सालों बाद भी सिर्फ देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अर्जुन की आवाज टूट गई। अगर बोलने लगा तो शायद रोना बंद नहीं कर पाऊंगा। मीरा की भी आंखें भर गई। रो लो अर्जुन, आज 32 साल का हिसाब आंसुओं से ही पूरा होने दो। अर्जुन एक एक कदम उसकी ओर बढ़े। तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस संसार में नहीं हो या तुम मुझे छोड़ के चली गई। सब कहते थे भूल जाओ, लेकिन जिसे दिल हर सांस में महसूस करे उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं हर शाम तुमसे बात करता था, तुम्हारे पसंद का दीपक जलाता था, तुम्हारे पसंद की चाय बनाता था और जब बारिश होती थी तो एक कुर्सी हमेशा खाली छोड़ देता था। मीरा धीरे से बोली, मैं आती थी अर्जुन। अर्जुन ठिठक के, क्या? हाँ, हर बारिश में जब तुम बरामदे में बैठते थे मैं यही होती थी। जब तुम कहते थे मीरा आज बारिश बहुत हो रही है तो मैं मुस्कुराती थी। जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाती थी, सिर्फ तुम्हारे पास बैठी रहती थी। अर्जुन फूट फूट के रो पड़े। तो फिर मीरा इतना दर्द क्यों दिया, एक बार सामने क्यों नहीं आई? मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अर्जुन तुम्हें जीना था। जब तक तुम्हारी सांसों में किसी का सहारा बनने की ताकत थी मुझे लौटने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है। हरि प्रसाद चुपचाप कोने में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैंने जीवन में लाखों खत पहुंचाए, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे दो धड़कनों के बीच लिखे जाते हैं और उनका पता सिर्फ ईश्वर जानता है। मीरा ने सर झुकाकर प्रणाम किया। डाकिया बाबू, अगर आप उस दिन ये खत पहुंचा देते तो शायद अर्जुन मुझे जीने के लिए मजबूर करता। मैं बहुत बीमार थी और मैं हर दिन उसे टूटते हुए देखती। आज जो कुछ हुआ वो शायद ईश्वर की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर योजना थी। हरि प्रसाद की आवाज भर्रा गई, तो क्या प्रेम का अंत यही होता है? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबूजी, सच्चे प्रेम का अंत नहीं होता, उसकी प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। मीरा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, अर्जुन आज चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर अचानक उन्होंने हरि प्रसाद की ओर देखा। डाक बाबू? जी बेटा, अगर कभी ऊपर भी डाक खाना हुआ तो वहाँ भी नौकरी कर लीजिएगा, हो सकता है बहुत से खत अब भी पहुँचना बाकी हो। तीनों हंस पड़े और उसी हंसी में तीनों की आंखें भीग गई। मीरा ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब वहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों साथ होंगे। धीरे धीरे कमरे में एक उजली शांत रोशनी फैलने लगी। हरि प्रसाद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हो। गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाजा खुला देखा। सब अंदर पहुंचे। अर्जुन अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, सिर हल्का सा पीछे टिका हुआ था, होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो शायद 32 वर्षों से कहीं खो गई थी। उनकी मुट्ठी बंद थी। जब हरि प्रसाद ने धीरे से उसे खोला तो उसमें वही पुराना खत था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कल रात वहाँ नहीं थी। उस पे लिखा था, डाक बापू धन्यवाद, आपने मेरा खत नहीं पहुँचाया, आपने मेरा इंतजार खत्म किया।

0: well.
1: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में ब्लैक तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ। तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं, और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेती हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में, यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मैं